100.1 MHz और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की सातवीं तिथि, तदनुसार 24 जून सन

आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6 बजने को हैं। कुछ ही देर में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने टेलीफोन पर बातचीत की। कतर के रास लफान औद्योगिक क्षेत्र में हुई दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर अमीर ने संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए कतर का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता के प्रयासों का समर्थन किया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी प्रशासन ने निहत्ते नागरिकों के साथ बर्बर व्यवहार किया है। जरूरी सामान और दवाओं की आपूर्ति रोक दी गई है और इंटरनेट बंद है। खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमरीका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही होर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर सकेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अलनीनो के कारण मानसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही हैं। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
1: अलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है, और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
0: लखनऊ में हाल ही में हुई आग की दुर्घटना के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य भर में कोचिंग संस्थानों का सर्वे और अग्नि सुरक्षा ऑडिट शुरू किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि सभी कोचिंग संस्थानों का सर्वे और अग्नि सुरक्षा ऑडिट जल्द से जल्द कराया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार

0: आज बेंगलुरु में उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 के तहत निवेशक रोड शो का आयोजन करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। रोड शो में देश के प्रमुख उद्योगपति और निवेशक भाग लेंगे। कार्यक्रम में बुनियादी ढांचे, आईटी, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर और विदेशी निवेश से जुड़े विषयों पर चर्चा होगी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि जब तक ईरान समर्थित गुट आतंकी गतिविधियों में लिप्त है और हमले जारी रखे हुए हैं, तब तक पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता बहाल नहीं हो सकती। अबुधाबी में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि लेबनान में संघर्ष विराम को लेकर चर्चा ईरान के साथ चल रही वार्ता से अलग है। श्री रूबियो ने कहा कि उन्होंने अमरीका के उपराष्ट्रपति जेरी वेंस और लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ओन से बात की है और अमरीकी अधिकारी लेबनान में पहल कर रहे हैं। श्री रूबियो ने कहा कि कोई भी कूटनीतिक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि क्षेत्रीय सुरक्षा और ईरान समर्थित गुटों की गतिविधियों के मुद्दे पर कितनी प्रगति हो पाती है। पश्चिम एशिया में शांति बहाली को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच स्विट्जरलैंड में हाल ही में वार्ता हुई है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवा चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों तक असम, मेघालय, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तराखंड में भी तेज हवा के साथ आज बारिश की संभावना जताई है। फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने बड़ी जीत हासिल की है। अमेरिका के ह्यूस्टन में खेले गए ग्रुप के मुकाबले में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया। स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। हे भारत, हे मातृभूमि, हम तुझे कोटि कोटि नमन करते हैं। तेरी माटी रूपी चंदन का तिलक कर हम स्वयं को गौरवान्वित महसूस करते हैं। प्रस्तुत है समूह स्वर में देश वंदना।

हे माँ शेरावाली, मेरी बिगड़ी बना दे, हे माँ मेरे भाग्य जगा दे। आइए करते हैं मातृवंदना। स्वर है अनुराधा पौडवाल का।

जिनके तन मन में बसे हैं श्री राम। आइए उन राम भक्त हनुमान का वंदन करें। सुनते हैं अनूप जलोटा के स्वर में श्री हनुमान भजन।

0: वंदना। अभी आप भक्ति संगीत का ये कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:20 हुए हैं। प्रस्तुत है आज का चिंतन। आलेख और स्वर है रामजीतन दास शास्त्री का।
1: यह सारा संसार दो पहलुओं से मिलकर बना है, एक जड़ तो दूसरा चेतन। भौतिक पक्ष को जड़ कहते हैं और चेतन पक्ष को सत्य या आत्मा कहते हैं। हम इन दोनों की समीक्षा में पाते हैं कि संसार की नाश्वर भौतिक माया और उसके अनेक भोग विलास से आज तक किसी को भी स्थिर सत्य सुख शांति प्राप्त होने का एक भी उदाहरण नहीं है। क्योंकि जब संसार ही नाशवान और परिवर्तनशील है तो उससे हमें जो भी प्राप्त होगा वह सभी नाशवान और परिवर्तनशील ही होगा। अर्थात आध्यात्मिक चेतना ही इस मानव जीवन की वास्तविक सफलता, सार्थकता और पूर्णता है। अध्यात्म से विहीन व्यक्ति का जीवन पशुवत और अधूरा ही है। आध्यात्मिक जीवन अपनाने का सच्चा अर्थ है असत्य से सत्य की ओर जाना, प्रेम और न्याय का आदर करना, निकृष्ट जीवन से उत्कृष्ट जीवन की ओर बढ़ना। यदि और ही थोड़े में कहा जाए तो आत्म परिष्कार की साधना को ही आध्यात्म कहते हैं। इस प्रकार की आध्यात्मिक जीवन अपनाए बिना मनुष्य तीनों कालों में भी वास्तविक सुख शांति नहीं पा सकता। हम देखते हैं कि प्रति क्षण घूमने वाली प्रकृति की चक्की में यह सारा संसार पिसता चला जा रहा है। अनंत ब्रह्मांड के जीव इस चक्की के दाने हैं। निरंतर घूमने वाली चक्की के बीच कीले की तरह वह अविचल निहतत्व जिसका कि तीनों कालों में भी बाध नहीं होता, जो त्रयकाल अबाधस्य है, वही सत्य कहलाता है। और इसी परम सत्य की खोज करना अध्यात्म और सत्यानंद मुक्ति है। इस परम सत्य अध्यात्म की इस चरम सीमा तक आने में हमें मुख्य साधना में मन इंद्रियों का निग्रह करना होगा। पतंजलि योग शास्त्र में भी कहा है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंद मोक्षयोः। अर्थात मन ही मनुष्यों के बंधन और मोक्ष का कारण है। इस पर सद्गुरु कबीर साहब भी कहते हैं, मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत।

0: की ही परती जीव पड़ा है मन के हाथा, नाच नचावे राखे साथा, मन का खेल समझ जब आवे, आवा गवन सब ही मिट जावे। सदगुरु कबीर कहते हैं, मन का परिचय ना होने पर ही ये जीव आत्मा हार जाता है, अर्थात 84 के परिचक्र में घूमता रहता है, और मन की प्रतीति परिचय पाने पर ही ये जीव आत्मा परमात्मा को प्राप्त करता है। सदगुरु कहते हैं, युग युगांतरों से ये जीव आत्मा मन के हाथ पड़ा है और मन इंद्रियों की गुलामी में पड़ा है, और अज्ञान अवस्था में यह जब तक मन इंद्रियों के अधीन रहेगा तब तक यह जीव जन्म मरण के महादुख को मिटा नहीं सकता। यदि यह जीव सदगुरु की दया से सत्य ज्ञान का धारक बनकर मन को जीत लेता है तो वही आवागमन के चक्र को मिटाकर जीते जी मुक्त दशा को प्राप्त कर परम तत्व में स्थिर होता है, अर्थात आध्यात्म के सच्चे अर्थ को समझने पर ही जीव की आत्मदशा प्राप्त होकर परम शांति और परम तत्व की प्राप्ति होती है।
1: ये था आज का चिंतन। आलेख और स्वर था रामजीतन दास शास्त्री का। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:25 होने को हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस का गायन। स्वर है महेंद्र कपूर का। संगीत निर्देशन है सतीश भाटिया का।

श्री रामचरित रूपी पवित्र मानस सरोवर के जल में अपने मन को स्नान करा और भवानी तथा शंकर का स्मरण करके गोस्वामी तुलसीदास ने रामकथा का प्रारंभ किया है। सर्वप्रथम पुण्यभूमि प्रयाग में दो श्रेष्ठ मुनियों भरद्वाज तथा परम ज्ञानी याज्ञवल्क का मिलन और संवाद वर्णित है। भरद्वाज मुनि प्रयागवासी हैं। माघ में जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब सब लोग श्रद्धा तथा आदरपूर्वक तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी स्नान के लिए आते हैं। एक बार जब पूरे मकर भर स्नान करके ऋषि मुनि अपने अपने आश्रम लौट गए तो भरद्वाज मुनि ने महर्षि याज्ञवल्क के चरण पकड़कर उन्हें अपने आश्रम में रोक लिया। परम ज्ञानी याज्ञवल्क से उन्होंने अपने अज्ञान प्रकट करते हुए अपनी शंका उनके सम्मुख रखी। हे मुनिवर, भगवान शिव समेत सभी देव मुनि जिन राम की उपासना करते हैं वो राम कौन हैं?

0: अभी आप श्री रामचरितमानस का गायन सुन रहे थे। स्वर था महेंद्र कपूर का, संगीत निर्देशक थे सतीश भाटिया। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:35 हुए हैं। प्रस्तुत है कृषि समय की बेड़ा खाड़ा चौकोट।
1: खेतीहर दादा दीदी मन, असन तो हम यहाँ प्लाहन बेड़ा खाड़ा ने बरन बरन जो फसल मन के कमानी करते रहूं से आरु नवा नवा उड़ धरुन कमानी करते रहूं से। मानतर ये फसल कमानी संगे संगे पशुपालन बले खेती चो गोटक आधार होए से आरु ये पशुपालन ने गोटक होए से छेरी मेंढी मन के पोस्तोर। असन तो सपाए गांवकारी दादा दीदी मन आप लहन घरे छेरी मेंढी मन के पोसला साहस होती तो ये छेरी मेंढी मन के जो मुहा रोग होए से ये रोग कसन ने होए से और एक गुचा तो काजे आम के कसन वाट करतो रहे एक मैं आजी तुमके सांगे से। छत्तीसगढ़ ने छेरी मेंढी मन के आगर करुन मुहा रोग ले खूबे नुकसान हो हुआ है। ये रोग धरुन रले केबी केबी तो 90% पशु मोरुन जाऊआत। ये रोग पशु चो उत्पादन क्षमता और पशु चो बाढ़ती के बले कम करुन दे हुआ है। बीमार होलो पशु ले ये रोग आमचो असन मनुख के बले होक सके। एचो जोन लक्षण आए एक मैं सांगे से बीमारी चो मूर कर लो बेरा पशु चो चामड़ी आगर करुन टोंड चो भौरक और होंठ चो चामड़ी लाल पड़न जाऊ है। पाछे दखते दखते आपने छाला पड़ते जाऊ है। संगे संगे ये छाला जबड़ा और टोंड चो भीतरे सब पाए बाटे फैलन जाऊ है। खिंडिक दिन होले ये छाला सुखुन भाती करिया पापड़ी असन होन जाऊ है। असन होलो बेरा घाव खूबे खजाउक मोरिया हुआ है। घाव खजाले पशु आपलो टोंड के एथा हुता घसुक मोरिया हुआ है और घसतो के घाव ले लहू निकर हुआ है और असन बेरा पशु के चारा खातो दाएं खूबे दुखा धर हुआ है। लहू निकरलो ने केबे केबे टोंड ने बड़े बड़े घाव वाले होन जा हुआ है और 3-4 हफ्ता ने ये घाव नंगत हो हुआ है और ऊपरे चो जोन छाला होए से हुन बले निकरते जा हुआ है। छाला ने ये रोग चो जोन विषाणु होए से जोन कीड़ी मन होए सोत 15 बरख ले जीवत रोक सकोत आरु एची कारण ने ये बीमारी कोनी बले ठान ने रोजे बरक छेरी मेंढी मन के होते रहे से। नानी पीला पशु मन के ये बीमारी होन रलो ने पीला मन गोरस बले खाउक नहीं सकोत आरु संगे संगे चारा बले नहीं खाउक सकोत आरु एची काजे पशु चो बाढ़ती बले नहीं होक सके। असनी रोजे बरक खूबे छेरी मेंढी मन मोरुन जाऊआत। आगर करुन ये बीमारी स्वस्थ आरु नंगत पशु के बीमार पशु मन संगे रतो कारण ने बले होन जाऊ है आरु देह पाए ने कहाँ घाव होन रले घाव भीतर ली ये कीड़ी नंगत पशु भीतरे जाऊआत। जेठ बेरा पशु मन सूखा चारा के खाऊआत आरु सूखा चारा खातो बेरा पशु चो टोंड ने घाव होन जाऊ है तेबे ये बीमारी चो कीड़ी हुन घाव ले बले पशु चे देह ने जाऊआत और बीमार होलो नानी पीला पशु चो गोरस खातो बेरा केबे केबे पशु चो थन ले बले ये बीमारी चो छाला दखा दी हुआ है। संगे संगे दूसर भाग ने जोन लगे बाल नी रहे हुता आरु खूर मन ने बले छाला दखा दे हुआ है। ये जो उपचार कसन करतो रहा है के बलमा सांगे से बीमारी धरलो बेरा पशु चो टोंड के घन घन पोटेशियम परमैग्नेट चो पानी ले धोतो रहा है आरु घाव काजे कीड़ी के गुचा तो काजे मलहम चो उपयोग करतो रहा है। घाव ने मच्छी झूमले घाव ने दूसर बीमारी चो

0: बलि हुआ और ये ची काजे पोसु के साफ सफाई भी तिठाने संगा तो राय रोग ले बचा तो काजे रोगी पोसु के दूसर पोसु ले अलगे ठाने बांध तो राय और चरा तो बेरा बले गोट की ठाने नीचरा तो राय रोगी पशु के हरा आरु कौरी चारा के खुआ तो राय और टोन ने आगर छाला हो रले पशु के गोरस आरु पसिया पानी असन जिनिस के खुआ तो राय और ये बीमारी हो रले डॉक्टर चो सलाह बले धर तो राय।
1: अभी आप कृषि समय की बेड़ा खाड़ा चो गोट सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:40 होने को हैं। प्रस्तुत है हुलहुली। इसमें हम सुनवा रहे हैं उलट भैरम पाड़। कलाकार हैं भारत और साथी।

हुलहुली में अभी आप उलट भैरम पाड़ सुन रहे थे। वादक कलाकार थे भारत और साथी। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:50 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारी आज की सभाओं में प्रसारित और रिले किए जाने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। अब से कुछ ही देर में 7:05 पर होगा हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर। आकर्षण में आप सुन सकेंगे स्वास्थ्य की बातें और होगी फिल्मी गीतों की मधुरिमा। प्रातः 8:30 पर लोक मंजरी में सुनिएगा विभिन्न बोलियों में लोकगीत।

9 बजे झुमझुमा में आप सुन सकेंगे हल्बी लोकगीत। कलाकार होंगी रायबरी और साथी। 9:30 पर सुनिएगा गीत एक ही फिल्म से। इसमें हम सुनवाएंगे फिल्म मासूम के कुछ गीत। 10 बजे गुलशन में आप सुन सकेंगे शीर्षक गीत। 10:30 पर गुरदुम में सुनिएगा हल्बी भजन। कलाकार होंगे मधुराम और साथी।

दिन में 11 बजे कार्यक्रम होगा एक ही कलाकार, जो आज केंद्रित होगा गायक मोहम्मद इरफान पर। 11:30 पर सबरस में आप सुन सकेंगे विभिन्न प्रदेशों के लोकगीत। दिन में 12 बजे कार्यक्रम होगा कला और कलाकार भतरी बोली में। 12:30 पर सुनिएगा ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर द्वार। 1:05 पर होगा कृषि समय की बेड़ा खाड़ा चौगोट का पुनः प्रसारण। 1:10 पर होगा फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन। 2:20 पर आप सुन सकेंगे प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी।

श्रोताओं, हमारी सांध्यकालीन सभा में शाम 5:05 पर होगी युवा मित्रों की युववाणी। शाम 6:30 पर गोंडी समाचार बुलेटिन का प्रसारण किया जाएगा। शाम 7:00 आप सुन सकेंगे कार्यक्रम बस्तर के स्वर। 7:21 पर कार्यक्रम आमचो गांव का प्रसारण किया जाएगा। 8:00 कुड़ाई फूल में आप सुन सकेंगे हल्बी लोक।

गीत। कलाकार होंगे सहदेव, कश्यप और साथी। 8:30 पर सुनिएगा पीलामन काजी गोट हल्बी बोली में। प्रस्तुति होगी गोपाल पोयाम की। रात्रि 9:15 पर सुनिएगा फिल्मी गीत पुरानी फिल्मों से। रात्रि 9:30 पर उवाट में सुनिएगा शासकीय योजनाओं की जानकारी। और रात्रि 10:00 रजनीगंधा में सुनिएगा पुराने फिल्मी गीत। श्रोताओं, ये थी हमारे केंद्र से आज के प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को हैं। कुछ ही देर में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की दिल्ली बैठक में आतंकवाद, साइबर खतरों और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया है। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने की। बैठक में सदस्य देशों ने उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार ऐसे सुरक्षा खतरों पर खासतौर से चर्चा हुई जो अब वैश्विक रूप ले चुके हैं। प्रतिनिधियों ने ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और आतंकवादी संगठनों द्वारा नई तकनीक के दुरुपयोग पर चर्चा की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सर्गेई शोइगु के बीच नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के क्रम में द्विपक्षीय वार्ता हुई है। वार्ता में दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री डोभाल ने सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर जोर दिया।
1: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
0: भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमरीका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही होर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ टेलीफोन पर बात की। कतर के अमीर ने रविवार को रास लाफान शहर में हुए हादसे में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर दुख जताया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पीड़ित परिवारों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के लिए धन्यवाद किया और घायलों को तुरंत चिकित्सकीय मदद पहुंचाने के लिए

0: श्री थानी की सराहना की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, विकास की गति को तेज करने और समावेशी विकास के लिए सभी पक्षों से और अधिक सहयोग आवश्यक है। उन्होंने ये बात कल नई दिल्ली में ग्लोबल कन्वर्जेंस फॉर ग्रोथ सम्मेलन को ऑनलाइन संबोधन में कही। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि मौजूदा दुनिया में समृद्धि और चुनौतियां तो साझा हैं, लेकिन संघर्षों और अनिश्चितता का असर विकासशील और पिछड़े देशों पर अधिक पड़ता है। उन्होंने कहा कि चुनौतियों से निपटने के लिए साझा वैश्विक कार्रवाई जरूरी है। सरकार ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है और इसकी निरंतर निगरानी की जा रही है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर इस बारे में चल रही खबरें भ्रामक और निराधार हैं। सरकार ने कहा है कि E20 पेट्रोल की शुरुआत के बाद से एथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन की खराबी या वाहन में तकनीकी खराबी की कोई भी व्यापक शिकायत सामने नहीं आई है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में पुर्तगाल ने उज़्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया है। अमरीका के ह्यूस्टन में हुए मुकाबले में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागे और इसके साथ ही रोनाल्डो 6 विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी हो गए हैं। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर।

श्रोताओं, आज चारों ओर एक से बढ़कर एक आधुनिक गाड़ियों का चलन है। बच्चे हों, युवा हों या बुजुर्ग, सारे लोग गाड़ियां चलाकर अपना समय बचाते हैं। किंतु इस बचते हुए समय में भी शायद कुछ नुकसान हो सकता है। आइए जानते हैं इस विषय पर। श्रोताओं, एक महत्वपूर्ण सवारी, जाने अनजाने कहीं हमने अपने घर के किसी कोने में छोड़ रखी है। ये सवारी न केवल हमारा स्वास्थ्य सुधारती है, बल्कि शरीर में आने वाली अनेक बीमारियों को पहले ही रोक देती है। वो सवारी है हमारी पुरानी साइकिल, जो शायद आज घर के किसी कोने में पड़ी हुई धूल खा रही होगी। श्रोताओं, ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी अधिकाधिक साइकिल का ही उपयोग किया जाता है। साइकिल के साथ पैदल चलने का भी चलन है, इसलिए आप देखते होंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग शहरी क्षेत्रों के मुकाबले अधिक स्वस्थ हैं। विदेशों की बात करें तो वहां भी पर्यावरण सुरक्षा को लेकर सतर्कता के चलते साइकिल चलाने को महत्व दिया जाता है। साइकिल चलाना एक तो वैसे ही फायदेमंद है, पर्यावरण भी इससे सुरक्षित होता है। अगर हम उसके फायदों की बात करें तो एक तो साइकिल चलाने से वजन नियंत्रित रहता है, हमारे हृदय में रक्त संचार बढ़ता है, जिससे दिल की बीमारी का खतरा भी कम होता है। सुबह की साइकिलिंग और वॉक से हमारा मन भी खुशनुमा रहता है। साइकिलिंग का एक फायदा यह भी है कि इससे हमारे पैरों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, इससे श्वसन तंत्र नियंत्रित रहता है और शारीरिक क्षमता बढ़ती है। यानी फायदे ही फायदे हैं। तो अब आप भी अपनी इस पुरानी साथी को पुनः अपने घर से निकालें, उसे तैयार करें

0: कार्यक्रम में आगे बढ़ने के पहले आइए सुनते हैं कुछ संदेश।
1: माटी की सौंधी खुशबू के साथ,
2: पवन के ठंडे झोंके के साथ
1: हिलोरे लेगी
2: आकाश की वाणी।
1: आकाशवाणी
3: विज्ञापन के लिए संपर्क करें आकाशवाणी जगदलपुर आकर,
1: या फोन करें 222150 या 222400,
2: 222150 या 222400।
4: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
5: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
6: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। डायल कीजिए हमारा टोल फ्री नंबर 1512।
7: विविध भारती के खजाने से हम आपके लिए लाते हैं अनमोल कार्यक्रम।
8: फौजी भाइयों की खिदमत में आपका खादिम नौशाद आदाब पेश करता है, कबूल फरमाइए।
7: कल और आज के ऐसे ही नामचीन सितारों को आप सुनते हैं विशेष जयमाला में हर शनिवार और रविवार शाम 7:05 पर। विविध भारती आप सुन सकते हैं देश के कोने कोने में, मीडियम वेव पर, शॉर्ट वेव पर, FM पर। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक। विविध भारती पर विज्ञापन बुक कराने के लिए हमारा टोल फ्री नंबर है 15102, या लॉग ऑन करें csuair.org.in। विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
0: आइए आपको शुरुआते हैं स्वास्थ्य की बातें। विषय है दांतों का इम्प्लांट। वार्ताकार हैं डॉक्टर आशा दुल्हानी।
9: श्रोताओं, हमारी मुस्कान हमारी पहचान होती है और इस मुस्कान को संवारने में हमारे दांतों की भूमिका बेहद अहम होती है। लेकिन जब किसी कारणवश दांत टूट जाते हैं, खराब हो जाते हैं या निकल जाते हैं, तो न सिर्फ चेहरे की खूबसूरती प्रभावित होती है बल्कि आत्मविश्वास भी कहीं ना कहीं कम हो जाता है। ऐसे में आधुनिक दंत चिकित्सा में दांतों का इम्प्लांट एक प्रभावी और स्थायी समाधान बनकर उभरा है। आज की इस विशेष वार्ता में हम बात करेंगे दांतों के इम्प्लांट के बारे में। इस विषय पर महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपलब्ध हैं शहर की जानी मानी दंत चिकित्सक डॉक्टर आशा दुल्हानी जी। डॉक्टर साहिबा, आपका आकाशवाणी जगदलपुर में हार्दिक स्वागत है।
10: नमस्कार। सबसे पहले तो धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया जो इस विषय पे हम यहाँ पर चर्चा कर सकें, क्योंकि मैंने नोटिस किया है काफ़ी मरीज जो आते हैं वो इम्प्लांट का नाम सुनते ही डर जाते हैं। तो इस विषय में चर्चा होना बहुत अच्छा है ताकि लोगों के मन में जो डर है और जो सोचा है उन्होंने कि ये खतरनाक होता है, तकलीफदायक होता है, उस पर हम चर्चा करके उनको बता सकें कि ये इतना भी डरावना नहीं है और अच्छा उपाय है आज के ज़माने में।
9: तो डॉक्टर साहिबा, सबसे पहला और ज़रूरी सवाल कि दांतों का इम्प्लांट क्या होता है?
10: दांतों का इम्प्लांट एक अभी की नई तकनीक है जिससे हम दांत जो हमारे किसी भी वजह से खोए हैं, चाहे एक्सीडेंट, चाहे सड़न या किसी भी तकलीफ के कारण हमको निकालना पड़ा हो, उसका नकली दांत बनाने का एक नया टेक्निक है।
9: अच्छा, तो अगला सवाल हम आपसे ये करना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां होती हैं जिनमें इम्प्लांट की ज़रूरत पड़ती है?
10: जैसा कि मैंने बताया, इम्प्लांट एक नकली दांत बनाने का तरीका है। तो नकली दांत, हम जब भी हमारे दांत किसी भी रीज़न से निकालने पड़ते हैं, हमको नकली दांत बनाने पड़ते हैं, और उसकी दो तकनीक होती हैं। एक तो हम नए रोज़ निकलने वाले दांत बनाते हैं और एक हम फिक्स दांत बनाते हैं। तो फिक्स दांत जो बनाने हैं वो आजकल हम इम्प्लांट से ज़्यादा अच्छे बनते हैं, वो हम लोगों को सलाह देते हैं।

0: सकते हैं।
1: अच्छा, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि लोग अक्सर नकली दांत यानी कि डेंचर और इम्प्लांट में ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप बताइए कि इन दोनों में क्या अंतर है?
0: नकली दांत जो डेंचर है वो रोज निकलने वाले दांत जो हम बनाते हैं उसका तरीका है, और इम्प्लांट फिक्स है। इम्प्लांट में हम क्या करते हैं, जबड़े की हड्डी में एक स्क्रू से फिक्स करते हैं जो आपके असली दांतों की जड़ की तरह काम करता है, और उसके ऊपर दांत बनाया जाता है। तो इम्प्लांट की ग्रिप ज़्यादा अच्छी रहती है, वो हिलता नहीं है मुंह में, और डेंचर जिसको हम मसूड़ों के सपोर्ट से बनाते हैं वो कुछ भी खाते या बात करते समय निकलता है, और आपको उसको डेली निकाल के साफ करके लगाना पड़ता है। फिर इम्प्लांट लगे ही रहेंगे आपको मुंह में ही, जैसे आप असली दांतों की देखभाल करते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देके आपको उसकी देखभाल करनी रहती है। और खाने का जो प्रेशर है डेंचर में, क्योंकि डेंचर मुंह में हिलता है तो उसमें इतनी मजबूती से हम सब चीजें खाने में नहीं हो पाता है, रोज छाले होना वगैरह शिकायत होती है, लेकिन ये सब चीजें इम्प्लांट में नहीं होती है क्योंकि वो फिक्स है, तो ये सब प्रॉब्लम नहीं आती है।
1: अच्छा, तो आपका ये कहना है कि नकली दांत की अपेक्षा इम्प्लांट ज्यादा मजबूत है?
0: हाँ, डेंचर से कंपेयर करेंगे तो इम्प्लांट बहुत अच्छे हैं, वो एकदम एकदम असली तो नहीं बोल सकती, लेकिन हाँ काफी हद तक असली दांतों जैसा चबाने में उनमें रहता है प्रेशर।
1: अच्छा, एक बात मैंने और देखी है कि मैम, इम्प्लांट की प्रक्रिया सुनकर लोग थोड़ा सा डर जाते हैं, क्या ये दर्दनाक होती है?
0: वो ही है, आजकल भ्रम ज़्यादा है, थोड़ा दर्दनाक तो है देखिए, क्योंकि हम जड़ में एक स्क्रू फिक्स कर रहे हैं तो थोड़ी तकलीफ होती है, बट इतनी नहीं कि आप पूरी जिंदगी बिना दांत के निकाल दो। ये जब करते हैं तब हम सुन करके स्क्रू प्लेस करते हैं तो बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है, आसानी से कोई भी करवा सकता है इसको।
1: अच्छा, तो हम ये जानना चाहेंगे डॉक्टर साहिबा कि इस प्रक्रिया में कितना समय लगता है और इसकी सफलता की कितनी उम्मीद होती है?
0: एक इम्प्लांट लगाने में हमें करीबन आधा घंटा लग सकता है, पूरे प्रोसीजर में स्टार्ट ऑफ एनेस्थीशिया से लेके मैं एंड तक आपको बता रही हूँ, लगभग आधा घंटा। और जब किसी के पूरे दांत पूरी बत्ती सी बनानी रहती है तो हमें समय लग जाता है, क्योंकि ऐसे केस में हमें 10 से 12 इम्प्लांट एक पेशेंट में लगाने पड़ते हैं, तो वो डिपेंड करता है हम आपके में कितने इम्प्लांट लगा रहे हैं। और सफलता तो ऐसा है कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अगर उसकी देखभाल बहुत अच्छी करेंगे, स्मोकिंग की या तम्बाकू सबकी आदतें नहीं होंगी तो इम्प्लांट की लाइफ बहुत अच्छी रहती है। और दूसरा, अगर आपको डायबिटीज़ है तो वो शुरू में जब तक इम्प्लांट हील हो रहा है, डायबिटीज़ अगर कंट्रोल रहेगी तो इम्प्लांट की सक्सेस के रेट ज़्यादा अच्छे रहते हैं।
1: अच्छा, इसका मतलब ये है कि हमें तंबाकू और
0: धूम्रपान
1: से दूर रहना चाहिए।
0: और आपको मधुमेह या और कोई भी शिकायत है, बीमारी है, तो कुछ समय के लिए, जब तक इम्प्लांट का इनिशियल 2 से 3 महीना जो मैं इम्प्लांट बॉडी में फिक्स हो रहा है तब तक उसको कंट्रोल रहना जरूरी है, आपको थोड़ा खान पान भी ध्यान से करना होगा। 2 महीने बाद आप सब उससे खा सकेंगे, कोई परहेज नहीं रहती है फिर खाने में।
1: तो आप हमें ये बताइए कि इम्प्लांट के बाद किस तरीके की देखभाल ज़रूरी होती है?
0: इम्प्लांट लगाने के बाद शुरू में 1.5 से 2 महीने तक हमें कड़क चीज़ नहीं खानी चाहिए, थोड़ा एवरेज, एकदम नरम भी नहीं बोलूँगी मैं, लेकिन थोड़ा सॉफ्ट खाना खाना चाहिए। और कोई भी बीमारी है तो उसका आपको कंट्रोल में रखना है, रेगुलर चेकअप में रहना है कि आपकी कोई भी बीमारी जैसे शुगर या बीपी ये ज़्यादा लेवल ना बढ़ जाए, एक एवरेज रहेगा तो हीलिंग बहुत अच्छी होती है। और स्मोकिंग और तम्बाकू तो हो सके तो बिल्कुल ही बंद होना चाहिए, क्योंकि इसके आसपास, इम्प्लांट के आसपास अगर सफाई नहीं होगी, तम्बाकू के कण जमा रहेंगे तो इम्प्लांट के फेलियर के चांसेस रहते हैं, इम्प्लांट सफल नहीं होता है।
1: इसका मतलब ये है कि हमें इम्प्लांट को सफल करने के लिए तम्बाकू, गुटखा और मधुमेह को कंट्रोल में करना होगा।
0: जी, इम्प्लांट को सफल करने के लिए सब तो नहीं चाहिए, और वैसे भी हमें अपने नॉर्मल दांतों की सफलता के लिए भी तम्बाकू गुटखा तो नहीं लेना चाहिए, तो उसे छोड़ देना तो बहुत जरूरी रहता है।
1: अच्छा डॉक्टर साहिबा, हमें आप एक बात बताइए कि इम्प्लांट क्या हर कोई व्यक्ति करा सकता है?
0: हाँ, इम्प्लांट हम हर किसी के लिए कर सकते हैं, बाकी कुछ बेसिक हम लोग टेस्ट पहले कर लेते हैं, जैसे हम एक्सरे करके बोन सपोर्ट देख लेते हैं कि जो आपके जबड़े की हड्डी है वो कितनी स्ट्रांग है, उस हिसाब से उस साइज का इम्प्लांट प्लान करके लगाया जाता है, बाकी कोई भी कारण से इम्प्लांट नहीं हो सकता ऐसा नहीं रहता है। हाँ, जो कारण है, अगर किसी को कुछ तकलीफ है तो शुरू के 1-2 महीने हम उसको सुधार के फिर

0: लगा सकते हैं।
1: डॉक्टर साहिबा, हमने ये देखा है कि हमारे क्षेत्र में अक्सर लोग स्वास्थ्य के प्रति इतने जागरूक नहीं होते हैं, तो आप हमें ये बताइए कि इस क्षेत्र में लोग इम्प्लांट के बारे में कितने जागरूक हैं?
0: थोड़ा हमारे क्षेत्र में इस बारे में जानकारी कम है। लोग सर्जरी और स्क्रू के नाम से डर के बैठ जाते हैं और वो इम्प्लांट के बदले दूसरे तकनीक से फिक्स दांत बनवाते हैं, जैसे कि ब्रिज हो गया, जिसमें हम आसपास के दांतों को घिस के फिक्स दांत बनाते हैं। तो ये जानकारी सबको मिलना बहुत ज़रूरी है और आज के ज़माने में आवश्यक भी है कि इम्प्लांट से कोई नुकसान नहीं है और इतना तकलीफ देह नहीं है, एक अच्छी टेक्निक है, इसलिए हर किसी को जानकारी मिलनी चाहिए। थोड़ा डर है लोगों को, पर इतना तकलीफ नहीं है जितना लोग डर के इसको नहीं करवाते हैं।
1: एक सवाल और हम पूछना चाहेंगे आपसे कि क्या ये जो इम्प्लांट आप करते हैं, ये इम्प्लांट का इलाज कितना महंगा है?
0: देखिए, अगर आप एक या दो या तीन दांत रिप्लेस करवा रहे हैं तो इम्प्लांट का इलाज इतना महंगा नहीं है, क्योंकि हम एक या दो इम्प्लांट लगा के उसके ऊपर बाकी सब दांत सेट करके लगा देते हैं। लेकिन हाँ, अगर पूरे जबड़े का है तो फिर थोड़ा पेशेंट को महंगा लग सकता है, क्योंकि वो एक साथ 12 इम्प्लांट का खर्चा करता है। बट अगर आप थोड़े थोड़े में ठीक करवाते रहेंगे तो ये इम्प्लांट आपको महंगा नहीं लगेगा।
1: तो इस इम्प्लांट पर किसी तरीके की EMI या कोई अन्य सुविधा उपलब्ध होती है?
0: EMI तो नहीं है, पर अगर आप रेगुलर अपने डेंटिस्ट को दिखा रहे हैं तो इम्प्लांट जो लगाते हैं, हम जब इम्प्लांट लगाते हैं और उसके ऊपर दांत कभी हम किसी केस में 2 महीने बाद फिक्स करते हैं, हीलिंग के लिए अगर कभी रोकना पड़ा, तो आपका डेंटिस्ट आपसे पहले 50% बाद में 50% या जो भी वो चाहे कर सकता है। बाकी एज सच बैंक से या ऐसी किसी पॉलिसी EMI नहीं होती है उसकी।
1: अच्छा, तो आप ये बताइए, इम्प्लांट लगवाने के बाद व्यक्ति के जीवन में क्या बदलाव आते हैं? क्या इम्प्लांट के बाद व्यक्ति सामान्य खाना खा सकता है या फिर कुछ दिनों तक परहेज करना जरूरी होता है?
0: देखिए, कुछ दिनों तक मतलब 2 से 3 दिन हम मरीज को थोड़ा सॉफ्ट खाना खाने की सलाह देते हैं, क्योंकि इम्प्लांट लगाने के बाद एक छोटी सी सर्जरी है तो स्टिच लगता है, और सादा खाना खाने की सलाह दी जाती है। किसी किसी को हम 7 दिन तक ये बोलते हैं परहेज करने के लिए, बाकी उसके बाद तो आप सब नॉर्मल खा सकते हैं, कोई परहेज नहीं रहती है। और देखभाल में आपको जैसे नॉर्मल दांतों की करते हैं वैसे ही दांतों की देखभाल करनी होती है।
1: तो ऐसा इम्प्लांट करने के बाद बोलने या हंसने में किसी के जीवन में कोई फर्क आता है?
0: बिल्कुल नहीं, वो बल्कि और अच्छा हो जाता है। कुछ दिनों तक आपको थोड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि खोए हुए दांत की जगह पे अचानक से हम दांत लगा देंगे तो हमारी जबान को कुछ अटकता सा महसूस होता है, पर 1 से 2 दिन में वो आदत हो जाती है और फिर आपकी मुस्कुराहट या बोलना जैसा आपका पहले था असली दांतों के साथ, वैसा ही इम्प्लांट से हो जाता है।
1: अच्छा, एक बात और भी हम आपसे पूछना चाहेंगे कि इस इम्प्लांट में किसी तरीके का कोई जोखिम भी होता है क्या?
0: जोखिम नहीं होता है, बस इम्प्लांट अगर असफल हो गया तो वो फिक्स नहीं हो पाता, हिल जाता है, तो इन सच केसेस में हमको निकाल के इम्प्लांट को दूसरी जगह हम लगा सकते हैं, बाकी और कोई ज्यादा जोखिम इसमें नहीं होता है।
1: अच्छा, तो अगला सवाल हमारा ये है आपसे कि इम्प्लांट के बाद किन चीजों से हमें बचना चाहिए?
0: इम्प्लांट के बाद जो चीज़ें हमको ध्यान देनी चाहिए, जैसे कि मैंने पहले बताया, धूम्रपान, तंबाकू, गुड़ाखू, ये सब सेवन नहीं होना चाहिए। बाकी आपके दांतों की जो रेगुलर सफाई रहती है, दिन में 2 बार ब्रश करना, फ्लॉसिंग, कुछ भी खाने के बाद पानी से कुल्ला करना, इन सब आदतों को थोड़ा स्ट्रिक्टली या ध्यान से आपको पालन करना रहेगा।
1: श्रोताओं के लिए आपका एक संदेश जो दांतों की समस्या को नज़रअंदाज करते हैं।
0: देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी, इम्प्लांट आज के ज़माने में बहुत अच्छी टेक्निक है जो आपके खोए हुए दांतों को रिप्लेस कर देती है, पर वो जो नेचुरल दांत है उसके कंपटीशन में तो हमेशा ही कम रहेगा, तो अपने असली दांतों को बचाइए, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।
1: डॉक्टर साहिबा, आपने दांतों के इम्प्लांट विषय पर श्रोताओं को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। विदा लेने से पहले अगर कोई ज़रूरी बात जो आप हमारे श्रोताओं को बताना चाहें दांतों के बारे में?
0: मैं सबसे कहना चाहूँगी कि दांतों की देखभाल बहुत अच्छे से कीजिए, ये ना आपको सुंदर दिखने और बोलने के लिए, आपके आत्मसम्मान के लिए ज़रूरी है, बट आपकी सेहत के लिए भी बहुत ज़रूरी है। हमारी पाचन क्रिया मुंह से ही स्टार्ट होती है और अगर आप खाना चबाएंगे नहीं तो स्वस्थ कैसे रहेंगे, तो इसलिए दांतों का देखभाल बहुत ज़रूरी है और उसका नियमित चेकअप भी आपको करवाते रहना चाहिए, ताकि कुछ भी तकलीफ हो तो शुरुआती स्टेज में ही उसको ठीक कर दिया जाए, इम्प्लांट की नौबत ही ना आए, उसके पहले ही आप अपने दांतों की देखभाल करके उनको ठीक रखिए।

0: डॉक्टर साहिबा, आपने दांतों के इम्प्लांट जैसे महत्वपूर्ण विषय पर श्रोताओं को बहुत ही सही और स्पष्ट जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: स्वास्थ्य की बातें इस क्रम में आप सुन रहे थे दांतों का इम्प्लांट विषय पर वार्ता। इसमें डॉक्टर आशा दुल्हानी से भेंट कर रही थी आशा दुल्हानी। आप सुन रहे हैं नमस्कार जगदलपुर, प्रस्तुत है हल्बी समाचार बुलेटिन।
3: जुहार, ये आकाशवाणी जगदलपुर आए हल्बी ने समाचार बुलेटिन संगे मैं हितप्रीता ठाकुर। पहल आदित्य मूर्ख वर्मन। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मुह का छत्तीसगढ़ संग देश भर ने सामूहिक योगाभ्यास चो कई कार्यक्रम चो उदिम करतोर होली। बस्तर संभाग ने बले जेठाने नक्सली मन चो गढ़ रहे असन थान मन ने बले सुरक्षा बल चो जुआन मन और आत्मसमर्पित नक्सली मन बल करला सामूहिक योगाभ्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल ले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चो 23वां किस्त करला जारी। राज्य 11,600 ले अधिक ग्राम पंचायत मन ने आदि ग्राम सभा मन चो उदिम करतोर होई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चो दखाराखा ने केंद्र चो एनडीए सरकार चो 12 बरस पूर्तो के राज्य भीने भीने ठान मन ने करतोर होई से पंजीयन शिविर। अदाय समाचार सरसरा। 21 जून के देश भर ने 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनातो होली। ए बरस चो विषय स्वस्थ आयु के लिए योग रली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता चो रेड रोड कार्यक्रम ने योगाभ्यास चो नेतृत्व करला। ए मौका ने श्री मोदी बल्ला की संसार चो कोने कोने ठान मन ने 21 जून साल चो सबले लाम दिन होए से और योग चो कारण ये अबर सबले बड़े सामुदायिक तिहार असन होन गेली से। हुनमन बल्ला की योग सोजे देह पाए की निकुर राख तो उवाट नुहाए पहाड़ले ये जीव मन चो भावना के सांगे से और ये कोनी उम्र ने बले सीमित निहाए। हुनमन बल्ला की योग सबके जुड़ू आए और सफाए लोग के संगे अनु आए। छत्तीसगढ़ ने बले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मौका सामूहिक योग अभ्यास चो कई उदिमन करतोर होली। राज्यपाल रमेन डेका रायपुर ने रलो इंदिरा गांधी कृषि विद्यालय ने होलो योग शिविर ने मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होला। ए मौका ने राज्यपाल बल्ला कि आजी जमाई छत्तीसगढ़ सामूहिक योग अभ्यास लागून नंगर देह पाए स्वास्थ्य संतुलन आरु सकारात्मकता चो संगे संदेश के गोटो गोटो लोग मन लगे अमरा काम करे से। हुताय अंबिकापुर ने रलो पीजी कॉलेज ग्राउंड ने राज्य स्तरीय सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम ने मुख्यमंत्री विष्णु देसाय मुरमुठा पहल सगा होन रला। ए मौका ने मुख्यमंत्री योगाभ्यास करून राज्य लोग मन के अमदिया सरलगा योग करून आपलो देह पाए जीवना के स्वस्थ निरोग बना तो संदेश दिला। राज्य ने बस्तर संभाग संगे दूसर जिला मन ने बले योग कार्यक्रम मन चो उदिम करतोर होली। जेठाने मंत्री सांसद और विधायक मूर सगा चो रूप ने शामिल होला। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मौका छत्तीसगढ़ चो जमाई 33 ठान जेल मन ने बले योग कार्यक्रम मन होली। ए मौका हजारों बंदी मन योग करला। हुताय केंद्रीय संचार ब्यूरो बाटली जगदलपुर चो शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ने योग शिविर चो उदिम करतोर होली। ए शिविर ने एनसीसी एनएसएस पतंजलि योग समिति आरु जुवान मन संगे लमसम 150 जन प्रतिभागी मन भाग धरला। बीजापुर जिला ने केबई तो नक्सली मन चो गढ़ रली। कर्रे गुट्टा ढोंगरी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मौका ने सुरक्षा बल चो अधिकारी मन आरु जुवान मन सामूहिक योगाभ्यास करला। ब्लैक फॉरेस्ट चो नाव ने चिनाबाना होलो ये 5000 फीट डेंग डोंगरी केवई तो नाव चीन माओवादी मन सबले नंगत बड़े गढ़ होते रली। साल 2025 चो अप्रैल मई महीना ने सुरक्षा बल मन बाटले चला तो ऐतिहासिक ऑपरेशन बल्ले ब्लैक फॉरेस्ट ने नक्सली मन चो ये गढ़ के भुसराउन देतोर होली। इठानी कई दिन तक चलतो बीती अभियान ने आगर ले आगर हथियार आरु 450 ले आगर आईईडी बरामद करतोर होन रली। ए बात नोहलोड आरु संवेदनशील ठान परगन ने रलो सुरक्षा शिविर ने 21 जून के योग सत्र चो उदिम करतोर होली। हुताय बस्तर संभाग चो भीने भीने जिला मन ने आत्मसमर्पित माओवादी बले योग कार्यक्रम में शामिल होला। बीजापुर चो जिला पंचायत संसाधन केंद्र ने होलो ये उदिम ठाने जनप्रतिनिधि मन अधिकारी मन कर्मधारी मन सुरक्षा बल मन आरु लोग मन चो संगे संग आत्मसमर्पित माओवादी मन रोजे दुनिया योग करतो आरु समाज चो मूर धारा ने फिरून भाती रहून सकारात्मक नगद जीवना जीवतो संकल्प धरला। असनेची कोंडागांव जिला चो शासकीय आदर्श आवासीय कन्या महाविद्यालय परिसर ने होलो जिला स्तरीय सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम ने देव खरगांव ने रलो पुनर्वास केंद्र चो पुनर्वासित माओवादी मन बले बड़े हरिक ने भाग धरला। और फिर नारायणपुर जिला चो सामरिक मुख्यालय मंजू मेटा अरु सीओबी एडजुम आदेर ईदवाया कुंडेल अरु जाटलूर ने बले योग शिविर चो उदिम करतोर होली। प्रधानमंत्री नरेंद्र

ओहलो विकसित भारत तो कल्पना पूरा होक नहीं सके। ए मौका ने मुख्यमंत्री बल्ला की पीएम किसान सम्मान निधि कास्तकार मन के बेड़ा कमाने का जे जरूरी धन चो सहायता दय से। राज्य चो 11,600 ले अधिक ठान ग्राम पंचायत मन ने आज ग्राम सभा मन चो उदिम करतर हो दे। ग्राम सभा मन ने आवास प्लस 2.0 चो स्थायी प्रतीक्षा सूची संगे भिन्न भिन्न विषय मन ने चर्चा गोट गोठियातर हो दे। आवास प्लस 2.0 सर्वेक्षण ने मिर्लो सिस्टम जनरेट स्थायी प्रतीक्षा सूची के दस्तोर आरू पढ़ून सुनातोर बले होए दे। संगे ची पात्र हितग्राही मंचो प्राथमिकता सूची सच करतोर बले होए दे। आरू गांवरिया मन ने मिर्लो दावा आपत्ति मंचो निदान करतोर बले होए दे। ग्राम सभा मन ने विकसित भारत रोजगार आरू आजीविका मिशन ग्रामीण लागून बले गांवरिया मन के जानकारी देतोर होए दे। पल्स पोलियो अभियान लागून 28 जून के राजभर ने शून्य ले धरून 5 बरस तक जो पिलामन के पोलियो ओखत पियातुर होए दे। होता है छांडी होलो बाचलो पिलामन के 29 और 30 जून के माप अप अभियान उवाट ने स्वास्थ्य कार्यकर्ता और मितानिन घर घर जाऊन ओखत पिया दे। स्वास्थ्य विभाग जमाए माए बाप अभिभावक बन के अपील कर ली से की हुनमन आप लोग 5 बरस तक जो पिलामन के लगे जो पोलियो बूथ ने उन पोलियो जो 2 टिपका ओखत जरूर पियाओत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चो दखारा खाने केंद्र ने एनडीए सरकार चो 12 बरस पूर्तो के एम होका राजभर ने ठाने ठाने योजना मंचो प्रचार प्रसार और पंजीयन शिविर मंचो उदिम बनातो हुए से। ऐसा लगाने नारायणपुर जिला चो अबुजमा ठान परगंचो ओरछा ने जन कल्याणकारी योजना मंचो लाभ लोग मन लगे अमरातो काजे 3 दिनिया शिविर चो उदिम होली। विश्वास के विकास के जन कल्याण के अभियान उवाट ने होलो ये शिविर थाने गांवरिया मंचो चीपा बाधा मंचो निपटान बले करतो होली। प्रशासन के मिलो 396 ठान आवेदन मन ने 277 ठान के अई ठाने से निपटान करून देतर होली। शिविर ने स्वास्थ्य महिला और बाल विकास पंचायत संगे भिने भिने विभाग मन सेवा दिला और गांवरिया मन के योजना मंचो लाभ अमरातो काम करला। हुताय कांकेर जिला ने बलि 12 वर्ष विश्वास के विकास के जन कल्याण के अभियान लागून 18 ले 20 जून तक पंजीयन शिविर चो उदिम करतो होली। शिविर ने गांवरिया मन के आयुष्मान भारत आयुष्मान वय वंदना पीएम सूर्यघर पीएम स्वनिधि प्रधानमंत्री आवास योजना जल जीवन मिशन पीएम कौशल विकास योजना और भिने भिने पेंशन योजना मन संगे दूसर योजना मन से जानकारी देतर बले होली। नीट यूजी चो फिर ले होतो परीक्षा 21 जून के छत्तीसगढ़ संगे देश भर ने होली। परीक्षा एक पारी ने मुंडी बेरा 2 बजे ले संज बेरा 5:15 तक होली। ये परीक्षा छत्तीसगढ़ चो 127 ठान केंद्र मन ने आयोजित करतो होली। जेठाने लमसम 46,000 ठान पढ़तो पीला शामिल होला। परीक्षा मौका रेलवे सुरक्षा बल जीआरपी ठान चो पुलिस और जिला प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था के दखली। रायपुर बिलासपुर संगे प्रमुख रेलवे स्टेशन मन ने अतिरिक्त सुरक्षा बल मन तैयार तैनात रला। रेलवे चो हिसाब ने परीक्षा मौका कसने प्रकार चो मन ने नी धर लगतो असन घटना चो काई सूचना नी मिरली। राज्य ने पीला मंचो मूर पढ़ई प्रारंभिक शिक्षा के और नंगत और सदर बनातो काजे विद्या आरंभ अभियान चलाकर हुए से। इलागुन आंगनबाड़ी केंद्र मन ने पूर्व प्राथमिक शिक्षा पुरालो 6 बरस चो पीला मन के विद्या आरंभ प्रमाण पत्र देउन स्कूल मन ने भर्ती करातो हुए से। ए मुरियानी चो मूर उद्देश्य पीला मन चो जीवना ने शिक्षा चो नवा मुरियानी के तिहार स्वरूप ने मनातोर आरु आंगनबाड़ी ले स्कूल तक चो बाट के हरिक उद्यम संघ चो बनातो राय। खेत बचाओ अभियान लागून सुकमा ने जैविक और प्राकृतिक खेती उपरे कार्यशाला चो उद्यम करतोर होली। कृषि विभाग और कृषि विज्ञान केंद्र चो संगति ने करलो ये कार्यक्रम ने कास्तकार मन के आधुनिक और प्राकृतिक खेती जो तकनीकी मंच जानकारी देतोर होली। कार्यशाला ने बस्तर सांसद महेश कश्यप बले शामिल होला। ए मौका ने हुनमन भिने भिने शासकीय योजना मन लागून कास्तकार मन और मछली पोसिया मन के लागतो जिनिस मन बले बांटला। श्री कश्यप कास्तकार मन ले प्राकृतिक और जैविक खेती उवाट ने कमानी करतो अपील करला। हुनमन बल्ला के दंतेवाड़ा चो असन सुकमा के बले जैविक जिला बनातो बाट ने सामूहिक कोशिश करतो आए। पेयजल स्रोत बल्लो ने पीतो पानी मिरातो ठानमन के जीवाणु रहित बनातो उद्देश्य ले जगदलपुर मंडल बाट ले बस्तर दंतेवाड़ा बीजापुर और सुकमा जिला ने क्लोरिन ओखत छिचातो हो से। ये अभियान लागून गांव ने रलो नल टेंडा मन और पानी जुहातो का जे बनालो पानी टंकी मन जो साफ सफाई करतो हो से। ये अभियान ने मेहरार मन बले भाग धरे सर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधीक्षण अभियंता कैलाश मंडरिया सांगला की 30 जून तक चलाते बीती अभियान लागून बस्तर दंतेवाड़ा बीजापुर और सुकमा जिला चो 28,500 ले अधिक ठान हैंडपंप बल्ले नन टेंडा मन और 1,000 ले अधिक नल जल योजना मन ने क्लोरिनेशन चो लक्ष्य निर्धारित करतो होली से। हुनमन सांगला की ये अभियान लागून अब तक लमसम 3,000 ठान हैंडपंप बल्लो ने बोरिंग मन के बनातो सजारतोर होली से। हुता 5,500 ले अधिक राइजर पाइप मन ने
पलटतोर बने होली से।

0: बतर पड़नी ले पहल नारायणपुर जिला जो जमाए 39 स्थान अमरुक नि सकतो असन बाट नहोलो शासकीय उचित मूल्य दुकान बल्ले राशन दुकान मन 3 महीना चो राशन सच्चो भंडारण होन गेली। एचले गांवरिया मन के राशन काजे कई सिपा बाधा नहीं होए दे। समाज कल्याण विभाग चो उप संचालक अरुण नोडल अधिकारी मन हाल मोहका ओरछा विकास खंड चो ग्राम पंचायत बेड़मा पारा नेरलो राशन दुकान चो निरीक्षण करून खाद्यान्न कितरो आसे एचो सत्यापन करला। लेख कर तो गोट ये आए कि ये ठान परगन मन ने बरसा बतर कैक नदी नाला मन ने पूर ऐसे जिला गुन कई गांव मन ने यार जहार बले मुश्किल होन जाए से जिला मुख्यालय संचो संपर्क बले नी रहे। एक दखुन जिला प्रशासन गांवरिया मन लगे ये उवाट ने राशन अमरातर उवाट कर ली से। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का दे 31 जुलाई तक नामांकन चो मांग होली से। महिला और बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ चो प्रतिभाशाली पीला मन के ये राष्ट्रीय सम्मान का दे आवेदन कर तो अपील कर ली से। ये पुरस्कार 5 से 18 बरख तक चो पीला मन के हुन मन चो वीरता हिम्मत सामाजिक सेवा पर्यावरण संरक्षण खेल कला संस्कृति और विज्ञान और प्रौद्योगिकी जसन ठान मन ने सबले नंगत काम कर तो काजे मिले से। एचो काजे आवेदन सोजे राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in उवाटले करलो ने से मानतोर होए दे। नारायणपुर जिला पुलिस गोटक नगद विचार करून DRG परिसर ने मैत्री कैफे चो मुरियानी कर ली से। ये कैफे थाने रतो जनजातीय लोक चो कला बस्तर चो रीतरिसुम सांस्कृतिक विरासत पुरका पाठी चो गदिया गुड़ा रहन सहन चो उपरे रहे दे। एक कैफे चो मुरियानी करतो बेरा वन मंत्री केदार कश्यप बल्ला की विकास रोजगार और विश्वास से स्थायी बल्ले हमेशा अम्बिया काजे शांति चो आधार आए और मुख्य धारा ने फिरुन इलो लोग मन के पूरे आंतो आगे बढ़ातो काजे नंगत को सीताए। लेख कर तो गोट ये आए कि ये मैत्री कैफे के बनातो काजे नारायणपुर पुलिस चो कर्मचारी मन खुदे काम करला। एक कैफे लागून आत्मसमर्पण नक्सली मन के रोजगार दिया तो योजना बले आसे। दंतेवाड़ा जिला चो ढोलकल ट्रैकिंग रूट चो लोकार्पण करतोर होली। वन आरु जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप ये ट्रैकिंग रूट चो मुरियानी करला। जिला खनिज संस्थान न्यास बाटले लमसम 61 लाख रूपया चो लागा ने एक सजरातोर होली से। ए रूट मुरहोलो ने ठान परगन ने हिम्मत संग चो बुलाचाला पर्यटन के बाढ़ती मिरे दे आरु ठाने रतो लोग मन के रोजगार चो नवा साधन नवा मौका बले मिरे दे। एचोले दंतेवाड़ा चो प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत के नवा चीना बाना पहचान मिरतो असन दखा दई से। बीजापुर चो जिला कार्यालय परिसर ने 21 जून के नशा मुक्त बीजापुर शपथ कार्यक्रम बल्ले निशा पान ले धुरिया रतो काजे क्रिया खातो उदिम बनातो होली। ए उदिम थाने अपर कलेक्टर भूपेंद्र अग्रवाल आरु संयुक्त कलेक्टर जागेश्वर कौशल अधिकारी मन आरु कर्मचारी मन के नशा मुक्ति चो क्रिया खुआला। खुतय अधिकारी मन कर्मचारी मन के नशा चो नुकसान आरु एचोले सामाजिक प्रभाव मन चो जानकारी बले दिला। ए मौका अधिकारी मन आरु कर्मचारी मन जिला के नशा मुक्त बनातो काजे सरलगा कोशित करतो आरु जन कल्याण जागरूकता गतिविधि मन ने सक्रिय सहयोग बल्ले लोग राज के नगत गोठ मन लांगून चेताउन सकार सहारा होन सहायता देतो काजे आप लोग संकल्प गोठ मन के दुहड़ा मारला। सरासरी राय मूर खबर मन एक हार फेर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मौका छत्तीसगढ़ संगे देश भर में सामूहिक योगाभ्यास चो कई कार्यक्रम चो उदिम करतो होली। बस्तर संभाग ने बले जेठाने नक्सली मन चो गढ़ रहे असन ठान मन ने बले सुरक्षा बल से जुवान मन आरु आत्मसमर्पित नक्सली मन बल करला सामूहिक योगाभ्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चो 23वां किस्त करला जारी। राज्य 11,600 ले अधिक ग्राम पंचायत मन ने आज ही ग्राम सभा मन चो उदिम करतो होए दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चो दखा रखा ने केंद्र चो एनडीए सरकार चो 12 बरस पूर्तो के राज चो भीने भीने ठान मन ने करतो होए से पंजीयन शिविर। इते संगे हल्बी समाचार बुलेटिन चो ये अंक इथाई सरे से जुहार।
1: अभी हल्बी समाचार बुलेटिन का प्रसारण किया जा रहा था। आप सुन रहे हैं नमस्कार जगदलपुर।
2: GST से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड रोटी और छेना पनीर पर अब कोई GST नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह GST छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 cc तक की बाइक पर GST 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
3: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग

0: दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
3: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
2: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
4: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
5: प्रस्तुत है आज की मधुरिमा। जहां से तेरा मन चाहे वहां से मेरी जिंदगी पढ़ ले तू, पन्ना चाहे जो भी हो, हर खुले पन्ने पर बस तेरा ही नाम होगा।

0: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल, अब हर शनिवार को शाम 7:30 बजे से 8 बजे तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 बजे से 4 बजे तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 07782222666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज, आपकी कहानी, आपके खेतों की जुबानी।
1: अभी इस तरफ ना निगाह कर मैं गजल की पलकें सवार लूं, अभी इस तरफ ना निगाह कर मैं गजल की पलकें सवार लूं, मेरा लफ्ज लफ्ज हो जाए आईना, आ तुझे इस आईने में उतार लूं।

अगर समय की सीमा न होती तो कुछ देर और यूं ही बतलाते हम। अगर समय की सीमा न होती तो कुछ देर और यूं ही बतियाते हम। अगर सामने ही बैठे रहे तो फिर तुम्हें कैसे याद आते हम।

जोश शिकारी और मौसम फिल्म के गीतों के साथ ये थी मधुरिमा। और इसी के साथ आज नमस्कार जगदलपुर का सफर यहीं तक।

आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 8 बजने को है। कुछ ही देर में समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद और साइबर खतरों समेत वैश्विक सुरक्षा की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए आपसी सहयोग को और मजबूत करने का आह्वान किया। कतर के अमीर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन पर रास लाफान गैस संयंत्र दुर्घटना में 12 भारतीयों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया। भारत ने पाक अधिकृत कश्मीर की स्थिति पर पाकिस्तान की टिप्पणी की कड़ी आलोचना की, कहा पाकिस्तान मानवाधिकारों के हनन से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक, और फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। इंग्लैंड और घाना के बीच मैच बगैर किसी गोल के बराबरी पर छूटा। और अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की दिल्ली बैठक में आतंकवाद, साइबर खतरों और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया है। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने की। बैठक में सदस्य देशों ने उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार ऐसे सुरक्षा खतरों पर खास तौर से चर्चा हुई जो अब वैश्विक रूप ले चुके हैं। प्रतिनिधियों ने ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और आतंकवादी संगठनों द्वारा नई तकनीक के दुरुपयोग पर भी चर्चा की। बैठक में आतंकवाद रोधी तथा सूचना और संचार तकनीक के उपयोग में सुरक्षा संबंधी कार्य समूहों के कार्यों और उनके परिणामों की भी समीक्षा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ साझा कार्रवाई की प्रतिबद्धता दोहराई। बैठक के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सर्गेई शोइगु के बीच नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के क्रम में द्विपक्षीय वार्ता हुई है। इस वार्ता में दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री डोभाल ने सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया।
1: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ टेलीफोन पर बात की। कतर के अमीर ने रविवार को रास लाफान शहर में हुए हादसे में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर दुख जताया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पीड़ित परिवारों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के लिए धन्यवाद दिया और घायलों को तुरंत चिकित्सकीय मदद पहुंचाने के लिए श्री थानी की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया में शांति के प्रयासों में कतर की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इलाके में शांति और स्थिरता बहाल होगी। इस बीच विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कतर में हादसे पर बताया कि दुर्घटना में

0: मृतकों के शव वापस लाने के प्रयास जारी हैं।
1: रासलफान परियोजना में जब वहां एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहां के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
0: भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी प्रशासन ने निहत्थे नागरिकों के साथ बर्बर व्यवहार किया, जरूरी सामान और दवाओं की आपूर्ति रोक दी गई है और इंटरनेट बंद है। श्री जायसवाल ने बांग्लादेश में देवी देवताओं की मूर्तियों के अपमान की खबरों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है।
1: हम लोगों ने देखा कि बांग्लादेश में से कुछ खबर आई कि वहां पर हिंदू भगवान के तस्वीरों के साथ अपवित्र हरकतें हुई, जिसके कारण वहां पर विरोध प्रदर्शन हुआ है। और हम लोग क्या ये उम्मीद है कि बांग्लादेश की सरकार जो वहां पर चरमपंथी लोग हैं उस पर अंकुश लगाएगी और जो वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रह रहे हैं उसकी सुरक्षा को गारंटी करेगी।
0: खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमरीका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे हैं।
1: 11 जहाज जो भारत की तरफ आ रहे हैं, इसमें से 3 भारतीय जहाज हैं जो कि क्रूड ऑयल टैंकर्स हैं। इनमें 2,85,000 मेट्रिक टन क्रूड ऑयल है। इसके अलावा एक विदेशी पताका के साथ एक एलपीजी टैंकर जो भारत की तरफ आ रहा है और एक विदेशी पताका के साथ फर्टिलाइजर कार्गो के साथ वो आ रहे हैं। और जो अन्य 10 हमारे जहाज हैं वो भी हमारी उम्मीद है कि जल्द ही वो हॉर्मुज पार करके भारत की तरफ आ जाएंगे।
0: अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन होर्मुज जलडमरू मध्य में फंसे 11,000 से ज्यादा नाविकों को निकालेगा। संगठन के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने कहा कि इस अभियान में मदद के लिए जरूरी सुरक्षा की गारंटी ली गई है। इस अभियान में ईरान, ओमान और क्षेत्र के अन्य देशों और समुद्री उद्योग जगत का सहयोग लिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के जिनेवा कार्यालय में ईरान के राजदूत अली बहरीनी ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य व्यावसायिक जहाजों के लिए बिना किसी टोल के पूरी तरह खुला है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और अमरीका ने प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय वार्ता शुरू की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में अमरीका के व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीर और भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: दोनों पक्ष 24 जुलाई से पहले एक अंतरिम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसी तारीख को व्यापारिक साझेदारों से होने वाले आयात पर अमेरिका का अस्थायी 10% टैरिफ समाप्त होने वाला है। 20 फरवरी को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने व्यापक टैरिफ को रद्द कर दिया था। इसके बाद अमेरिकी प्रशासन ने सभी देशों पर 24 फरवरी से 150 दिनों के लिए 10% का अस्थायी टैरिफ लगाया था। द्विपक्षीय व्यापार तनाव कम होने के बाद अमेरिका ने ज्यादातर भारतीय सामानों पर जवाबी टैरिफ को घटाकर 18% कर दिया और पहले से लगे 25% पेनल्टी टैरिफ को हटा दिया। भारत ने भी अमेरिका के कई औद्योगिक और कृषि उत्पादों पर टैरिफ कम करने या समाप्त करने का प्रस्ताव दिया था, जिनमें सूखे डिस्टिलर अनाज, पशुओं के चारे के लिए लाल ज्वार, ट्री नट्स, फल, सोयाबीन तेल, वाइन और स्पिरिट्स आदि शामिल हैं। रिशु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, विकास की गति को तेज करने और समावेशी विकास के लिए सभी पक्षों से और अधिक सहयोग आवश्यक है। उन्होंने ये बात कल नई दिल्ली में ग्लोबल कन्वर्जेंस फॉर ग्रोथ सम्मेलन को ऑनलाइन संबोधन में कही। एक रिपोर्ट।
3: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि मौजूदा दुनिया

0: में समृद्धि और चुनौतियां तो साझा हैं, लेकिन संघर्षों और अनिश्चितता का असर विकासशील और पिछड़े देशों पर अधिक पड़ता है। उन्होंने कहा कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए साझा वैश्विक कार्रवाई जरूरी है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि सभी देशों की घरेलू जरूरतें अलग अलग होती हैं और लगातार बने रहने वाले वैश्विक असंतुलन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की विकास दर मुख्य रूप से घरेलू मांग के कारण है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ रही अर्थव्यवस्था है और मध्यम अवधि में इसके सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर लगभग 7% रहने का अनुमान है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में विकसित और उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों ने हिस्सा लिया। इनमें भारत, ब्राजील, चीन, केन्या, दक्षिण कोरिया जैसे G7 देशों और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रतिनिधि शामिल थे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अल नीनो के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने के लिए खरीफ फसल के लिए एहतियाती तैयारियां कर रही है। श्री चौहान ने नई दिल्ली में कहा कि जुलाई में भी मॉनसून के कमजोर रहने की आशंका है।
2: ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है हमारी खरीफ की फसल, उस पर इसका असर पड़ सकता है। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है। इनमें से 111 जिले हमारी उच्च प्राथमिकता वाले जिले होंगे क्योंकि इनमें सिंचाई 25% से कम है। मध्यम प्राथमिकता वाले मतलब जहां 25-50% सिंचाई की व्यवस्थाएं हैं ऐसे 76 जिले हैं, और 128 जिले निम्न प्राथमिकता वाले इसलिए वहां सिंचाई के लिए डैम और बाकी चीजों की व्यवस्था है।
1: सरकार ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है और इसकी निरंतर निगरानी की जा रही है। निगरानी में तेल कंपनियां, वाहन निर्माता, ईंधन परीक्षण एजेंसियां और अन्य पक्ष शामिल हैं। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर इस बारे में चल रही खबरें भ्रामक हैं, निराधार हैं। E20 पेट्रोल की शुरुआत के बाद से एथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन की खराबी या वाहन में किसी तकनीकी खराबी की कोई व्यापक शिकायत सामने नहीं आई है। लखनऊ में कोचिंग सेंटर में आग लगने की घटना को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के कोचिंग संस्थानों के नियमन को मजबूत करने और अवैध कोचिंग सेंटर्स के विरुद्ध अभियान की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पूरे राज्य में आग से बचाव के उपायों की जांच मिशन मोड में की जाएगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप के में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया है। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागे और इसके साथ ही रोनाल्डो 6 विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। ग्रुप एल के एक अन्य मैच में कनाडा के टोरंटो में क्रोएशिया और पनामा के बीच मैच चल रहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद मनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों से पद्म सम्मान ग्रहण करने वाली हस्तियों की तस्वीरें और होर्मुज को पार कर भारत की ओर आगे बढ़ रहे 11 ईंधन वाहक जहाजों की खबरें सबसे ऊपर छाई हैं। दैनिक भास्कर ने CUET परीक्षा परिणाम में सर्वाधिक अंक पाने वाली देवीना गहलोत का चित्र प्रकाशित करते हुए खबर को शीर्षक दिया है 100% वाले 20% बढ़े, प्रीमियम संस्थानों में दाखिला कठिन होगा। नवभारत टाइम्स ने परीक्षा में सफल रहे कुछ छात्रों के चित्र के साथ इस समाचार को शीर्षक दिया है। दिल्ली विश्वविद्यालय के दाखिले में CUET के बाद भी 100% की रेस। देशबंधु ने मौसम के मिजाज को पहले पन्ने पर जगह दी है। खबर को शीर्षक दिया है दिल्ली NCR में मौसम ने ली करवट और 12 दिन की देरी से मुंबई पहुंचा मानसून, जबकि दैनिक भास्कर का कहना है मानसून 3 दिन देरी से मुंबई पहुंचा। पत्र ने दिल्ली NCR में अभी हफ्ते भर और गर्मी और उमस बने रहने का अनुमान प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने संकट के बीच शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय में कहा है कि पश्चिम एशिया में हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाने की वजह से देश में बढ़ती महंगाई के बीच अब इसका असर औद्योगिक उत्पादन पर भी दिखने लगा है। पत्र की राय में मौजूदा संकट के लिए भले ही वैश्विक परिस्थितियां जिम्मेदार हों, लेकिन इसके समाधान के लिए कारगर कदम उठाने के बजाय इसका बोझ जनता पर डाल देने को उचित नहीं ठहराया जा सकता। वहीं राजस्थान पत्रिका ने कृषि क्षेत्र में भारत की उपलब्धि को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। वैज्ञानिकों की 7 साल की मेहनत रंग लाई।

0: प्रस्तुत है छत्तीसगढ़ी लोकगीत, कलाकार हैं डीएस बोरकर और साथी।
1: जीवो

लोक मंजरी में अभी आप विभिन्न बोलियों में लोकगीत सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 9 बजने को हैं। प्रस्तुत है झुमझुम।

इसमें हम सुनवा रहे हैं हल्बी लोकगीत। कलाकार हैं रैबारी और साथी।

दिया गोटा

काकड़ी खाएलू माकड़ी।

ಕರಿರಾಸಿ ಡೇಗ ಪಕ ನರೆವ.

మరి కుండాలు రా బాధలు.

ಜ್ಞಾನ ಮುನಿಗಳು ಪಾಠಿಗೆ ಪಾಠಿ ಹಾಬ್ಗೆ ಹಾರ.

Brasil, are mara mai na vai, ama que malu

ಮಿಡರಿ ವರೆ ರಡಿಯೋ ಟೇಷನ್ ಆಗರೆ.

નથી બે તુરત ચડ્યો તો ક

ಬಾಟಾ.

जय जय उदम लोक चिल्लवारो के।

झुमझुमा में अभी आप हल्बी लोकगीत सुन रहे हैं। कलाकार हैं रैबारी और साथी।

झुमझुमा। अभी आप इसमें हल्बी लोकगीत सुन रहे थे। कलाकार थे रैबारी और साथी। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। इसमें हमने आज जिस फिल्म को शामिल किया है वो फिल्म तब भी यादगार थी और आज भी दर्शकों के द्वारा खूब सराही जाती है। 1983 में बनी ये एक शानदार ड्रामा फिल्म है। इसमें माता पिता और बच्चों के बीच प्यार और भावनात्मक संबंधों को दर्शाया गया। ये कहानी फिल्म के मुख्य नायक, मुख्य नायिका और एक छोटे बच्चे की कहानी है। बातें हो रही हैं फिल्म मासूम के बारे में। इस फिल्म में मुख्य नायक थे नसीरुद्दीन शाह, शबाना आजमी यानी कि मुख्य नायिका और जुगल हंसराज एक बाल कलाकार के रूप में इस फिल्म में नजर आए थे।

इस फिल्म में दर्शाया गया एक परिवार, पति पत्नी और बच्चे, और तभी उनके बीच अचानक मुख्य नायक की पूर्व प्रेमिका के देहांत के बाद उसके पुत्र का आगमन होता है। इस मासूम बच्चे के साथ मुख्य नायक के जीवन में भी एक तूफान सा उमड़ पड़ता है। इसके बाद रिश्तों के तानों बानों से बुनी हुई एक मार्मिक कहानी आगे बढ़ती है, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा था।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।

बातें हो रही हैं फिल्म मासूम के बारे में। श्रोताओं, इस फिल्म ने कई पुरस्कार जीते थे। ये उस समय की एक सफलतम फिल्मों में से एक थी। इन पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री शबाना आजमी, सर्वश्रेष्ठ संगीतकार आर डी वर्मन, सर्वश्रेष्ठ गीतकार गुलजार और साथ ही साथ बाल कलाकारों के रूप में जुगल हंसराज और उर्मिला मातोंडकर की भी

श्रोताओं, कुछ फिल्में बड़े पर्दे पर सफल तो हो जाती हैं, लेकिन साथ ही साथ वो सफल होती हैं हमारे जहन में। उनके किरदार, उनके गीत, उनके सभी दृश्य दर्शकों को हमेशा याद रहते हैं। ऐसी फिल्में बार बार देखना हम पसंद करते हैं। मासूम ये भी एक ऐसी फिल्म थी जो रिश्तों और भावनात्मक संबंधों का महत्व दर्शाती है। उम्मीद करते हैं इस फिल्म से जुड़ी हुई ये यादें आपके दिलों तक पहुंच पाई होंगी।

एक ही फिल्म से। अभी आप ये कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 9:55 होने को हैं। कुछ ही देर में प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे।

0: प्रादेशिक समाचार,
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति ने कल नई दिल्ली में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में छत्तीसगढ़ की बुधरी ताती को पद्मश्री से सम्मानित किया। प्रदेश की 11,600 से अधिक ग्राम पंचायतों में आज ग्राम सभाओं का आयोजन किया जा रहा है और

0: अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर नवा रायपुर के ग्राम पलोद में 2036 पौधों का रोपण कर भारत के 2036 में ओलंपिक की मेजबानी के संकल्प को दिया गया समर्थन। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह के दूसरे चरण के तहत वर्ष 2026 के लिए पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार पाने वालों में छत्तीसगढ़ के बस्तर की डॉक्टर बुधरी ताती भी शामिल थीं। उन्हें समाज सेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। डॉक्टर ताती आदिवासी क्षेत्रों में महिलाओं को शिक्षित करने और उन्हें स्वरोजगार द्वारा आत्मनिर्भर बनाने के अपने निरंतर प्रयासों के लिए जानी जाती है। वर्ष 1986 में इन्होंने बस्तर जिले में महिला जागरूकता और सशक्तिकरण के एक केंद्र के रूप में बारसूर को स्थापित किया। इन्होंने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सामाजिक सेवा गतिविधियों में भी भाग लिया है। प्रदेश की 11,600 से अधिक ग्राम पंचायतों में आज ग्राम सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। ग्राम सभा में आवास प्लस 2.0 की स्थायी प्रतीक्षा सूची सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की जा रही है। ग्राम सभाओं में विकसित भारत, रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण के संबंध में भी ग्रामीणों को जानकारी दी जाएगी। अलनीनो के प्रभाव से इस बार देश में मानसून कमजोर रहने की आशंका के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में कई राज्यों के कृषि मंत्रियों, सचिवों, जिला कलेक्टरों और अधिकारियों के साथ चर्चा की। इस बैठक में छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रामविचार नेताम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। श्री नेताम ने बताया कि सूखे की स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार ने कम अवधि वाली फसलों, दलहन तिलहन पर जोर देने के साथ ही बीज सुरक्षा और फसल बीमा को प्राथमिकता देते हुए व्यापक रणनीति तैयार की है। वहीं कृषि उत्पादन आयुक्त सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी ने बताया कि कृषि विभाग ने कम अवधि वाली धान की किस्मों को बढ़ावा देने के साथ मक्का, कोदो, कुटकी, रागी, दलहनी और तिलहनी फसलों के गुणवत्तापूर्ण बीजों को सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर नवा रायपुर के ग्राम पलोद में आयोजित कार्यक्रम में रुद्राक्ष का पौधा रोपित किया। इस अवसर पर 2036 पौधों का रोपण कर भारत के 2036 में ओलंपिक की मेजबानी के संकल्प को समर्थन दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए बेहतर वातावरण और आधुनिक खेल अधोसंरचना विकसित की जा रही है। इन्होंने खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को सम्मानित कर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने विभागीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को नए शैक्षणिक सत्र की तैयारियां समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आगामी शैक्षणिक सत्र 2027-28 से विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक, गणवेश और साइकिल का वितरण 1 अप्रैल को ही किया जाएगा। बैठक में स्कूलों की साफ सफाई, मरम्मत कार्य, ड्रॉप आउट बच्चों को 31 जुलाई तक दोबारा स्कूलों में प्रवेश दिलाने और शिक्षण गुणवत्ता सुधार पर जोर दिया गया। साथ ही 1 जुलाई से सभी शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए VSK ऐप पर पंजीयन और उपस्थिति अनिवार्य होगी। जुलाई माह का वेतन ऐप में दर्ज उपस्थिति के आधार पर दिया जाएगा। गौरेला पेंड्रा मारवाही जिले के मारवाही थाना क्षेत्र में बीते 20 जून को हुए किराना व्यवसायी के अपहरण के मामले में पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने व्यवसायी को छोड़ने के बदले 20 लाख रुपए की फिरौती की मांग की थी। आरोपियों के पास से पुलिस ने हथियार, मोबाइल फोन और एक चारपहिया वाहन बरामद किया जिस पर नीली बत्ती और पुलिस लिखा हुआ था। और कुछ समाचार संक्षेप में। मत्स्य विभाग द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य विकास किसान समृद्धि सह योजना PMKSSY के तहत कल 25 जून को रायपुर में जल कृषि बीमा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण, पुनर्वास और सामाजिक समावेशन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों, संस्थाओं, संगठनों तथा कर्मचारियों से 31 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति ने कल नई दिल्ली में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में छत्तीसगढ़ की बुधरी ताती को पद्मश्री से सम्मानित किया। प्रदेश के 11,600 से अधिक ग्राम पंचायतों में आज ग्राम सभाओं का आयोजन किया जा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर नया रायपुर के ग्राम पलोद में 2036 पौधों का रोपण कर भारत के 2036 में ओलंपिक की मेजबानी के संकल्प को दिया गया समर्थन। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है गुलशन। इसमें हम सुनवा रहे हैं शीर्षक गीत। पहला गीत

हमने लिया है फिल्म। हम आपके हैं कौन से, आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और एसपी बालासुब्रमण्यम की। शीर्षक है हम।

अगला गीत हम सुनवा रहे हैं फिल्म कुर्बानी से। आवाजें हैं कंचन और मनहर की, गीत रचना है इंदिवार की, संगीत में सजाया है कल्याण जी अन्यान आनंद जी ने।

गुलशन में आप सुन रहे हैं शीर्षक गीत। अगला गीत हम सुनवा रहे हैं फिल्म 20 साल बाद से। आवाजें हैं अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज की। गीत रचना है आनंद बख्शी की और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेडाल का।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: खेल खेल में, आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये गीत शैलेंद्र सिंह की आवाज में। गीत लिखा है गुलशन बावरा ने, संगीत है आर डी बर्मन का।

कार्यक्रम का अंतिम गीत हम सुनवा रहे हैं फिल्म बॉबी से। आवाजें हैं शैलेंद्र सिंह और लता मंगेशकर की, गीत आनंद बख्शी का और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

गुलशन कार्यक्रम में अभी आप हम शीर्षक पर गीत सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 10:30 होने को हैं। प्रस्तुत है गुड़दुम। इसमें हम सुनवा रहे हैं हल्बी लोकगीत। कलाकार हैं मधुराम और साथी।

किसान भाई बहन मन का जे नुआ उवाड एदाए रोज शनिवार के सांझ बेरा 7:30 बजे ले 8 बजे तक सुना फोन इन किसान वाणी यथा कृषि महकमा चो विशेषज्ञ बल्लो ने खोजाकारी दादा दीदी दे दे आपन मन चो खेती कमाने ले जुड़लो सपाय समस्या चो समाधान बीज ले धरून हाट बाजार तक हर सवाल चो जवाब सीधा आपन मन के मिरे दे। और हाँ, ये कार्यक्रम चो रिकॉर्डिंग होय से रोजे मंगलवार अड़ौ पहाड़ 3:30 बजे ले 4 बजे तक तो आपन मन सपाय सुना और आप लोग सवाल सीधा आम के फोन ने सांगा। आमचो फोन नंबर आए 07782226666। फोन इन किसानवाणी आपन मंचो सवाल आपन मंचो कहानी खेती बाड़ी चो जुबानी आकाशवाणी जगदलपुर ने।

0: 来去，不如现在滴嘞滴嘞。说慢点的，再来去。
1: बस्तर के लोकगीतों के कार्यक्रम गुड़दुम में अभी आप सुन रहे थे मधुराम और साथियों के गाए हल्बी गीत। मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्स एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 11 बजे हैं, प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही कलाकार। श्रोताओं, आज हम बातें करेंगे पार्श्व गायक मोहम्मद इरफान पर, जो भारतीय फिल्म जगत के एक प्रसिद्ध पार्श्व गायक हैं। उनकी मधुर और भावपूर्ण आवाज ने उन्हें हिंदी फिल्म जगत में एक विशेष पहचान दिलाई।

0: पुलिस?
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 दो, बन जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: मोहम्मद इरफान को बचपन से ही संगीत का शौक था। जब उनके गुरु को ये बात ज्ञात हुई तो उन्होंने इरफान को संगीत में शिक्षित किया। इरफान अपने स्कूल के दिनों से ही संगीत से जुड़ी हर गतिविधि में हिस्सा लिया करते थे। मोहम्मद इरफान जो जीता वही सुपरस्टार सीजन 2 के विजेता भी रह चुके। इसके अलावा वे वॉइस ऑफ इंडिया और सारेगामा पा में भी बतौर प्रतिभागी रह चुके हैं। इरफान हिंदी फिल्मों के साथ ही तमिल, तेलुगु, उड़िया, मराठी और बंगाली फिल्मों में भी गाने गाए।

इरफान के करियर की शुरुआत एक कंसर्ट के दौरान हुई। दरअसल वो एक कंसर्ट में अपनी प्रस्तुति दे रहे थे। वहीं पर तमिल फिल्म के निर्देशक बाल सुब्रमण्यम भी उपस्थित थे और जब उन्होंने इरफान का गाना सुना तो वे मंत्रमुग्ध हो गए और उन्होंने संगीतकार ए आर रहमान से

दरअसल वो एक कंसर्ट में अपनी प्रस्तुति दे रहे थे। वहीं पर तमिल फिल्म के निर्देशक बाल सुब्रमण्यम भी उपस्थित थे और जब उन्होंने इरफान का गाना सुना तो वे मंत्रमुग्ध हो गए और उन्होंने संगीतकार ए आर रहमान से

इसके बाद सन 2010 में उन्होंने मणिरत्नम की फिल्म रावण में बहने दे से अपने संगीत करियर की हिंदी सिनेमा में शुरुआत की। इसी साल उन्होंने दो और गाने गाए, सलाम जिंदगी रहमत जरा, जिसके लिए उन्हें बेस्ट मेल सिंगर डेब्यू के अवार्ड से नवाजा गया।

उसके बाद इरफान ने महेश भट्ट निर्देशित फिल्म मर्डर 2 के लिए अरिजीत सिंह के साथ फिर मोहब्बत डुएट गाना गाया। ये गाना 2011 का सबसे हिट गाना साबित हुआ और ये गाना युवा वर्ग की पहली पसंद बन गई। इसके बाद इरफान ने हिंदी सिनेमा के कई बड़े संगीतकारों के साथ काम किया। साल 2014 इरफान के लिए बेहद सफल रहा। उन्होंने इसी साल कई फिल्मों में अपनी आवाजें दीं।

अभी आप सुन रहे थे पार्श्व गायक मोहम्मद इरफान पर केंद्रित कार्यक्रम एक ही कलाकार। हम आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 11:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए विभिन्न प्रदेशों के गीतों का कार्यक्रम सबरस। सबसे पहले सुनते हैं उदय मजुमदार और रेखा त्रिवेदी की आवाजों में गुजराती गीत।

आउर सपाय लोग मन बिहानी उठून बाती बेड़ा खड़ा बटे जाय सोत कसन बल्ले बुहाई कर तो समया बल्ले हिली से। तो भाई बहन मन बेड़ा काड़ा जो काम करतोर बल्ले खूबे जरूरी है से ने आमी देखो से कि आम जो गाँव पारा ने खूबे कलाकार भाई बहन मन कलाकार भाई बहन मन रहसो जोन बड़ी जो काम बले कर सोत लुआ जो काम बले कर सोत और बिजली मिस्त्री जो काम बले कर सोत असन खूबे काम बुता मन उन मन कर सोत और आपलो मेहनत ले आपलो मसागत ले आपलो जोन कला होए से उनके और उबासोत ने। तो भाई बहन मन आमी देखूँ से कलाकार भाई बहन भाई मन तो कर सोत मानतर आम चो जोन बहन मनात उन मन चो भूमिका बन बले कम नहीं होए से।

0: रिपोर्टिंग के साथ?
1: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
2: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
1: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
2: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
1: क्यों?
2: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
3: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
4: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
5: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
6: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
7: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
6: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
7: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
6: आकाशवाणी से।
3: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
8: किसान भाई बहन मन का जे नुआ उवाट एदाए रोजे शनिवार के सांझ बेरा 7:30 बजे ले 8 बजे तक सुना फोन इन किसान वाणी। यथा कृषि महकमा चो विशेषज्ञ बल्लो ने खोजाकारी दादा दीदी दे दे आपन मन चो खेती कमाने ले जुड़ लो सपाय समस्या चो समाधान। बीज ले धरून हाट बाजार तक हर सवाल चो जवाब सीधा आपन मन के मिरे दे। और हाँ, ये कार्यक्रम चो रिकॉर्डिंग होए से रोजे मंगलवार अड़ौ पहार 3:30 बजे ले 4 बजे तक। तो आपन मन सपाय सुना और आप लो सवाल सीधा आम के फोन ने सांगा। आमचो फोन नंबर आए 07782226666। फोन इन किसानवाणी, आपन मंचो सवाल, आपन मंचो कहानी, खेती बाड़ी चो जुबानी, आकाशवाणी जगदलपुर ने।
9: इत बदले मत्ता अच्छा मानेड़ा इलाज चुडून सस्ता आता सेंगेन वेटरनरी सर्जिकल जाकी और वेंट सामान किन मोलवेंट कम मत्ता जानवर किन इलाज तगवें राहत दरकना उम्मीद मिंदे। यू पूना मोलते ग्राहक लोर्क और व्यापारी लोर्क फायदा दरकिता। GST तक कोंडे पूना मोला 22 सितंबर 2025 तीना लागू आयना मिंदे।
4: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
5: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
10: तो भाई बहन मन, ये नंगत नंगत गोट मातमन तो आमी सुन लो ने मंत्र अदाय सम्यावली से आजी जो कलाकार चो। तो भाई बहन मन, आजी जोन कलाकार चो आमी गोट सांगू से उन मन चो नाम है पर्वती बाहुल, जोन बाहुल संगीत चो साधिका। भारत चो प्रसिद्ध बाहुल गीतकुरीन, संगीतकरीन, नर्तकी, चित्रकारी और आध्यात्मिक साधिका बले आत कौन पर्वती बाहुल। उनमन चो बाहुल परंपरा की आमचो देश चो लोग जानला। मांतर देश संगे संगे विदेश ने बले बल्लो ने विश्व ने उनमन के खूबे मान मिलला। बाहुल बल्लो ने पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश जो खूबे जुना लोक संस्कृति और अध्यात्म जो परंपरा है। बाहुल साधक आप लोग गीत गोविंद और साधना संगे ईश्वर जो खोज कर शोत। 2019 ने यूनेस्को बल्लो ने यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन बाट

ले बाउल गीत के मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज जो मान्यता मिली से। बाउल शब्द जो अर्थ हिंदी ने वातुल बल्लो ने लहरा जसन मुक्त जोन भगवान जो मया ने बया होलो असन, मतलब भगवान के खूब मानतोर, भगवान जो मया ने खुद के भुलकुन जातोर असन ऐसे एक ही बजातोर वाद्यंत्र होए से एक तारा दुग्गी खम्मक और नूपुर घुंगरू ने, और एमन जो जोन वेशभूषा होए से उनो ऐसे भगवा गेरुआ रंग जो और सफ़ेद बलों ने पंडरा रंग जो पटे ही होए से, और एमन जो नात उनमन आपलो बाल की कंडी खूबे लाम संगासोत, और जोन मनुक मन होसोत उनमन आपलो दाढ़ी के खूबे लाम संगासोत, और ए मन जो जीवन खूबे सादा होए से, ए मन जो जीवन जोन होए से खूबे सादा खूबे सिंपल होए से। और प्रमुख बाउल संत महात्मा मन जो आमी गोट गोटाऊँ बल्लो ने ललन शाह पार्वती बाहुल और पूर्णादास बाउल एमन बाउल संतमन रसोत। आमी देखो आमी आज गोट गोटाऊँ से पार्वती बाउल जो एमन जो जन्म होली से 1976 ने पश्चिम बंगाल जो गोटक मलयाली परिवार ने होली से पीरा बेरा ले संगीत चित्रकारी और भक्ति काजे एमन की खूबे रुचि रली, उनमन शास्त्रीय संगीत और ललित कला जो अध्ययन बले करला। युवावस्था ने पार्वती बाउल संगीत ले खूबे प्रभावित होला, फिर खूबे प्रसिद्ध बाउल गुरु मन लगे जाऊन बाती शिक्षा दीक्षा पहालो, बल्लो ने उनमन शिक्षा बले ग्रहण करला और उता उन दीक्षा बले धरला। उनमन जो गुरु मन ने सनल कुमार घोष और शशांको घोषाई जो खूबे नाम होए से। पार्वती बाहुल एक तारा दुग्गी और नूपुर संगीत गीत गाए से, उनमन जो गीत ने संगीत होए से खूबे नाचा डगा बले होए से, अभिनय और अध्यात्म जो खूबे सुंदर नंगत संदेश मन रहे से। उनमन भारत संगे संगे यूरोप अमेरिका जापान और खूबे देश ने आपलो प्रस्तुति के दिला। एमन बाहुल दर्शन और संगीत जो खूबे कार्यशाला मन बले करशोत, उनमन आपलो पति क्लाउस फेडलर संगे मिसुन बाउल कला और साधना जो संरक्षण काजे आश्रम और प्रशिक्षण केंद्र जो स्थापना बले करला से, जोन थानी विद्यार्थी मन काजे बाउल संगीत और दर्शन जो शिक्षा मेरे से। 2019 ने उनमन के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार ले सम्मान बले मिली। उनमन जो भारत देश जो लोग और आध्यात्मिक संगीत जो महत्वपूर्ण प्रतिनिधि बले उनमन के मानला सोत। पार्वती बाहुल जो कहना है कि ईश्वर के आमी बाहरी दुनिया ले नहीं पाउक सकूँ, आम के बाहर डगरालों ने ईश्वर नहीं मिरे, आप लो भीतरे दकुक पड़े दे आम की, और आप लो गीत ले प्रेम मानवता और भक्ति और आत्मज्ञान जो संदेश बले मेरे से, उन मंचो जीवना कलाकार संगे साधिका बले होए से। तो एक गोट बात रली एक गोट रली पार्वती बाहुल जो। तो भाई बहन मन आम जो नंगत नंगत गोट बात मन तो रहे से जी मानता रा ले दखा, आम जो मोंडरा ने तो गोटक गीत गोविंद बले दखा दे से, तो आले एक गीत क्या मी सुनो फिर डंडिकले गीत कुड़िया मन क्या मी चिताऊँ।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कला और कलाकार, आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। दोपहर के 12:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर द्वार।

केवल एक खूबे महत्व देतो रहे। तो भाई बहन मन ये तो रैली परिवार जो गोट बात ने, तो सपाई लोग मन जो परिवार उसनी रहे से। तो भाई बहन मन अमचो लगी गोटक जहला आसे आले ए जहला क्या मैं सुनूँ।

किसान भाई बहन मन का जे नुआ उवाट एदाए रोज शनिवार के सांझ बेरा 7:30 बजे ले 8 बजे तक सुना फोन इन किसान वाणी यथा कृषि महकमा चो विशेषज्ञ बल्लो ने खोजाकारी दादा दीदी दे दे आपन मन चो खेती कमाने ले जुड़ लो सपाई समस्या चो समाधान बीज ले धरून हाट बाजार तक हर सवाल चो जवाब सीधा आपन मन के मिरे दे। और हाँ, ये कार्यक्रम चो रिकॉर्डिंग होय से रोजे मंगलवार अड़ौ पहार 3:30 बजे ले 4 बजे तक। तो आपन मन सपाय सुना और आप लोग सवाल सीधा आम के फोन ने सांगा। आमचो फोन नंबर आए 07782226666। फोन इन किसानवाणी आपन मंचो सवाल आपन मंचो कहानी खेती बाड़ी चो जुबानी आकाशवाणी जगदलपुर ने।

0: हाँ तो बहिन मन, ये नंगत गोट की तो आमी सुनलू ने मांतर अदाय समय ओली से भेंट वार्ता छू। तो आजी आम जो संगे आसोत बहिन दयमती जोन गीत कुड़ी नाद और उन मन के बेट कर सोत बलवीर सिंह कच्छ।
1: नाव सांग काय नाव है?
2: दैमती।
1: दैमती
2: पोली भाटा।
1: अच्छा पोली भाटा। बोले दक झोरा ने काय काय धर ली सी?
2: साग भाजी धर ली।
1: साग भाजी धर ली सी हाटे उर ली।
2: हाँ हाँ।
1: बोले खेती बाड़ी है कि काय करो?
2: खेती बाड़ी है।
1: खेती बाड़ी है। अच्छा ये भी कहीं आसे तुम तन फसल उसल?
2: ये भी आम जहर जोंदरा आसे।
1: जोंदरा? अच्छा बोले ने मंडाला साज?
2: हाँ रोपलू से।
1: रोपला? बोले अकर ली कि ना जो?
2: अकरे से।
1: अकरे से? कितलो दिन असन ली जाले?
2: ये दी 15 एक दिन बल ना जो है।
1: अच्छा नाव सांग काय नाव है जाले?
2: दैमती।
1: दैमती। हाँ बोले ने खाली जोंदरा चाहिए कहीं का और कहीं साग भाजी बोला?
2: आज कल नहीं है साग भाजी, खाली जोंदरा चाहिए।
1: अच्छा दक तुई काय भजन गीत बोल गाऊ आसमानी?
2: हो ये दे एक जन तुलसी तू का तुष्टि बोलू नहीं दे
1: आले
2: दुर्गा तुष्टि
1: आले। हाँ
2: हरि ओम जय भगवान विष्णु हरि। हरि बंदई श्री दुर्गा मांगो रत्नगिरी वासी निसा धरे जन्मिलु।

0: अच्छे से भेजो भेजो कुछ भी बोलते हैं।
1: हाँ रेला भाई देख,
0: हाँ
1: मैं बोला अमर लिया जी ने
0: हाँ दादा ते बोले अमर लिस ने
1: और ये बिना बोलने ने जानसीत की अबे तो चमास बतर बोले मुर होली से और कोनी कोनी पानी बोलो घस रे सर कोनी कोनी ना जुन बोले
0: हाँ।
1: और असन समय आना है कि देख बोलो ने आमचो जोन घर परिवार होला गांव चो जितलो बोले कुटुंब परिवार आसोत
0: हाँ।
1: नहा

0: यही सब तो बड़ बात मात्र ये विदा वर्षा समय आसन समय न बल्कि ना खान पान चो बले ध्यान रखो पड़े ले नानी पीला ले धरुन बड़े सियान तक खान पान अच्छा कर लो ने आमचो शरीर आमचो देह बल अच्छा रहे दे और देह अच्छा रहे आम काम बुदा बल अच्छा करुक सको कसन
1: देह तो सब कुछ ऐसे
0: हाँ हाँ और असन का है कि वर्षा समय ने आम जसन कैच बले जसन दारा भाजी बल खाऊ से मात्र असन समय ने कीड़ी मन बल हो सर
1: हाँ भाजी ने तो कंडी कीड़ा मकड़ा बल रहे सत ने
0: हाँ हाँ तो आए उनके खीन दखन बाती बले हमके साग भाजी बना पड़े से
1: और साग कंडी कच्चा सी जोग पड़े देवे ने
0: हाँ,
1: और पानी बले पी लो नी कंडी तपला तपला पीक पड़े से
0: पड़ सही गोट के तो ये मुर कर ली मैं उन्हीं गोट के बोलते रहे कि हाँ, जैसे ये समय आने का थाकलो जुगे करो जो थाकलो सियान सियान इन मासोत उन मन के खीन एक तपलो पानी तपलो पेज मतलब तपलो तपलो कहीं बल खातो जी नहीं सोली
1: हाँ।
0: उन सब के खुआलन काय के मन जो देह बल खिन अच्छा लागे दे
1: हाँ।
0: और उन संगे संगे नहातोर जोन होय से उनके हाँ। करा पानी के बल नहातर नवाय ने
1: हाँ।
0: खिन थाकलो सियान हो नाल पीला मन हो मन के खिन तपलो तपलो देह ने अच्छा गेलो न बल अच्छा अस्थिर लागे
1: दे हाँ।
0: तो असन खिन काम के काय के हम जो घर परिवार के चला तो काचे हम के सप्पाय लोग के मिलन बाती ये जन खान पान ले हो नाल स्कूल हो नाल काम बुता हो
1: हाँ,
0: काम
1: हाँ,
0: बुता बोल तो कई प्रकार चो काम मना से बेड़ा बुता हो कोनी नौकरी कर सो कोनी कूली भूती कर सो तो आम के चो देह अच्छा रहे सब कर सको
1: हाँ,
0: और आम चो देह अच्छा रहे घर परिवार बोला अच्छा देखो सको आए कसन और तो दक मैं आज तुम चो ये घर द्वार कार्यक्रम में उम्र रहे
1: हाँ,
0: तो आज समय बल हो लिए थे जातो ने अलविदा धरुन देस
1: तो दादा तू आम चो कार्यक्रम ने ली चो कच तू चो बले कुबी कुबे धन्यवाद तो बहन मन आम चो जातोर समय बले होली से तो जातोर पूरे घर द्वार कार्यक्रम सुनतोर सफाय बहन मन के मैं रेला
0: मैं सोमारू करें से
1: आमी दोनों करूं से खुबे खुबे जुहार, जुहार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम घर द्वार, आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। दोपहर के 1 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में समाचार। हम आकाशवाणी दिल्ली से

0: भारत के लंबे समय से चले आ रहे रुख को दोहराया। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है। ईरान के तेहरान में भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा कि बदलते घटनाक्रमों के बावजूद भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचना चाहिए। देश में रह रहे भारतीय नागरिकों और बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी तथा सतर्कता बरतने और स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 3 दिन की खाड़ी क्षेत्र की यात्रा पर हैं। इसका उद्देश्य ईरान के साथ हुए नए संवाद और समझौते के बाद प्रमुख अरब सहयोगियों को विश्वास दिलाना है। 4 महीने से चल रहे पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका ने ईरान के साथ नया समझौता किया है। यात्रा से पहले श्री रूबियो ने कहा कि उनकी यात्रा का उद्देश्य ईरान और अमेरिका की बातचीत में खाड़ी देशों की राय को महत्व देना है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते के अंतर्गत ईरान को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने टोल वसूली को अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया। आज पासपोर्ट सेवा दिवस है। ये दिन 24 जून 1967 को पासपोर्ट अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण का क्रियान्वयन चिप आधारित ई पासपोर्ट की शुरुआत, नए पासपोर्ट सुरक्षा केंद्रों और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना तथा रिकॉर्ड स्तर पर पासपोर्ट जारी करने से यात्रा सुगम हो रही है। भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमार स्वामी ने इस्पात उद्योग से भविष्य के विकास के लिए डिजिटलीकरण अपनाने को कहा है। आज नई दिल्ली में इस्पात क्षेत्र में डिजिटलीकरण पर आयोजित चिंतन शिविर में उन्होंने ये बात कही। इस्पात क्षेत्र के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए श्री कुमार स्वामी ने कहा कि देश वर्ष 2018 से विश्व के दूसरे सबसे बड़े इस्पात उत्पादक के रूप में अपनी मजबूत स्थिति बनाए हुए है। प्रवर्तन निदेशालय मुंद्रा बंदरगाह से 3000 किलोग्राम मादक पदार्थ आयात मामले से जुड़े धनशोधन मामले में दिल्ली के 5 स्थानों पर तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय के अधिकारियों ने बताया कि ये तलाशी हरप्रीत सिंह तलवार, शम शुदरुन और उनके सहयोगियों से जुड़े परिसरों पर की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि मादक पदार्थ से प्राप्त धन का कथित तौर पर दिल्ली के नाइट क्लबों में निवेश किया गया था। आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के लिए केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने इस क्षण को ऐतिहासिक बताया और कहा कि ये परियोजना आवागमन को सुगम बनाएगी।
1: बहुत ही ऐतिहासिक मूवमेंट है जब देश की राजधानी जहां से पूरी सरकार चलनी है सेंट्रल विस्टा और यहां के कर्मचारी और यहां के जितने भी कार्यालयों में काम करने वाले सब लोग उनको एक ऐसी सुविधा प्रदान करने के लिए अश्मि पूजन अथवा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आज ये की गई है और ये जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद दिल्ली के बहुत से छोर आपस में जहां जहां मेट्रो लाइन चलती है उनको ये जोड़ेगी। अब ये जो लाइन है ये आर के आश्रम से लेकर के और इंद्रप्रस्थ तक जिसके अंदर 9 स्टेशन्स है।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.7% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 603 अंक के उछाल के साथ 76,804 पर जबकि निफ्टी 154 अंक बढ़कर 23,978 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: यह आकाशवाणी जगदलपुर है। दोपहर के 1:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए कृषि समय की बेड़ा खड़ा चौगोट का पुनः प्रसारण।
3: दादा दीदी मन असन तो हरिक का जे पशु जनावर पोस्तो उवाट सफाई करुवात मानतर धंधा हिसाब ने पशु जनावर पोस्तो राय जाले हुनके नगद दखा रखा करुक लागू आए। हुनचो खादी पीवती रोग राई बीमार से मार सफाई के जानुक समझुक लागू आए। संगे संग निदान बले करुक लागे से तेबे तो धंधा ने फायदा मिरे दे। तो असने पशु पोसून लाभ कमातो हिसाब ने जाना मेंढा मेंढी चो रोग राई अरु निदान के धंधा हिसाब ने मेंढी पोस्तो उवार थाने जुगे करुन बीमार से मारले नुकसान हुआ।

जुगे नुकसान ए मंचो मरलो ने नाहले बीमार होलो ने होएसी। ए मन के बीमार से मार गोटोक बीमार पशुले दूसर पशु जनावर के होएसी। असने नगद खादी नी होलो ने वले पशु जनावर रोग ही होएसोत। ए जनावर मन के गोदड़ पानी पियालो ने बले ये मन के झपके बीमार धुरुआए। मेढी कोठरली ने नगद साफ सफाई नी रले बले मेढी झपके बीमार हुआ। अरु ये मन के जूड़ खोखली अरु ढोड़ा बीमार झपके झपई होए से। मेंढा मेंढी के कैक प्रकार चो बीमार से मार होए से। जे थाने फड़किया नाव चो गोटोक रोग होए से जे नगद मेंढा मेंढी अरु मेंढी पीला मन के क्लोस्ट्रीडिया नाव चो गोटोक जीवाणु होए से एचो बीस ले हुआ है। ये रोग चो चिनाबाना बल्ले पशु ढाल बिकल होन भाती डगौक मुरियाए से अरु भीति नहाले खुटा थाने मुंड के ठटई होन होन रहे से। कोनी कोनी मेंढी मेंढा के ढोड़ा धुरुआए असने पशु के जरबले धुरुआए। रोग धरलो पशु के हेत चेत नी रहे अरु ढुल्लो

0: इचो केस जे के ऊन बलुआत इचो काजे बले धंधा के जुगे करून करुआत। माता रोग ले पशु जनावर के बचातो काजे टीका लगातो राय आरु ये टीका सूजी ढोर अस्पताल मन ने फोकहाने लगे से। पशु जनावर मन के ये रोग दखा दिलो ने रोगी पशु के नंगत पशु मन ले अलगे संगातो राय। रोग धरलो पशु जनावर चो खादलो बीती बाचलो चारा सोलो लगचो पाना डारा सफाई के डसातो राय। ये रोग ने पशु चो जीव गेले मरलो पशु के डसाउन देतो राय। परजीवी भले दूसर चो देह ने जीव तो बीती ये बीमार आय किरिम बीमार जे पशु जनावर चो देह पाए के नुकसान करे से। ये किरिम कीड़ा पशु चो पेट भितरे रह सोत। ये कीड़ी पशु जनावर चो खादलो खादी के खाए सोत और देह भितरे रहून लहू के चूहक सोत। ये रोग ले बचातो काजे आइवरमेक्टिन नाव चो टीका 1 मिलीलीटर प्रति 40 किलोग्राम पशु चो वजन हिसाब ने लगातो राय। असन उपाय करून पशु पोसलो ने दादा दीदी मन तुम्ही नगर लाभ धरुकला सकासे।
1: अभी आप सुन रहे थे कृषि समय की बेड़ा खड़ा चगोट का पुनः प्रसारण। मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्स, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। दोपहर के 1:10 हुए हैं। पेश है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन। कार्यक्रम श्रोता सुमन का एक और अंक लेकर हम हाजिर हैं आपके रेडियो दोस्त सुखेंदु मलिक। तो स्वीकारे मेरा अभिवादन, नमस्कार। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म पाप से। आवाज है राहत फतेह अली खान की। अमजद इस्लाम के लिखे इस गीत को सुरों में ढाला है शाही ने और इस गीत को सुनना चाहा है आप सबने। गोरबा बलौदा बाजार भाटापारा छत्तीसगढ़ से आप हैं देवलाल कर्ष, कामिनी कर्ष और यश कर्ष। बालोद छत्तीसगढ़ से आप हैं देवशंकर तामोरिया, प्रभा देवी तामोरिया, अजय तुषार तामोरिया, डॉली बेबी और पूजा तामोरिया। भिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से आप हैं रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन। पुरानी भिलाई चरौदा से आप हैं डॉक्टर नौशाद अहमद सिद्दीकी, बेगम हमीदुन सिद्दीकी, जिशान अहमद सिद्दीकी और शहनवाज अहमद सिद्दीकी। पटेल नगर मलोट से आप हैं डॉक्टर रमेश कुमार जजोरिया, गीतारानी जजोरिया, गगनदीप जजोरिया और बेबी आरजू जजोरिया। संत कंवर भट्ट कंवर वार्ड भाटापारा से आप हैं राम गुलाब सेन, नूतन कुमार सेन और बेबी पूजा सेन। ग्राम नागर कोहका जिला राजनांदगांव से आप हैं झग्गाराम साहू, बबलू जामुन देवी साहू, राजू दुष्यंत, लल्ला प्रांजल, प्रेम पूजा, बेबी आराध्या साहू। शनि माता चौक शनि मंदिर चौक खंडवा से आप हैं दुर्गा प्रसाद सैनी, अनीता सैनी, गौरव सैनी, राधिका सैनी और दीपिका सैनी। सालर पहलगाम कश्मीर से आप हैं पीरजादा महराजुद्दीन, नजमुद्दीन और केस्टुद्दीन। रानीगांव नगरी से आप हैं क्लेश कुमार साहू, चित्रा रेखा साहू और शुभम सिजल साहू। भवानी माता वार्ड खंडवा से आप हैं भाई राजेश सेन, सुरेखा सेन, शुभम सेन और अक्षय सेन। दतरंगी से आप हैं भागवत वर्मा, लेवई से गुलाब दास। लचनपुर से आप हैं विश्वनाथ साहू, पंकज साहू और तिरुपति साहू। बचेली से आप हैं बलराम सेन, इंदु सेन, रितिका सेन और पुष्पराज सेन। रिंगनी छत्तीसगढ़ से आप हैं दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। मदनपुर से आप हैं श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू और राहुल साहू। तेलीपारा बिलासपुर से आप हैं गुणवंत श्रीवास, करुणा श्रीवास और बेबी आयुषी श्रीवास। कोरबी बेलतारा छत्तीसगढ़ से आप हैं मोहन सिंह राज, अनिता राज, सुमित सोमू और मानस राज। अंबागढ़ चौकी जिला राजनांदगांव से आप हैं रिजवान खान, आयशा, सबिया, अनस और रेहान। बन बघेरा डोंगरगढ़ से आप हैं योगेश शर्मा, आशा शर्मा, नीरज, नीलेश और अंजलि शर्मा। अनूपपुर मध्य प्रदेश से आप हैं जयमंत्री केवट, अंजलि केवट, रुद्राणी और कृष्णा केवट। दुर्गाचक रायगढ़ से आप हैं गेंदलाल श्रीवास, लक्ष्मी परेट, लक्ष्मण बाधवानी, अब्दुल सलीम, संतोष श्रीवास, मनोज यादव और गेंदु भाई। पारुण विश्रामपुरी से आप हैं प्यारी दास मानीपुरी, खिलेश मानीपुरी, रोहन दास मानीपुरी, नैन्सी मानीपुरी। ग्राम भंडार शिवनी जिला कोंडागांव से अभय सुभाष सिंह चक्रधारी, कविता मुस्कान।

और अनुष्का चक्रधारी। मेहरनगर उमरखेर महाराष्ट्र से आप हैं अभिजीत गवणकर राही, सरिता गवणकर, सिद्धांत गवणकर, प्रिंस एकांश गवणकर। आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से आप हैं शैलेश गवणकर, वैशाली गवणकर, श्वेता सुमित गवणकर, ध्वनि गवणकर परी। मयंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटई से आप हैं नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा और दामिनी वर्मा। हरदेवलाल पारा वार्ड सिमगा से आप हैं रमेश कुमार यादव, माया यादव, रिंकू सन्नी, कोमल यादव। जसपुर उत्तराखंड से आप हैं रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, शमरीन परवीन, मोहम्मद रिहान, माहिरा नूर। खेरड़ाबारी जिला हिंगोली महाराष्ट्र से आप हैं नंदा बोड़खे, शाहजी बोड़खे, हनुमान सारिका, सुरेखा आरवी और बोड़खे परिवार। तो लीजिए सुनिए अब सबकी पसंद का ये गीत।

चंडीगढ़ से आप हैं सतीश अनेजा और विमला अनेजा, बोरसरा नैला से आप हैं प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी, विनोद विभूति, अंशु बबली, प्रियांशु साहू, गोल बाजार बक्सर से आप हैं श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित, डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से आप हैं राष्ट्रपाल गजबी, राधिका गजबी, बेबी अनिष्का और तन्मय गजबी, चारमीनार चौक गंडई पंडरिया से आप हैं दरिया नामल, अनिता मोटवानी, राजेश रेशम, अनिल राज मोटवानी, झूलेलाल चौक तिलदा से आप हैं हरीश कमल सेतपाल, भूमिका सुशीला दीदी, बठिंडा रोड डब्बाली से आप हैं राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग और मोहित नारंग, खमहरिया से आप हैं साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, मायना साहू और प्रतीक कुमार, ग्राम बठेना जिला दुर्ग से आप हैं बलकरण वर्मा, अंजनी वर्मा, ज्योति वर्मा, निधि वर्मा, निखिल वर्मा, यश प्रणय और पार्थ कश्यप, सौगा धमतरी छत्तीसगढ़ से आप हैं फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित कुमार चंदन और गजेंद्र कुमार चंदन, आर्यनगर कोका भिलाई से आप हैं उत्तम सिंह चंघेल, मोरस चंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष चंघेल और नंदिनी चंघेल, छत्तीसगढ़ धमता ग्राम सुखरी कला से आप हैं अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि जंघेल और ओशिका जंघेल, जेल रोड रायगढ़ से आप हैं नरेंद्र कुमार तिवारी, महेंद्र कुमार तिवारी, हेमंत, बबलू जैन, गुड्डू तिवारी और उमा तिवारी, सिद्धार्थनगर दरियापुर से आप हैं गजानन लेले, नवदीप वेले और विश्वदीप वेले, ग्राम शेरी वाडनेर से आप हैं बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर, उत्तर बस्तर कांकेर भानुप्रतापुर से आप हैं प्रकाश तिरसुनिया, विकास तिरसुनिया, नैतिक तिरसुनिया, मनोहर निषाद, दिव्यांश, धैर्य और आराध्या, ग्राम अमलेश्वर से आप हैं डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर और रेयांश ठाकुर, ग्राम दुल्हापुर से आप हैं मुकेश कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहनी, ऋतिक और बलवीर, रायगढ़ से आप हैं रोहित लक्ष्मी, ऋषभ लक्ष्मी, अंश लक्ष्मी और लक्ष्मी लक्ष्मी, जम्मू कश्मीर से आप हैं रवि राजदान, एम एस अब्बासी, देवलाल, रोशनलाल, मीरचंद और साहिल डार, पीपरपारा पलचुआ मुंगेली से आप हैं उत्तरा दिवाकर, योगिता दिवाकर, नितिन दिवाकर और वंशिका दिवाकर, देवरी भाटापारा से आप हैं गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा और गणेशराम मिस्त्री, एकता करुणी रोहतक से आप हैं सीताराम कागड़ा, बबीता बोध, निखिल कागड़ा, अंकित कागड़ा और सुभाष लूना, दुर्गा कॉलोनी हंसी से आप हैं राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू, पूर्वी चंपारण बिहार से आप हैं आर्यन राज, सुमित राज, रोहित राज और पीयूष कुमार, ग्राम गुटको से आप हैं नकुल सिंह लोनिया, अंशु, आयुष चौहान, शांति, काजल सिंह राजपूत, पूनम सिंह राजपूत, पुनीत सिंह राजपूत और ओम शंकर लोनिया, कनेरा मोहल्ला पटियाला से आप हैं मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन बत्ता, पलक करण, गीतू निहारिका और वंश बत्ता, लालपुर मारो से आप हैं कीर्ति कुमार ध्रुव, श्रीमती संतोषी ध्रुव, निमी पम्मी ध्रुव, सिया और हर्षिता ध्रुव, अनारकली बाजार जगराव से आप हैं सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष मल्होत्रा और निवासी देवी गव्या, गांधीनगर गुजरात से आप हैं सुरेश राठौर, मंजुला राठौर, विशाल और निशा, चावला चौक गांधीधाम से आप हैं रमेश मूलचंदानी और जयमूल चंदानी, आप सभी ने सुनना चाहा है के और सुजैन केसौर में फिल्म हंटेड का गीत, गीतकार हैं शकील आजमी और संगीतकार हैं चिरंतन भट्ट, तो लीजिए आपकी पसंद आपकी नज़र।

विशाल और शेखर के संगीत निर्देशन में आइए सुने फिल्म आई हेट लव स्टोरी का गीत। आवाजें हैं श्रेया घोषाल और सोना महापात्र की, शब्द हैं कुमार के। अनुरोध आप सबकी। चांदनी चौक गंडई पंडरिया से आप हैं पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लकी, विक्की, नानू, रविंद्र सेन और यहीं से खुशी रौनक सेन। फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से आप हैं गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, बेबी मनवीत, मनविंदर सिंह पांधा। गौतम नगर जिला नांदेड़ से आप हैं प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से आप हैं रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा। उमरखेर महाराष्ट्र से आप हैं गंगाधर पोपलवाड़, सम्यक पोपलवाड़, प्रियंका पोपलवाड़, लक्ष्मीबाई पोपलवाड़, भारत धुले। अंबागढ़ चौकी वाकोड़ी से आप हैं उत्तम जामधाड़े, देवशाला जामधाड़े। महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खंडवा ग्राम लोहारी से आप हैं राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल धनजे, शीला धनजे और गायत्री धनजे। खुर्दी रोड मानपुर से आप हैं विजय वेद, रानी वेद, महिमा वेद, नीतू वेद और वैदिक वेद। रोहनसी पलारी से आप हैं मुकेश कुमार साहू, नंदिनी साहू, मनीष साहू और मयंक साहू। कोहिनूर रेडियो श्रोता संघ जिला खरगोन ग्राम गोगावा से आप हैं उस्मान खत्री, रिजवान खत्री और अब्दुल गफर खत्री। कलानौर से आप हैं नरिंदर शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा। नसीब रेडियो श्रोता संघ नागचिन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से आप हैं अब्दुल गफर डावर जी, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, अब्दुल रहमान डावर, अब्दुल कादर डावर और हमजा डावर। गोयल जिन सनावाद से आप हैं मोहम्मद सूफियान, मोहम्मद हाशिम, मोहम्मद इसहाक और तलहा बब्बू डब्बू। कासम कॉलोनी सनावाद से आप हैं यूनुस खत्री, शफी खत्री, इदरिश खत्री, नूर मीना, इरफान मीना और कासिम मीना। ग्राम कुमली लौंडीगुड़ा से आप हैं बसंती पांडे, दुधेश पाणीग्रही, अवनीश पाणीग्रही, चुनौती पाणीग्रही, तेजल हिमांश और कमल पाणीग्रही। बोरखड़ा पितरामल जिला उज्जैन से आप हैं दीक्षा और खुशमुणत। लगहन पंडारिया छत्तीसगढ़ से आप हैं रुक्मणी बघेल, उत्तम कुमार, साहिल और भारती बघेल। चेरडोंगरी पिपरिया जिला कबीरधाम से आप हैं दुर्गाराम साहू, अजय कुमार साहू, जयकिशन साहू, कुमारी साहू और इंद्राणी साहू और माया साहू। शीतला माता चौक खंडवा से आप हैं कन्हैया मालाकर और राधिका मालाकर। रामगंज खंडवा से आप हैं विजय माहौपिया, कविता माहौपिया, विशाल और विवेक माहौपिया। ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से आप हैं मोहम्मद सईद अब्बासी, निखत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी और अबान अब्बासी। आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से आप हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेघराज जहां। मुंगेली छत्तीसगढ़ से आप हैं मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक और मोहम्मद अल्ताब। मेघापारा लोरमी से आप हैं मनोज कुमार साहू, कृष्ण धनंजय और गायत्री साहू। तिजन सिंह मरावी, देवानंद, देवलाल मरावी एवं समस्त मरावी परिवार आप हैं सूरजपुर छत्तीसगढ़ से। सैयद मोहम्मद जावेद सा गुप्ता अंजुम आप हैं टावर चौक गुमला से। डबरापारा सौगा मगरलोड जिला धमतरी से आप हैं कोमल सेन, तोषण कुमार सेन, पिंकी और रीना सेन। तो लीजिए सुनिए आप सबकी पसंद का ये गीत।

राजपूत कृषि फार्म ग्राम मेरतला जिला महोबा यूपी से आप हैं नर सिंह राजपूत, शत्रुघ्न सिंह, भूपेंद्र सिंह, गौरव सिंह, गुरु महाराज, जानवी राजपूत और विनीता सिंह। देवकी बिहार कॉलोनी सलारपुर सारनाथ बनारस से आप हैं बाबू यादव, सीमा यादव, अनु यादव, दुर्गेश यादव और अरुणेश यादव। ग्राम ममना जिला हमीरपुर यूपी से आप हैं रामशरण विश्वकर्मा, साहिल, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल, दिव्यांशी विश्वकर्मा। ग्राम खक्कल जिला जालौन यूपी से आप हैं दीपक सिंह गुर्जर, सत्यम सिंह गुर्जर, अंशराज सिंह गुर्जर और उनके समस्त परिवार। ग्राम जैसेला फलौदी राजस्थान से आप हैं राजा राम जवन, विष्णुई, नाथु कोडेचा और महिपाल। ग्राम टौरी जिला दतिया से आप हैं सुरेश कुमार केवट, शिशुपाल केवट, छोटू केवट, खुशी, खुशबू, पायल केवट, रीतिक, अमित और आरुषि केवट। गायत्री मोहल्ला पनवाड़ी जिला महोबा से आप हैं देवनारायण, लक्ष्मी प्रसाद, मोहित, प्रीति, नीतू, विनय, नेहा, सत्या, मोहिनी, पवन, अनुज गुट्टी और अंकुश पांचाल। शिवाजीनगर वडाली देशमुख से आप हैं राजेश खोबड़खेड़े, शिवसागर खोबड़खेड़े और इंदिराबाई खोबड़खेड़े। खांडवी बुल्ढाणा से आप हैं दिवाली रामधाड़े और स्वराज

वाड़ी महोबा से आप हैं देवी दीना हिरवार, सुनीता हिरवार, दिनेश कपिल, पूजा हिरवार, अस्पताल रोड केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश से आप हैं चंद्रेश गौहर, वंदना गौहर, मयंक गौहर और तन्वी गौहर, धाम मोहल्ला पन्ना मध्य प्रदेश से आप हैं कौशल किशोर मट्टू, संगीता मट्टू, हर्षित और वैभव मट्टू, मणिराम पाल, मलखान सिंह पाल, सुधांशु पाल, हिमांशु पाल, प्रांशी पाल, निवेदिता पाल, ज्योति पाल, मानसी पाल, सुदीपा पाल और सुशीला पाल, आप हैं ग्राम पोस्ट बीरखेड़ा जिला हमीरपुर यूपी से, रजौनी जिला महोबा यूपी से आप हैं उदयभान पाल, दीक्षा पाल, जयहिंद पाल, प्रतीक्षा पाल और विमलेश पाल, शिव कोठी ओमकारेश्वर से आप हैं राकेश पप्पू सेन, धर्मेंद्र सेन, मुकेश सेन, ओम सेन और पिंकी सेन, इसलिए रेडियो श्रोता संघ ग्राम मिरदला जिला महोबा यूपी से आप हैं सोनू भास्कर, मोनू भास्कर, रश्मि, दीपिका, सुषमा, देवांश भास्कर, नंदी किशोर और ब्रिजनंदन, जय सिया माता रेडियो श्रोता संघ ग्राम पवई जिला हमीरपुर यूपी से आप हैं किन्ना बाबू कुशवाहा, बलराम कुशवाहा, रामरतन कुशवाहा, अभिजीत कुशवाहा, नंदिनी कुशवाहा, अंशिका कुशवाहा, शिवेंद्र कुशवाहा और नरेंद्र कुशवाहा, जय माँ सरस्वती रेडियो श्रोता संघ ग्राम मामना जिला महोबा यूपी से आप हैं सोहंसी राजपूत, भैया एल के राजपूत, आकाश, सोनम सिंह, प्रियांशी और एसएस राजपूत, मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट बिजनौर से आप हैं मोहम्मद वक़ार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी खान, बिट्टू भैया, सादरानी और हिना, संत गागड़े नगर बुलढाणा महाराष्ट्र से आप हैं अनिता गाठोड़े, रमेश चंद्र गाठोड़े और लोकेश, ग्राम परसेठा जिला फतेहपुर से आप हैं रोहित सिंह यादव, बेटा यादव, पंकज यादव, अंगद यादव, आयुष यादव, आर्यन यादव और आदर्श यादव, ड्राइवर कॉलोनी निजामाबाद से आप हैं शेख अल्लाह बख्श, बेगम राविया शेख, शेख रहीम मुन्ना, शेख बहाओ और नूरजहां बानो, बदलापुर मुंबई से आप हैं बंटी गौहणकर और सुभाष पोतेवार, भाटापारा छत्तीसगढ़ से आप हैं सोहन जोशी, अर्चना जोशी, आनंद राठौर, गिरिजा राठौर, लोकेश जोशी, पायल जोशी, बबला यादव, हरमिंदर सिंह चावला, बानी चावला, धनेश तिवारी, सावन नायक, अंकिता जोशी और बेबी वैदेही जोशी, सहारनपुर यूपी से आप हैं राधा नामदेव, छत्तीसगढ़ हसदा नंबर दो अभनपुर से आप हैं कमलेश साहू, जितेंद्र साहू और पायल साहू, लोरमी गोलबाजार खपरीकला छत्तीसगढ़ से आप हैं संतोष कुमार सोनी, सुनीता, खिलेश, नेहल, पीहू, छोटी, दानिश, दीक्षा, संजय, पूजा, रामा और पूर्वी, संबलपुर कांकेर से आप हैं फागु राम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव, ईशिका यादव और तेजल यादव, पाकुड़ झारखंड से आप हैं उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसुतासु, अर्णव आनंद और सत्यम आनंद, बौड़ागाछी पश्चिम बंगाल से आप हैं मुन्ना भगत और गुड्डी भगत, लोरमी चचेरी छत्तीसगढ़ से आप हैं कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा मरावी, पुष्पराज मरावी और ऋषभ मरावी, ग्राम लुहेड़ी जिला महोबा बुंदेलखंड यूपी से आप हैं जयपाल यादव, इंद्रपाल, राघवेंद्र, अरविंद, रागिनी, रिया, दिव्यांशी, रेणु और रोनिका यादव, उदिता विश्वकर्मा और सुचिता विश्वकर्मा आप हैं देवरिया यूपी से, बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से आप हैं अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भाव्य कुमारी, निवेश कुमार और नियति कुमारी, ग्राम फारहानसी हिसार से आप हैं राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और सौरव डूडी, शंभो दयाल खटक आप हैं गांव जाखोद राजस्थान से, आप सभी ने सुनना चाहा है नीलेश मिश्रा का लिखा गीत अभिजीत और सुनिधि चौहान की आवाज़ों में, संगीत दिया है प्रीतम ने, फिल्म है गैंगस्टार, तो पेश है आपकी पसंद आपकी नज़र करते हैं।

कार्यक्रम के अंत में सुनिए फिल्म ताल का गीत। आवाजें हैं सुखविंदर सिंह और अलका याग्निक की। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है ए आर रहमान ने। चाहत अब सबकी। छत्रपति संभाजी नगर से आप हैं राजेश सावले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश। जिला किशनगंज बिहार से आप हैं रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, राघव दास, कीर्ति भानु। सपना संगीता रोड इंदौर से आप हैं लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया। बठिंडा पंजाब से आप हैं जग

इस गीत के साथ ही फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन से मुझे यानी आपके रेडियो दोस्त सुखेंदु मलिक को दें इजाजत। नमस्कार। अभी आपकी सेवा में प्रसारित किया गया फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। दोपहर के 2 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में दोपहर समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।

मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्स एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स और न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। दोपहर के 3 बजे मीडियम वेव पर यह सभा अब संपन्न होती है। शाम 5 बजे सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ मीडियम वेव पर हम फिर हाजिर होंगे। एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स पर विविध भारती के कार्यक्रम जारी रहेंगे। अब हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

मीडियम व्यू 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्स, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स और न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं। कार्यक्रम विवरण में आइए हम आपको आज के शेष और कल प्रसारित कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण बता दें। पहले सुने आज के शेष कार्यक्रम। आज शाम 6:30 पर गोंडी समाचार बुलेटिन का प्रसारण होगा। अब से कुछ ही देर में सुनिए देशभक्ति गीत। 5:10 पर युवाणी आप सुनेंगे। बस्तर के स्वर का समय शाम 7 बजे होगा। आमचोगांव सुनेगा 7:21 पर। रात्रि 8 बजे कुडईफूल में आप सुनेंगे सहदेव कश्यप और साथियों का गाया हल्बी गीत। 8:30 पर पिलामन का जयगोठ हम आपको सुनवाएंगे। प्रस्तुति होगी गोपाल पोयाम की। पुरानी फिल्मों से का आनंद लीजिएगा 9:15 पर। 9:30 पर ओवाट में आज आप सुनेंगे जैविक खेती मिशन। प्रस्तुति होगी दीपिका ठाकुर की। रात्रि 10 बजे परिचर्चा में सुनिए ग्राम विकास संगठन की पारंपरिक व्यवस्था पर भेंटवार्ता। श्री बलदेव मौर्य से भेंट करेंगे बलबीर सिंह कच्छ। और 10:30 पर रजनीगंधा हम पेश करेंगे। ये थे हमारे आज के शेष कार्यक्रम। अब एक नज़र कल के कार्यक्रमों पर। कल शाम 6:30 पर इंग्लैंड के ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड मैनचेस्टर में भारत और बांग्लादेश के मध्य खेले जाने वाले आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 का आंखों देखा हाल हम आपको खेल की समाप्ति तक मीडियम व्यू पर सुनवाएंगे। एफएम बैंड और मोबाइल ऐप पर हमारे कार्यक्रम यथावत रहेंगे। कल प्रातःकालीन सभा में भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना हम आपको सुनवाएंगे 6:05 पर। चिंतन का प्रसारण समय होगा 6:20। 6:25 पर श्री रामचरितमानस का गायन आप सुनेंगे। स्वर होगा रविंद्र साठे का और संगीत संयोजक होंगे सतीश भाटिया। बेड़ा खाड़ा चौगोट का प्रसारण हम सुबह 6:35 पर और पुनः दिन में 1:05 पर करेंगे। 6:40 पर हुलहुली में कल सुबह सुनिए पाकलू और साथियों का बजाया वीरखम देवपाड़। 7:05 पर नमस्कार जगदलपुर में सुनिएगा नाटक नया जमाना। लेखिका होंगी रागिनी गुप्ता और प्रस्तुति होगी शाहिद हुसैन की और होगी फिल्मी गीतों की मधुरिमा। सुबह 8:30 पर लोकमंजरी में हम आपको सुनवाएंगे विभिन्न बोलियों में लोकगीत। पाटाविनार में सुनिए धुरवी लोकगीत 9 बजे। गायक कलाकार होंगे बन सिंह कश्यप और साथी। एक ही फिल्म से कार्यक्रम होगा सुबह 9:30 पर। फिल्म होगी आय मिलन की बेला। शास्त्रीय रागों पर आधारित फिल्मी गीत आप सुनेंगे गुलशन कार्यक्रम में कल 10 बजे। 10:30 पर धुरवी लोकगीत का आनंद लीजिएगा गुरुदुम कार्यक्रम में। कलाकार होंगे महंगूराम और साथी। एक ही कलाकार कार्यक्रम हम लेकर आएंगे दिन में 11 बजे। कल के कलाकार होंगे संगीतकार मदन मोहन। गैर फिल्मी गीतों गज़लों का कार्यक्रम गुलदस्ता होगा 11:30 पर। कला और कलाकार ये कार्यक्रम होगा दिन में 12 बजे। 12:30 पर ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर द्वार आप सुनेंगे। 1:10 पर फरमाइशी पत्रों पर आधारित कार्यक्रम श्रोता सुमन हम प्रस्तुत करेंगे। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT ये कार्यक्रम होगा 2:30 पर। शाम 5:05 पर समसामयिक विषय पर आधारित कार्यक्रम भारत सरकार आपके द्वार हल्बी बोली में आप सुनेंगे। युवाणी युवाओं का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 5:10 पर। शाम 6:35 पर हल्बी गीत सुनिएगा बुद्री और साथियों के स्वर में। 7 बजे बस्तर के स्वर का प्रसारण किया जाएगा। प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी सुनिएगा 7:21 पर। 8 बजे डांडा माली कार्यक्रम में धुरवी लोकगीत सुनिए चमरूराम बघेल और साथियों की आवाज़ में। 8:30 पर पिलामन का जयगोठ में कल प्रस्तुति होगी सुखराम बघेल की। रात्रि 9:15 पर लोक गाथा में सुनिए केकड़ा और बुढ़िया। वार्ताकार होंगे रुद्र नारायण पानीग्रही। घुमक्कली में कल रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे भतरी नाट गीत। गायक स्वर होगा लिमधर और साथियों का।

10 बजे गैर फिल्मी गीतों का आनंद लीजिएगा और रात्रि 10:30 पर फिल्म संगीत हम पेश करेंगे। ये थे हमारे आज के शेष और कल प्रसारित कार्यक्रमों का विवरण। यह आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। शाम के 5:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए देशभक्ति गीत।

श्रोताओं, समूह स्वर में अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 5:10 होने को हैं। आइए सुनते हैं युवा साथियों का

0: गुड इवनिंग संगवारी मन, ए समयाने आमचो बार्दक तो सपाय संगवारी मन के मैया धर्मराज पटेल
1: और मैया गीता ठाकुर
0: एचे संगे आमे दोनों करू से तुम्हें सपाय के
1: जुहार। कसन धर्म, तुमचो घरे बेड़ा बुता चालू होली कसन?
0: हाँ गीता, बेड़ा बुता तो चालू होली, मानतर सही समयाने बेड़ा बुता बले सारुक लागे से। कसन बल्लो ने कॉलेज बले तो खुली पड़ुक बल जातो राय।
1: हाँ धर्म, सत्य बोलिस।
0: गीता, मैं खूबे दिन ले तुके गोटो गोट पूछे दे बलते रहे।
1: आले पूछिस नहीं, काई गोटाई?
0: पूछिस काई, सुन। गीता, आजिकाली मैं देखे से कि आमचो कॉलेज चो दोस्त मन वीडियो रील्स बनातो के छाड़ून भागवत गीता पढ़सोत और ध्यान व्यायाम करूक जासोत। ये अचानक युवा मन ने आध्यात्मिक रुचि कहाँ ले बढ़ली कि सोजे नाव काजे दिखावा चलन आसे?
1: नहीं धर्म, कहीं ऊपरी दिखावा चलन नू आए।
0: हाँ।
1: असल ने आजिकाली चो भागदौड़ और सोशल मीडिया चो नकली दुनिया ने युवा मन मानसिक रूप ले थकून जासोत।
0: हाँ।
1: और ये मन मानसिक शांति जीवन जी तो असली मकसद के डगरासोत।
0: मानतर अध्यात्मक तो सियान सजन मन का जी आए। आमचो असन युवा मन काज तो पढ़तो लिखतो करियर बनातो पैसा कमातो और आप लो उद्देश्य के पूरा करतो रहा, तो ये था अध्यात्मक चो काय काम होए से?
1: यही तो गोटक सबले बड़े गलत फहमी आए धर्म।
0: कसन?
1: अध्यात्मक काम के दुनिया के छाड़ तो नू आए।
0: हाँ।
1: बल्कि दुनिया ने सही तरीका ले जीव तो सीखा हुआ है। अध्यात्मक काम के ध्यान केंद्रित करतो और भीतरी आंतरिक सही फैसला धरतो समझ के देसी।
0: मानत तुचो गोट न गताए गीता, आजिकाली तनाव और घबराहट बले खूबे बढ़ली से, काय अध्यात्मक एके लड़तो ने मदद करे से?
1: बिल्कुल, आमी ध्यान करू से।
0: हाँ।
1: नाहले खुद के काई शक्ति ले जोड़ू से तो आमचो मन खुद के नियंत्रण करे से। युवा मन के समझ जैसे कि बाहरी महंगा चीज आम के कम समय ने डंडी का जी खुशी दे से, मानतर असली खुशी तो आमचो भीतर चो शांति आए धर्म।
0: हाँ। मके लागते रहे कि आध्यात्मिक होतोर मतलब सबके छाड़ून सन्यासी होतर, मानतर तुचो गोट के सुनून असन लागे से कि खुद के बेहतर और अच्छा बनातोर गोटो के जरिया आए।
1: हाँ, तो ये नंगत गोट के बोली इस धर्म।
0: हाँ।
1: आध्यात्मिक जो मतलब खुद के जानतो रहे, आप लोग कमी के दूर करतो रहे, दूसर लोग जो प्रति दया संगातो रहे।
0: हाँ।
1: और विपरीत समय ने बले शांति ले रतो रहे।
0: हाँ।
1: यही असली आध्यात्मिक आए।
0: हाँ।
1: आजिकाली जो युवा मन अंधविश्वास नहीं बल्कि एचो पीछे जो सोचतो सही तरीका और विज्ञान के समझ सोच।
0: सत्य गीता, तुचो गोट ने तो मचो सोच के बदलून दिली। अबर मके बले समझने इले कि युवा मन ने ये बदलाव कितरो सकारात्मक और जरूरी आए। अबर मैं बले बिहाने उठें दे और कम से कम 10 मिनट ध्यान लगा तो कोशिश करें दे।
1: ये तो तुचो काजे खूबे बेहतरीन शुरुआत हुई थे धर्म।
0: हाँ।
1: जब देश चो सपा युवा मन भीतर मजबूत और शांति हो दे, तेवे तो हुन मन समाज और देश चो गोटुक नुआ सही दिशा दिखा दे। हाँ, तो संगवारी मन, ये तो रली आजी चो चर्चा। मानतर आज आमी तुमचो काजे काय काय कार्यक्रम ने आनलू से एके जानुआ।
0: आज आमी तुमच काजे आनलू से यादो के स्वर जोन थाने तुम्ही सुना से काय सुंदर जूना जूना गीत मन
1: और आनलू से रोजगार सूचना ज्ञान ध्यान चो गोट बात और वार्ता।
0: गीता, आज चो कार्यक्रम के मूर करू और मानतर हुंच पहले सुनू ये जहाला।
2: मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा

0: नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स ग्रेड सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
1: संगवारी मन आज जो कार्यक्रम यादों के स्वर जो पहल गीत आए फिल्म काला पानी ले
2: ये गीत के देव आनंद और मधुबाला जो ऊपरे फिल्म आला से ये गीत ने रिसातोर और एक दूसर के मनातोर ऊपरे फिल्म आला से
1: गीत ने देवानंद रिसाला से और हुन मन के मधुबाला मनासोद
2: स्वराय आशा भोसले और मोहम्मद रफीचो गीतकारात मजरूह सुल्तानपुरी संगीत निर्देशन दिला से एच डी बर्मन चो तो संगवारी मनिया सुनुए गीत के।

0: अगला गीत है फिल्म फर्स्ट लव लेटर ली। ये गीत ने प्रेमिका और प्रेमी एक दूसरे का जी आप लोग गहरा प्यार के इकरार कर सुर।
1: ये गीत ने प्रेमिका बले से हुंचो मया ने दीवाना होलो से और प्रेमी बले से जबले हुनके दखले से हुंचो दिल ने बसली से और हुंचो दीवाना होलो से।
0: ये गीत दुई युवा मंचो सच्चे प्यार खुशी और दीवानगी के दर्शाए से।
1: ये गीत की महान गायिका लता मंगेशकर और SP बाला सुब्रमण्यम गावला से।
0: एके संगीत बद बप्पी लहरी करला से और गीतकार अनजान। तो यह सुनो ये गीत के।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: धरम,
3: हाँ?
2: गीत मन के सुनते रहोनी गीत रो हरिक लागिस
3: हाँ, नहीं लागिस काय
2: आम जो गीत मन के डंडिक थेवाऊ और आम जो संगवारी मन का जे रोजगार सूचना बलतवान मिल से एके सांगू
3: हाओ आले फिर देर नी करू ने और मुरियाऊ तो संगवारी मन आज जो रोजगार सूचना आए संचालय नाले स्वास्थ्य सेवा छत्तीसगढ़ चो अंतर्गत ओटी टेक्नीशियन पद मन ने भर्ती परीक्षा चो संबंध ले
2: ये जो शैक्षणिक योग्यता है उम्मीदवार लगे कोनी बले मान्यता प्राप्त बोर्ड ले फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी विषय ले बारहवीं पास होतर जरूरी है।
3: तकनीकी योग्यता कोनी बले मान्यता प्राप्त संस्थान ले ओटी टेक्नीशियन नहाले एंथेस्थेसिया टेक्नीशियन ने डिप्लोमा नहाले डिग्री होतर आए
2: इचो का जे आयु सीमा 18 बरक ले धरुन 35 बरक तक जो होतो रहे
3: ये ऑनलाइन आवेदन करतो मूर 10 जून 2026 ले होली से और आवेदन करतो अंतिम तिथि आए 3 जुलाई 2026 तक।
2: अपमन इचो आवेदन करतो का जे व्यापम जो ऑफिशियल वेबसाइट cgvyapam.cgstate.gov.in ने आवेदन करुक सकास और इचो अधिक जानकारी बले एथाय दखुक सकास।
3: तो संगवारी मन ये तो रली रोजगार सूचना अदाय फिर गीत बाटे जो कसन गीता
2: हाँ
3: फिल्म आए पड़ोसन ले
2: 1968 जो ये लोकप्रिय गीत मेरे सामने वाली खिड़की में किशोर कुमार जो गावलो गीत सुनील दत्त ने फिल्म आला से
3: ये था एक प्रेमी आप लो खूबसूरत पड़ोसी जो प्रति आप लो मासूम और एक तरफा प्यार के बया करे से ये गीत प्रेमी जो बेचैनी शिकायत और आप लो प्रेमिका जो एक झलक दख्तो बेचैनी के दर्शाए से
2: स्वर दिला से किशोर कुमार गीतकार आत राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार आत आर डी बर्मन तो संगवारी मन यह सुनू ये गीत के

0: संगवारी मन, गीत मंचो सिलसिला असनीची चलते रहे दे, मांतर अदाय गीत के दंडिक ठेबाऊँ आ तुम चुकाजे आलू से ज्ञान ध्यान चो गोट। ये ज्ञान ध्यान चो गोट मानसून ले संबंधित आसे। तो संगवारी मन, पहला दुई शाखा भारत ने दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर आउर बंगाल चो खाड़ी नाव चो दुई ठन शाखा आसे, यथाले बाटा बाटा होन वर्षा करुआत।
1: भारत ने मानसूनी हवा सबसे पहल मुख्य भूमि केरल राज ने जून चो पहल सप्ताह ने दस्तक दीवाए।
0: भारत ने कृषि मुख्य रूप ले मानसूनी वर्षा ने निर्भर आए आसे, जेथा लगभग 75% ले 80% वार्षिक वर्षा सिर्फ जून ले सितंबर महीना ने हुआ है।
1: सितंबर महीना जो बाद जब मानसूनी हवा उत्तर पश्चिम ने भारत ले भड़ुआए तो एके बाहरा मानसून बोलवात।
0: मानसून चो आगमन ले ठीक पहिल भारत कईक जगह मन ने होतो बीती वर्षा के अलग अलग नाव ले जानुआ, जसन के कर्नाटक ने आम्र वर्षा और केरल ने काफी वर्षा सावर बलुआत। तो संगवारी मन, ए तो रली आज चो ज्ञान ध्यान चो गोट, अदाय फेर जो गीत बाटे। संगवारी मन, ए तो रली ज्ञान ध्यान चो गोट, अदाय जो वार्ता बाटे। ये वार्ता चो नावाय पर्यटन आउर बस्तर चो पर्यटन आउर रोजगार, ये चो वार्ता करता दिव्या बघेल।
2: मैं हूँ दिव्या बघेल और आज के चर्चे का विषय है बस्तर में पर्यटन और रोजगार। छत्तीसगढ़ का बस्तर अंचल अपनी अद्वितीय संस्कृति, घने जंगलों, जलप्रपातों और समृद्ध जनजाति विरासत के लिए जाना जाता है। हाल के वर्षों में बस्तर में पर्यटन एक बड़े रोजगार और आर्थिक परिवर्तन के माध्यम से उभर रहा है। चित्रकोट जलप्रपात छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित भारत का सबसे चौड़े जलप्रपातों में से एक है। यह इंद्रावती नदी पर बना हुआ है और अपनी घोड़े की नाल जैसी आकृति के कारण इसे भारत का नियाग्रा फॉल भी कहा जाता है। इस जलप्रपात की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं, जैसे ऊंचाई लगभग 90 फीट है। वर्षा ऋतु में इसका दृश्य अत्यंत विशाल और आकर्षक दिखाई देता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय यहाँ का दृश्य बहुत सुंदर होता है। रात में रंगीन रोशनी से जलप्रपात और भी आकर्षक लगता है।

अब हम जानते हैं तीरथगढ़ जलप्रपात के बारे में। तीरथगढ़ जलप्रपात छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में स्थित एक अत्यंत सुंदर और प्रसिद्ध जलप्रपात है। यह कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के भीतर स्थित है और अपनी सीढ़ीनुमा जलधारा और प्राकृतिक वातावरण के लिए जाना जाता है। यह जलप्रपात लगभग 300 फीट की ऊंचाई से कई स्तरों में गिरता है। चारों ओर घने जंगल और पहाड़ इसकी सुंदरता को और बढ़ाते हैं। यहाँ का शांत वातावरण और प्राकृतिक दृश्य पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। तीरथगढ़ जलप्रपात ट्रेकिंग और प्रकृति प्रेमियों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। यहाँ जंगलों के बीच पैदल यात्रा, फोटोग्राफी और प्राकृतिक वातावरण का आनंद लिया जाता है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। यह अपनी हरियाली, वन्य जीवों, जैव विविधता और प्राकृतिक गुफाओं के लिए जाना जाता है। यहाँ की प्राकृतिक वातावरण पर्यटकों को और प्रकृति प्रेमियों को विशेष रूप से आकर्षित करता है। यह उद्यान लगभग 200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ घने सालवन, पहाड़ियाँ और अनेक दुर्लभ वनस्पतियाँ पाई जाती है। तेंदुआ, हिरण, जंगली भैंसा, पक्षियों की कई प्रजातियाँ और वन्य जीव यहाँ देखे जा सकते हैं और यहाँ प्रसिद्ध गुफाएं भी देखने को मिलते हैं, जैसे कुटुम्बसर गुफा। कुटुम्बसर गुफा यह अपनी प्राकृतिक संरचना और अंधेरी सुरंगों के लिए प्रसिद्ध है। कैलाश गुफा। कैलाश गुफा चूना पत्थर की सुंदर आकृतियों के लिए जानी जाती है। साथियों, अब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय उत्सव के बारे में, जो है बस्तर दशहरा। बस्तर दशहरा छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र का विश्व प्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव है। यह जगदलपुर में बड़े उत्साह और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ मनाया जाता है। यह भारत का सबसे लंबा चलने वाला दशहरा उत्सव माना जाता है, जो 75 दिनों तक चलता है। यह उत्सव देवी दंतेश्वरी की आराधना को समर्पित है। बस्तर दशहरा का संबंध राम और रावण के युद्ध से नहीं है, बल्कि स्थानीय जनजातीय परंपराओं और देवी पूजा से है। विशाल लकड़ी के रथ को हजारों लोग रस्सियों से खींचते हैं, जो इस उत्सव का मुख्य आकर्षण है। इसमें बस्तर की विभिन्न जनजातियां अपनी सांस्कृतिक नृत्य और संगीत प्रस्तुत करती हैं। बस्तर दशहरा जनजातीय संस्कृति, लोक कला और सामाजिक एकता का प्रतीक है। यह उत्सव बस्तर की पारंपरिक पहचान को देश और विदेश में प्रसिद्ध बनाता है। बस्तर दशहरा केवल एक त्यौहार नहीं है, बल्कि बस्तर की समृद्ध जनजातीय संस्कृति और परंपराओं का जीवंत उत्सव है। देवी दंतेश्वरी की आराधना, विशाल रथ यात्रा और लोक कलाओं की प्रस्तुति इसे विश्व की प्रसिद्ध उत्सव दर्शाती है। पर्यटन बढ़ने से स्थानीय युवाओं को कई क्षेत्रों में काम मिल रहा है, जैसे होटल और रिसोर्ट व्यवसाय। होटल, लॉज और रिसोर्ट में मैनेजर, कुक, वेटर और स्टाफ की जरूरत पड़ती है। स्थानीय युवक पर्यटकों को घुमाने, टैक्सी और वाहन सेवा से आय अर्जित कर रहे हैं। बस्तर की बेल मेटल कला, बांस शिल्प और जनजातीय हस्तकला की बिक्री बढ़ रही है। पारंपरिक नृत्य, संगीत और सांस्कृतिक

0: का उपयुक्त समय जुलाई से फरवरी का समय सबसे अच्छा माना जाता है। वर्षा ऋतु में जलप्रपात का दृश्य अत्यंत मनमोहक दिखाई पड़ता है। राज्य सरकार द्वारा पर्यटन सुविधाओं, सड़क और निवेश परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। इससे भविष्य में रोजगार के और अवसर बढ़ने की संभावना है और साथ ही कई रोजगार मेले और निवेश परियोजनाएं भी शुरू की गई है। धन्यवाद।
1: संगवारी मन ए बियामी सुनते रहूं आमचो बस्तर चो पर्यटन चो बारे में और ए पर्यटन के चो बारे में सांगला से दिव्या बघेल।
2: अदाय सुनो गीत। ये गीत 1970 चो प्रसिद्ध बॉलीवुड फिल्म जॉनी मेरा नाम ले आए। एक महान गीतकार इंदिवर लिखला से और कल्याण जी आनंद जी संगीतवत करला से।
1: किशोर कुमार और उषा खन्ना आपलो जादुई आवाज ने गावला से एगोटो खूबे मजेदार और चुलबुला गीत आए जेथा निस्वार्थ प्रेम समर्पण और आशिकी चो गहरा तड़प छुपली से। तो या संगवारी मन सुनो ये गीत।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: तो हाँ संगवारी मन, अदाय दूसर गीत आए फिल्म सीता और गीताले। ये गीत ने स्वर दिला से किशोर कुमार, आशा भोसले, गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार आर डी बर्मन। तो संगवारी मन या सुनो ये गीत।

0: अदाय सुनू गीत फिल्म शतरंजलि 90 दशक जो इलो बेहद लोकप्रिय और सदाबहार रोमांटिक गीत है।
1: ये गीत के मशहूर गीतकार समीर लिखला से और संगीत के आनंद मिलिंचो जोड़ी ने सजाला से ये खूबसूरत गीत के कुमार सानू और साधना सरगम आप लो सुरीली आवाज ने गावला से।
0: ये गीत पूर्ण समर्पण, पहली मोहब्बत, पागलपन और एक दूसर जो प्रति वफादारी के बया करे से, तो संगवारी मन या सुनू ये गीत के।

0: गीता, आज तो आम जो संगवारी मन के काय सुंदर सुंदर गीत बले सुनालू ने
1: हाँ।
0: और ध्यान ध्यान जो गोट के बले सांगलू कसन
1: हाँ। हाँ तो संगवारी मन आम्ही आशा करू से तुम्ही सब पाय के आज जो युवाणी कार्यक्रम पसंद दिली होती
0: अदाय आमचो जातो समया बले होय से कसन
1: हाँ।
0: तो आज का जे आम के दिया बिदा मैं आए धर्मराज पटेल
1: और मैं आए गीता ठाकुर
0: इची संगे आमी करूं से तुम्ही सपाए के
1: सुख संध्या जुहार।

युवा साथियों का अपना कार्यक्रम युववाणी अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 6 बजने को हैं। थोड़ी देर में हिंदी समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सह अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है।

0: संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में जम्मू कश्मीर पर भारत का रुख दोहराया।
1: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। यह हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है, ऐसी बातें कही गईं। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
0: ईरान के तेहरान में स्थित भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार के बावजूद भारतीय नागरिकों को जारी नए परामर्श में अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचने को कहा है। बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने को भी कहा गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि राजदूत जैमिसिन ग्री और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमार जूकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा आयोजित इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा करने के लिए एक साथ आएंगे। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत त्रिपुरा में 96 सड़क परियोजनाओं के निर्माण के लिए 211 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की है। इस परियोजना से राज्य में 160 किलोमीटर से अधिक लंबी सड़कों का निर्माण होगा। इन परियोजनाओं से राज्य की 96 बस्तियों को पहली बार हर मौसम में सुगम सड़क संपर्क प्राप्त होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने देशभर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध पार्किंग और अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान तेज कर दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया है कि ये कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार की जा रही है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों को अधिक सुरक्षित, सुगम और यात्रियों के लिए सुविधाजनक बनाना है। प्रवर्तन निदेशालय ने बेंगलुरु और मुंबई में राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड से जुड़े 9 ठिकानों पर छापेमारी की है। ये कार्रवाई कल शुरू की गई। ये जांच राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड और उससे जुड़े लोगों के खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के कथित उल्लंघन के मामले में की जा रही है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारा तला में आज निर्माणाधीन गोदाम ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए। घायलों का SSKM अस्पताल में इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी स्थिति का जायजा लेने के लिए दुर्घटना स्थल पर हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, पुलिस, अग्निशमन और आपातकालीन सेवाएं तथा स्थानीय लोग बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रॉड्रिक्स को हराया। मौसम विभाग ने कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में भी अगले 2 दिन तक इसी तरह का मौसम रह सकता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम व्यू पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 6:05 हुए हैं।

आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 6:10 होने को हैं। अब छत्तीसगढ़ी समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।

0: आप सुनेंगे छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग मीनल तिवारी के जय जोहार। अब सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण योजना देश भर में 1 जुलाई ले हो ही लागू। योजना के प्रचार प्रसार खातिर डिजिटल माध्यम के करे जाते उपयोग। अलनीनो के प्रभाव के सेती सामान्य ले कमती वर्षा के संभावना ला देखत कृषि विभाग प्रदेश के किसान मल्ला मौसम के

मुताबिक फसल ले बर देहे सलाह। और महिला और बाल विकास विभाग ह आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका मन बर लुगरा बिसाए खातिर तय राशि सोझे कर्मचारी मन के बैंक खाता में भेजी। अब समाचार विस्तार ले। विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण योजना देश भर में 1 जुलाई ले लागू हो जाही। छत्तीसगढ़ में योजना के प्रचार प्रसार खातिर ग्राम सभा, चौपाल, पोस्टर, बैनर, मुनादी, रथ प्रचार और डिजिटल माध्यम के उपयोग करे जाते। उन्हें सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक, स्व सहायता समूह के मायलोगिन, जनप्रतिनिधि और सामाजिक संगठन घलो लोगन मल्ला योजना के जानकारी देमा जुट गए हैं। उन्हें ग्राम और जनपद पंचायत के संगे संग जिला स्तर प्रशिक्षण, बैठका और ग्राम सभा लगाए जाते, जेमा गांव के लोगन मल्ला योजना के जानकारी और फायदा के संबंध में बताए जावत है। यही कड़ी में बेमेतरा जिला के सांकरा और देवरी ग्राम पंचायत में गांव के लोगन मल्ला मानव श्रृंखला बना के और स्लोगन ले लोगन मल्ला ये योजना ले जुड़े खातिर प्रेरित करीन। ये दौरान गांव के मनखे मन हा पात्र परिवार ला योजना के फायदा दिवाए और ज्यादा ले ज्यादा लोगन तक एकर जानकारी अमराय के संकल्प लीन। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कहिन है कि 1 जुलाई ले लागू होवैया वीबीजी रामजी योजना ग्रामीण आजीविका रोजगार और आत्मनिर्भर गांव के दिशा में एक ऐतिहासिक पहल सिद्ध होही। उमन बतैन कि राज्य मंत्रिपरिषद हा ये योजना के छत्तीसगढ़ के प्रारूप ला मंजूरी दे दे है। एसो अलनीनो के प्रभाव के सेती सामान्य ले कमती वर्षा के संभावना ला देखत कृषि विभाग प्रदेश के किसान मल्ला मौसम के मुताबिक फसल ले के सलाह दे है। विभाग धान के जगह मा दलहन तिलहन फसल के खेती ला बढ़ावा देबर कहे है। कृषि विभाग के मुताबिक कमती वर्षा के संभावित स्थिति मा अरहर, मूंग, उरीद, कुल्थी, मूंगफली, तिल, रामतिल, कोदो, कुटकी और रागी जैसन फसल ले जा सकत है। कृषि विशेषज्ञ के मुताबिक दलहन और तिलहन फसल कमती लागत में बने उत्पादन दे के संग भुइया के उर्वरा शक्ति ला सुधारे में महत्ता के भूमिका निभाते। प्रदेश के सरकारी स्कूल मन में अवैया शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल ले शुरू होही। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव हो बतैन कि 1 अप्रैल ले सत्र शुरू होय ले लैका मन पहलीच ले मानसिक रूप ले तैयार होही। उमन बतैन कि लैका मन ला 1 अप्रैल ले ही किताब, स्कूल ड्रेस और साइकिल बांटे जाही। उमन यहू कहिन कि सत्र ला जल्दी शुरू करे के उद्देश्य पाठ्यक्रम ला बेरा रहत पूरा करना और पढ़ैया लैका मन के परीक्षा के नतीजा में सुधार लाना है। स्कूल शिक्षा मंत्री है बतैन कि 1 जुलाई ले सबो शिक्षक और कर्मचारी मन बर VSK ऐप मा पंजीयन और उपस्थिति जरूरी होही। जुलाई महीना के वेतन ऐप मा दर्ज उपस्थिति के आधार मा दे जाही। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय मेरा भारत पहल ले देश भर मा वंदे मातरम कैंप लगाही। एकर उद्देश्य युवा मल्ला भारत के संवैधानिक और लोकतांत्रिक परंपरा के संबंध मा समझ बढ़ाए के मौका देना ही। एमा चुने गए जिला मा 20 शिविर लगाए जाही। हरेक शिविर मा 15 से 29 बच्चर आयु वर्ग के 150 युवा भाग लिही। हरेक शिविर मा पूर्वोत्तर समेत 6 राज्य के युवा संघरही। मंत्रालय है यहू बताए है कि कम से कम 50% प्रतिभागी मा महिला और सामाजिक रूप ले पिछड़े वर्ग के लोगन होही। पहली शिविर पश्चिम बंगाल के कोलकाता मा काली ले लगाए जाही। भारतीय जनता पार्टी के रायपुर स्थित प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में पार्टी पदाधिकारी मन के बैठका हुई। बैठका में संगठन और सरकार ले जुड़े आने आने मुद्दा में गोट बात हुई से। ये दौरान जिला में चला संगठनात्मक काम और अभियान में लेके पदाधिकारी मल्ला दिशा निर्देश देगी। ये बैठका में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंह

होइसे। ये दौरान जिला म चलत संगठनात्मक काम अउ अभियान म लेके पदाधिकारी मन ला दिशा निर्देश दे गिस। ये बैठका म मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंह मन ला दिशा निर्देश दे गिस। ये बैठका म मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंह

0: भरमा एकरूपता बने रही। उन्हें लुगराला पसंद खुद कार्यकर्ता और सहायिका मन कर सकी। सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के 5 बच्छर पूरा होए के मौका में छत्तीसगढ़ में 29 जून ले 6 जुलाई तक सहकारिता सप्ताह मनाए जाही। ये आयोजन के तैयारी ल लेके सहकारिता मंत्री केदार कश्यप है मंत्रालय में विभागीय अधिकारी और आने सहकारी संस्था महासंघ के प्रतिनिधि मन के बैठका लेके जरूरी निर्देश दीन। श्री कश्यप बतायन की हफ्ता भर तक चलैया ये कार्यक्रम में जागरूकता सहभागिता और नवाचार ला प्राथमिकता दे जाही। संगे संग लोगन ला सहकारी योजना और उपलब्धि के संबंध में बताई जाही। उमन अधिकारी मन ले कहिन के सहकारिता सप्ताह के बेरा किसान महिला स्व सहायता समूह दुग्ध उत्पादक मत्स्य पालक वनोपज संग्राहक और हस्तशिल्पी मन के भागीदारी तय करे जाए। आज वीरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस में प्रदेश भर में कतकुन कार्यक्रम होवत थे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय है रईपुर में उखर फोटो में फूल माला चढ़ा के उमल्ला सुरता करीन। ये बेरमा मुख्यमंत्री है किहिन की रानी दुर्गावती के वीरता और बलिदान भारतीय इतिहास के अमूल्य धरोहर है। श्री साय है किहिन की रानी दुर्गावती के आदर्श ले प्रेरणा लेके अमल्ला विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के संकल्प ला और ज्यादा दृढ़ता के संग आगू बढ़ाना चाहिए। केंद्रीय विद्यालय पर 36वां राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण समारोह काली नई दिल्ली में रखे जाही। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ये समारोह के अगुवाई करही। श्री मेघवाल जितैया विद्यार्थी और स्कूल ला इनाम दिही। क्षेत्रीय स्तर में प्रतियोगिता में अव्वल अवैया 20 केंद्रीय विद्यालय मन में छत्तीसगढ़ के कोरबा जिला के पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय घलो शामिल है। रायपुर के तिलकनगर शासकीय आदर्श उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के छात्रा महिमा राजपूत के चयन स्पेस किड्स इंडिया के प्रतिष्ठित मिशन शक्ति सैट के राष्ट्रीय फाइनलिस्ट के रूप में हुई है। महिमा 23 अगस्त ले नई दिल्ली में होवैया 8 दिवसीय शक्ति सैट कार्यशाला में भाग ली। ये मिशन में आने आने देश के 108 चुने गए छात्रा मन भाग लेवा थे। एमा सबो छात्रा मन के मिल के शक्ति सैट उपग्रह बनाही। एमा ले एक सैटेलाइट ला चंद्रमा के कक्षा स्थापित करे जाही। उन्हें दूसर चंद्रमा के सतह में उतरे के उद्देश्य ले बनाए जाही। ये सैटेलाइट के प्रक्षेपण इसरो कोती ले अक्टूबर में श्री हरिकोटा ले करे जाही। महिमा के ये उपलब्धि में रायपुर कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह उमल्ला शुभकामना दिन है। अंबिकापुर जिला के बिसुनपुर रोड स्थित बाल संप्रेक्षण गृह ले पाछू संजा 11 जिन अपचारी बालक फरार हो गए। एकर उम्र 14 ले 17 बच्चर के बीच बताए जाते। घटना के जानकारी मिलतेज गांधीनगर थाना पुलिस और संप्रेक्षण गृह के कर्मचारी उखर तलाश में जुट गए हैं। बताया जाते हैं कि फरार अपचारी बालक सरगुजा सूरजपुर और कोरिया जिला के रहवैया रहे। एमएलए कुछ एक के खिलाफ हत्या चोरी और दुष्कर्म जैसन मामला दर्ज है। गोरेला पेंड्रा मरवाही जिला के मरवाही थाना क्षेत्र में 20 जून के होए किराना व्यवसायी के अपहरण के मामला में पुलिस अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 जिन आरोपी ला गिरफ्तार करे है। आरोपी मन व्यवसायी ला छोड़े के बदला 20 लाख रुपया के फिरौती मांगे रहीन। आरोपी मन तीर ले पुलिस हथियार मोबाइल फोन और एक चौपहिया गाड़ी बरामद करे है। पुलिस आने फरार आरोपी मन के तलाश करत है। आखिर में प्रमुख समाचार एक घाव फिर। विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण योजना देश भर में 1 जुलाई ले हो ही लागू। योजना के प्रचार प्रसार खातिर डिजिटल माध्यम के करे जाते उपयोग। अलनीनो के प्रभाव के सेती सामान्य ले कमती वर्षा के संभावना ला देखत कृषि विभाग प्रदेश के किसान मन ला मौसम के मुताबिक फसल ले बर देहे सलाह। और महिला और बाल विकास विभाग आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका मन पर लुगरा बिसाए खातिर तय राशि सोझे कर्मचारी मन के बैंक खाता में भेजी। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सिरावत है। जय जोहार।
1: आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है हमारा अगला।
2: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। भारतेन

0: हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
1: सामाजिक अन्तर्जालीय माध्यमे एकेन सन्देशेन विदेश मन्त्रिणा सूचितं यत् उभौ द्वयोः देशयोः मध्ये राजनीतिक व्यापार निवेश रक्षा प्रौद्योगिकी स्वच्छ ऊर्जा संस्कृति परस्पर जनसंपर्क इत्यादिषु क्षेत्रेषु सहयोगस्य समीक्षां विहितवन्तौ। अनेन सहैव नवाचारः वित्तीय प्रौद्योगिकी तथा च बहुपक्षीय मञ्चेषु उपलब्ध अवसरेषु अपि विस्तरेण चर्चा समजायत। तौ स्वस्व क्षेत्रस्य तथा च वैश्विक विकासस्य परिदृश्ये अपि विचाराणाम् आदान प्रदानं कृतवन्तौ। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। केन्द्रीय आवास एवं नगरीय कार्यमंत्री मनोहर लालः अद्य राष्ट्रीय राजधान्यां सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर इत्यस्य कृते केन्द्रीय सचिवालय मेट्रो स्थानके निर्माण कार्यस्य औपचारिकं उद्घाटनं कृतवान्। वार्ताहरैः सह संवादे मंत्री इमं क्षणं ऐतिहासिकम् इति वर्णितवान्। तेन प्रख्यापितं यत् इयं परियोजना सर्वकारीय कर्मचारिणाम् अन्येषां च सर्वेषां वृत्तिजीविनां कृते दैनिक गमनागमनम् अत्यन्तं सुगमं सुव्यवस्थितं च करिष्यति, येन सम्पूर्ण देहली क्षेत्रे यात्रा इतोपि सरला क्षिप्रा कार्यकुशला च भविष्यति।
2: बहुत ही ऐतिहासिक मूवमेंट है, जब देश की राजधानी जहाँ से पूरी सरकार चलनी है सेंट्रल विस्टा, और यहाँ के कर्मचारी और यहाँ के जितने भी कार्यालयों में काम करने वाले सब लोग, उनको एक ऐसी सुविधा प्रदान करने के लिए अष्टमी पूजन अथवा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आज ये की गई है। और ये जब कम्प्लीट हो जाएगी उसके बाद दिल्ली के बहुत से छोर आपस में जहाँ जहाँ मेट्रो लाइन चलती हैं उनको ये जोड़ेगी। अब ये जो लाइन है ये आर के आश्रम से लेकर के और इंद्रप्रस्थ तक, जिसके अंदर 9 स्टेशंस हैं।
1: भारत ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य कोंकण गोवा प्रदेशयोः अतिवृष्ट्यै रेड अलर्ट इति रक्तवर्णीया संचेतना प्रसारिता अस्ति। आगामि दिनद्वयोः तटीय कर्णाटक राज्ये मध्यप्रदेशे च एतादृशी स्थितिः भवितुम् अर्हति। अस्य मासस्य 31 दिनाङ्कपर्यन्तं मेघालये, आन्तरिक कर्णाटके, ओडिशायां, तेलंगानायां, पश्चिमबंगप्रदेशे, सिक्किमराज्ये च प्रचण्ड वृष्टिः भविष्यति इति ऋतुविभागेन पूर्वानुमानं प्रकटितम्। ऋतुविभागेन दिल्ली, हरियाणा, चण्डीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख इत्येतेषु प्रदेशेषु शनिवासरपर्यन्तं मेघगर्जनेन विद्युद्योतनेन सह झंझावातस्य च पूर्वानुमानं कृतमस्ति। अंडमान निकोबार द्वीपेषु, आंध्र प्रदेशे, बिहारे, गुजराते, झारखंडे, केरलम राज्ये, माहे प्रदेशे, लक्षद्वीपे, मध्य प्रदेशे, महाराष्ट्रे, ओडिशायां, पश्चिमी उत्तर प्रदेशे च शनिवासर पर्यन्तं एतादृशी स्थितिः अपेक्षते। हॉकी इंडिया संस्था अद्य आगामी यूनाइटेड किंगडम प्रवासार्थं 24 सदस्यानां कनिष्ठ महिला हॉकी दलस्य उद्घोषणाम् अकरोत्। अयं प्रवासः जुलाई मासस्य 5 14 यावत् प्रचलिष्यति। नूतन प्रशिक्षकस्य टिम वाइट इत्यस्य निर्देशने भारतीय दलं स्कॉटलैंड, इंग्लैंड देशयोः विभिन्न स्थानेषु 7 द्वन्द्वान् क्रीडिष्यति, यत् आगामी कनिष्ठ एशिया कप इत्यादि अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगितानां सिद्धतायै एक्सपोजर टूर रूपेण अस्ति। अस्य युवा दलस्य नेतृत्वं दलनायिका खैदेम सिलैमा चानु करिष्यति। अस्य वर्षस्य फीफा विश्वकप क्रीडायां कोलंबिया देशः अद्य मैक्सिको देशस्य ग्वाडलहारा नगरे ग्रुप के क्रीडायां डी आर कांगो देशम् 1-0 इत्यनेन अंकेन पराजित्य राउंड ऑफ 32 इत्यस्मिन् प्रविष्टः। इतः पूर्वं संयुक्त राज्य अमेरिका देशस्य ह्यूस्टन नगरे ग्रुप के इत्यत्र पुर्तगाल देशः उज्बेकिस्तान देशम् 5-0 पराजयत। इति वार्ताः।
3: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 6:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए गोंडी समाचार बुलेटिन।

आकाशवाणी जगदलपुर आनगोंड समाचार बुलेटिन संगनाने सुखलाल नेता नेट मोदल समाचार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ता बीरत छत्तीसगढ़ संगे संगे देश में टिते सामूहिक योग अभ्यास ता पक्का एक कार्यक्रम किया ना आत पत्तिर संभाग ते बचके नक्सली लोरागढ़ मत्ता इलाका ता बने सुरक्षा बल तुर जवान लोर और आत्मसमर्पित नक्सली लोर की तुर सामूहिक योग अभ्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल ते प्रधानमंत्री किसान

सुरक्षा बल तोर जवान लोर और आत्मसमर्पित नक्सली लोर कीतुर सामूहिक योग अभ्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल ते प्रधानमंत्री किसान योग अभ्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल ते प्रधानमंत्री किसान

रेड रोड का कार्यक्रम से योग्य अभ्यास का अगुवाई की तूर। इद मौका ते त्रिमल मोदी तुर की दुनिया ता उचुक हिस्सा ते 21 जून बरसा तर शबले ब्रह दिया आंता और योग ता कारण ते इद एक शबले हजूर सामूहिक तिहार बने माता। और इतुर की इद योग केवल मेंदुल व्यायाम आयो बल्कि विचारता अभिव्यक्ति आंद और इद बुनई उम्रत बंधन आयो। और इतुर की योग शबोलोर कुन जोड़े कीनता और शब्बोय कुन संगे ते ततलता। छत्तीसगढ़ तबने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ते सामूहिक योगाभ्यास त बच्चों तो कार्यक्रम किया न आत। राज्य पाल रमेन डेकल रायपुर मंडली इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ते आयोजित योग शिविर ते मुख्य अतिथि तरूप ते शामिल आतुर। इद मौका ते राज्यपाल इतुर की नेंड पूरा छत्तीसगढ़ सामूहिक योग अभ्यास ता जरियते स्वास्थ्य संतुलन और बेश विचारता खबर तुन जन जन तह अभियानता मनता। अगाए अंबिकापुर ते मंताल पीजी कॉलेज दीपक ग्राउंड ते राज्य स्तर न सामूहिक योग कार्यक्रम त मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि बने माशी शामिल आतुर। इदे बेरा मुख्यमंत्री योग किसी राज्य तुर लोकुरकुन रोजे योग अपना किसी स्वास्थ्य संतुलन और बिना रोग वक्त जीवन जिए मायना खबर खीतूर। राजता बस्तर संभाग संगे संगे दूसरे जिला ते बने योग कार्यक्रम इरतुर। अगर मंत्री सांसद और विधायक मुख्य अतिथि बने मास वातुर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ते छत्तीसगढ़ त सबोए 33 जिला ते जेल ते बने योग कार्यक्रम इरतुर। इदे बेरा हजारों कैदिलोर योग कीतुर। अगाए केंद्रीय संचार ब्यूरो तुर बस्तर जगदलपुर त सरकारी काकती स्नातकोत्तर कॉलेज दीपते योग कैंप लगा कीतुर। इद कैंप ते एनएससी एनएसएस पतंजलि योग समिति और जवान लोरकना संगे लगभग 1950 या 150 लोर होड़जोर ते हिस्सा पाईतुर। बीजापुर जिला ते मुन्ने नक्सली लोरागढ़ मत्ता करेगुट्टा मट्टा ते अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस त मौका ते सुरक्षा बल तुर साहब और जवान लोर सबोय मिले माशी योग कीतुर। ब्लैक फॉरेस्ट त परोहिते पुंदाना ते इद हैंग हजारिंग फीट पुर्रो मट्टा तमुने खराब माओवादी लोरकना शबली सुरक्षित गणमत्ता। वर्षा 2025 ते अप्रैल मई महीना ते सुरक्षा बल तुर वत चलाह की तुर ऐतिहासिक ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ते नक्सली लोरकुन इद गढ़ तुन लेह चितुर या ध्वस्त की तुर। इग बचुक तो दिनतः चले मांद अभियान ते भारी मात्र ते हथियार और 450,000 तह वेल्ला IED बम पकड़े की तुर। इद खूबे दूर और खतरनाक इलाका ते मंडले सुरक्षा कैंप ते 21 जून तक दिया योग कार्यक्रम इरतुर। अगाए बस्तर संभाग ता अलग अलग जिला ते आत्मसमर्पण कीलेर माओवादी लोर बने योग कार्यक्रम ते शामिल आतुर।

0: अभियान तहत ये देखा ना करीब 3,000 हैंडपंप कुन सुधारे की तुर आगाय 2,500 तह ज्यादा राइजर पाइप कुन बदला की तुर मानसून यानी फिर वर्षा वत्तूर वायना तमुने नारायणपुर जिला तब्बो 39 अवप्रवाह सरकारी राशन दुकान मुंड महीना त राशन जमा की तुर ई देख अवना नाटूर कुन राशन काजे परेशान आयना हिले पड़े मायार। और समाज कल्याण विभाग न उप संचालक और नोडल अधिकारी हाल ही ते ओरचा विकास खंड ता ग्राम पंचायत बेड़मा पारा ते मंता राशन दुकान ता जांच की तुर और राशन ता स्टाक कुन चेक की तुर वेहना जरूरी आंद की इलाका ते फिर वर्षा तबेरा ते बचुक तो डोडांग नालांग ते एर वर्षी वांतांग अदेना ते परचुक तो नाह कना संपर्क जिला मुख्यालय ता टूटे मायतांग इदेन हुडसोर जिला प्रशासन नाटोर कुन राशन अभियान कियान काजे त डाका वहतोर यकी तोर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार काजे 31 जुलाई अवना परोय तलिख तोर महिला और बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ त होशियार पीला पेकुर कुन ईद राष्ट्रीय सम्मान ता काजे आवेदन या फार्म भरे की आना ता अपील की तोर ईद इनाम हाइंगे ता 18 वर्षा अवना तोर पिलपे कुरकुन हियाना आंता जो बहादुरी समाज सेवा पर्यावरण बचा की आना खेल कला संस्कृति और विज्ञान और प्रौद्योगिकता क्षेत्र ते बने काम की तोर आवेदन सिर्फ राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in ता माध्यम ते जमा कियाना आयार। नारायणपुर जिला ते पुलुस और उन्द पूना पहल किशोर DRG परिसर ते मैत्री कैपे ता शुरुआत की तोर ईद कैपे ते नाटोरकना जनजाति कला पस्तेरता संस्कृति और पुराना पुरखा शैली बने मायले आंद ईद कैपे ता शुरुआत किशोर वन मंत्री केदार कश्यप वहतोर की विकास रोजगार और विश्वास ते ही शांति ता आधार आंद और मुख्य धारा ते मलसी वायलेर लोकुरकुन मुन्ने बढ़े मायना का जी ईदाना प्रयास किया ना जरूरी आंद सोचे किया ना आंद की बोलो कि ईद मैत्री के पे तो नारायणपुर पुलिस तो अधिकारी कर्मचारी लोर खुदे बना की तोर ईद कैपे ता माध्यम ता मुख्य धारा ते वास नक्सली लोरकुन रोजगार ही ना योजना आंद। दंतेवाड़ा जिला ते डोलकल ट्रैकिंग रूट त लोकार्पण या नेलिता सेवर जी की तुर वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप ईद ट्रैकिंग रूट ता शुरुआत की तुर जिला खनिज संस्थान न्यास तहत करीब 61 लाख रुपया लागत ईद ईदेन बना की तुर ईद रूट या हरित शुरू आले थे क्षेत्र साहसिक पर्यटन कुन बढ़ावा पुटार और नाटोर कुन लयोर कुन रोजगार त पूना मौका पुटार ईद कर दंतेवाड़ा त प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत तुन पुनः पहचान पुट्टर त आशा मनता। बीजापुर त जिला कार्यालय परिसर ते 21 जून त दिया नशा मुक्त बीजापुर शपथ कार्यक्रम त लगा किस मत्तोर कार्यक्रम ते अपर कलेक्टर भूपेंद्र अग्रवाल और संयुक्त कलेक्टर जागेश्वर कौशल अधिकारी कर्मचारी लोरकुन नशा मुक्ति की रिया या कसम दिला की तुर आगाए अधिकारी कर्मचारी लोरकुन नशा मुक्त का नुकसान और अदेना समाज ते पड़े मायनात असरता बारे ते कबर ही तुर ईदम बेरा अधिकारी कर्मचारी जिला तु नशा मुक्त बना किया ना काजे लगातार प्रयास किया तुर और जन जागरूकता गतिविधि न सक्रिय सहयोग ही आना और संकल्प दूरा की तुर आखिरी ते मुदुल समाचार उंदबेरापुर फिर ओषा के जाट अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ते छत्तीसगढ़ संगे संगे देश में टेता सामूहिक योग अभ्यास त काम पक्का कार्यक्रम किया ना आत बस्तर संभाग ते बचके नक्सली रोरा गणमत्ता इलाका ता बने सुरक्षा बल तुर जवान लोर और आत्मा समर्पित नक्सली लोर की तुर सामूहिक योग अभ्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल ते प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ता 23वीं किस्त जारी की तुर प्रदेश या राज्य तुर 11,000 हारूं सौ तवेला ग्राम पंचायत ते नेंड ग्राम सभा ता आयोजन किया ना आत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगुवाई ते केंद्र ते NDA त सरकार 12वां वर्ष पूरा आता तह प्रदेश या राज्य ते अलग अलग जगह ते पंजीयन कैंप लगा किया ना आंता इदे न संगे गोंडी समाचार बुलेटिन
1: सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
2: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें।

0: इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
1: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
2: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
1: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
2: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
1: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
2: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
0: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
3: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस

0: दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
1: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस
0: आइए।
1: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस

0: आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 जुलाई से लागू होने जा रही वीबीजी रामजी योजना ग्रामीण आजीविका, रोजगार और आत्मनिर्भर गांवों की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल साबित होगी। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में आगामी शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से शुरू होगा। इस वर्ष अलनीनो के प्रभाव से कम वर्षा की आशंका के बीच कृषि विभाग ने किसानों को मौसम के अनुरूप फसल लेने की सलाह दी और महिला और बाल विकास विभाग अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को साड़ी खरीदने के लिए निर्धारित राशि सीधे उनके बैंक खाते में अंतरित करेगा। अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण योजना देश भर में 1 जुलाई से लागू हो जाएगी। छत्तीसगढ़ में योजना के प्रचार प्रसार के लिए ग्राम सभाओं, चौपालों, पोस्टर, बैनर, मुनादी, रथ प्रचार और डिजिटल माध्यमों का उपयोग किया जा रहा है। वहीं सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक, स्व सहायता समूहों की महिलाएं, जनप्रतिनिधि और स्थानीय सामाजिक संगठन भी लोगों की को योजना की जानकारी देने में जुटे हुए हैं। इसके अलावा ग्राम और जनपद पंचायतों के साथ ही जिला स्तर पर प्रशिक्षण बैठकें और ग्राम सभाएं आयोजित की जा रही हैं। इसके माध्यम से ग्रामीणों को योजना के विभिन्न प्रावधानों और लाभ की जानकारी दी जा रही है। इसी कड़ी में बेमेतरा जिले के सांकरा और देवरी ग्राम पंचायत में ग्रामीणों ने मानव श्रृंखला बनाकर और स्लोगन के माध्यम से लोगों को इस योजना से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान ग्रामीणों ने पात्र परिवारों को योजना का लाभ दिलाने और अधिक से अधिक लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचाने का संकल्प भी लिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि 1 जुलाई से लागू होने जा रही वीबीजी रामजी योजना ग्रामीण आजीविका, रोजगार और आत्मनिर्भर गांवों की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल सिद्ध होगी। उन्होंने बताया कि राज्य मंत्रिपरिषद ने इस योजना के छत्तीसगढ़ के प्रारूप को मंजूरी भी दे दी है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में आगामी शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से शुरू होगा। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने बताया कि बच्चों को 1 अप्रैल से ही पाठ्यपुस्तक, गणवेश और साइकिल का वितरण किया जाएगा।
1: 1 अप्रैल से स्कूल खुलेगा तो बच्चा मानसिक रूप तैयार होगा। जितने उसके एडमिशन संबंधित और जितनी जो चीज है, जैसे हम यूनिफॉर्म देते हैं, साइकिल देते हैं, पुस्तक देते हैं, तो ये सब तैयारी हम 1 अप्रैल से करेंगे। तो वो अप्रैल में एडमिशन संसाधन और उपलब्धता सब होने के बाद वो पढ़ाई का एक सेटअप प्रारंभ हो जाएगा। 16 जून को जब बच्चा आएगा तो जो पुराना सेटअप है उसमें सीधा पहले दिन से वो दौड़ना चालू होगा। तो कल ही हमने बैठक में कहा है कि सारे कोर्स हमको अनिवार्य रूप से सबको दिसंबर तक कंप्लीट करना है, जनवरी में रिवीजन करना है, फरवरी में एग्जाम करना है। कल हमने बैठक में कहा है कि प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल को विशेष रूप से फोकस करें।
0: स्कूल शिक्षा मंत्री ने बताया कि 1 जुलाई से सभी शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए VSK ऐप पर पंजीयन और उपस्थिति अनिवार्य होगी। जुलाई माह का वेतन ऐप में दर्ज उपस्थिति के आधार पर दिया जाएगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय मेरा भारत पहल के जरिए देशभर में वंदे मातरम कैंप आयोजित करेगा। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को भारत की संवैधानिक और लोकतांत्रिक परंपराओं के बारे में गहरी समझ विकसित करने का अवसर देना है। इस पहल के तहत चुने गए जिलों में 20 शिविर लगाए जाएंगे। प्रत्येक शिविर में 15 से 29 आयु वर्ग के 150 युवा हिस्सा लेंगे। प्रत्येक शिविर में पूर्वोत्तर सहित 6 राज्यों के युवा शामिल होंगे। मंत्रालय ने यह भी बताया है कि कम से कम 50% भागियों में महिलाएं और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लोग होंगे। पहला शिविर पश्चिम बंगाल के कोलकाता में कल से आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। श्री मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। क्षेत्रीय स्तर पर प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले 20 केंद्रीय विद्यालयों में छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले का PM केंद्रीय विद्यालय भी शामिल है। महिला और बाल विकास विभाग ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए साड़ी की केंद्रीकृत खरीदी व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। अब साड़ी खरीदी के लिए निर्धारित राशि सीधे कर्मचारियों के बैंक खातों में अंतरित की जाएगी। महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने विभाग को निर्देश दिए हैं कि साड़ी का डिजाइन पहले जैसा रखा जाए ताकि पूरे प्रदेश में एकरूपता बनी रहेगी। वहीं साड़ी के कपड़े अथवा अन्य विकल्पों का चयन स्थानीय स्तर पर स्वयं कार्यकर्ता और सहायिकाएं कर सकेंगी। भारतीय जनता पार्टी के रायपुर स्थित प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में पार्टी पदाधिकारी

की बैठक हुई। बैठक में संगठन और सरकार से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान जिलों में चल रहे संगठनात्मक कार्यों और अभियानों को लेकर पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। इस बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंह देव, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय सहित भाजपा के प्रदेश पदाधिकारी मौजूद थे। वहीं आज ही भाजपा प्रदेश कार्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म की बैठक भी हुई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। इस वर्ष अलनीनो के प्रभाव के कारण सामान्य से कम वर्षा की आशंका को देखते हुए कृषि विभाग ने प्रदेश के किसानों को मौसम के अनुरूप फसल लेने की सलाह दी है। विभाग ने धान के स्थान पर दलहन और तिलहन फसलों की खेती को बढ़ावा देने को कहा है। कृषि विभाग के अनुसार कम वर्षा की संभावित परिस्थितियों में अरहर, मूंग, उड़द, कुल्थी, मूंगफली, तिल, रामतिल, कोदो, कुटकी और रागी जैसी फसलें बेहतर विकल्प साबित हो सकती हैं। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार दलहन और तिलहन फसलें कम लागत में बेहतर उत्पादन के साथ ही भूमि की उर्वरा शक्ति को सुधारने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने कम पानी वाले क्षेत्रों में धान के बदले दलहन और तिलहन फसलों की खेती करने वाले किसानों को 15,000 रुपये प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि देने का फैसला किया है। इन फसलों की खरीदी प्रधानमंत्री आशा योजना के तहत समर्थन मूल्य पर की जाती है। सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के 5 वर्ष पूरा होने के अवसर पर छत्तीसगढ़ में 29 जून से 6 जुलाई तक सहकारिता सप्ताह मनाया जाएगा। सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने बताया कि सप्ताह भर तक चलने वाले इस कार्यक्रम में जागरूकता, सहभागिता और नवाचार को प्राथमिकता दी जाएगी, साथ ही लोगों को सहकारी योजनाओं और उपलब्धियों से अवगत कराया जाएगा। प्रदेश में आज वीरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि रानी दुर्गावती का अदम्य साहस, पराक्रम और बलिदान भारतीय इतिहास की अमूल्य धरोहर है। श्री साय ने कहा कि रानी दुर्गावती के आदर्शों से प्रेरणा लेकर हमें विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के संकल्प को और अधिक दृढ़ता के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। रायपुर के तिलक नगर स्थित शासकीय आदर्श उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय की छात्रा महिमा राजपूत का चयन स्पेस किड्स इंडिया के प्रतिष्ठित मिशन शक्ति सेट के राष्ट्रीय फाइनलिस्ट के रूप में हुआ है। महिमा 23 अगस्त से नई दिल्ली में आयोजित होने वाली 8 दिवसीय शक्ति सेट कार्यशाला में भाग लेंगी। इस मिशन में विभिन्न देशों की 108 चयनित छात्राएं भाग लेंगी। इस कार्यशाला में छात्राएं मिलकर शक्ति सेट उपग्रह का निर्माण करेंगी। इनमें से एक सैटेलाइट को चंद्रमा की कक्षा में स्थापित किया जाएगा, जबकि दूसरा चंद्रमा की सतह पर उतरने के उद्देश्य से विकसित किया जाएगा। इन सैटेलाइट्स का प्रक्षेपण इसरो द्वारा अक्टूबर में श्रीहरिकोटा से किया जाएगा। महिमा की इस उपलब्धि पर रायपुर कलेक्टर डॉ गौरव सिंह ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। अंबिकापुर जिले के बिशुनपुर रोड स्थित बाल संप्रेक्षण गृह से बीती शाम 11 अपचारी बालक फरार हो गए। इनकी उम्र 14 से 17 वर्ष के बीच की बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही गांधीनगर थाना पुलिस और संप्रेक्षण गृह के कर्मचारी उनकी तलाश में जुट गए हैं। बताया जा रहा है कि फरार अपचारी बालक सरगुजा, सूरजपुर और कोरिया जिले के रहने वाले हैं। इनमें से कुछ के खिलाफ हत्या, चोरी और दुष्कर्म जैसे मामले दर्ज हैं। गोरेला पिंडरा मारवाही जिले के मारवाही थाना क्षेत्र में बीते 20 जून को हुए किराना व्यवसायी के अपहरण के मामले में पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने व्यवसायी को छोड़ने के बदले 20 लाख रुपए की फिरौती की मांग की थी। आरोपियों के पास से पुलिस ने हथियार, मोबाइल फोन और एक 4-पहिया वाहन बरामद किया है। पुलिस अन्य फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। गरियाबंद जिले के उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में हॉर्नबिल सफारी शुरू की जाएगी। इस सफारी के माध्यम से पर्यटक, पक्षी प्रेमी, वन्यजीव फोटोग्राफर और शोधकर्ता प्राकृतिक वातावरण में हॉर्नबिल का अवलोकन कर सकेंगे। मत्स्य विभाग द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना पीएम एमकेएसएसवाई के तहत कल 25 जून को रायपुर में जल कृषि बीमा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। रायपुर रेल मंडल के अंतर्गत भिलाई के सिरसा अंडरब्रिज में मरम्मत कार्य की वजह से 1 जुलाई से 31 अगस्त तक आवाजाही बंद रहेगी। दुर्ग जिले के धमदा तहसील के ग्राम बसनी में जिला प्रशासन ने शासकीय भूमि पर किए गए अवैध कब्जे हटाकर जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया। जांच के बाद राजस्व विभाग ने कार्रवाई कर भूमाफियाओं को सख्त संदेश दिया कि सरकारी भूमि पर कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जशपुर जिले में खनिज विभाग ने शंख नदी के तट पर 200 ट्रैक्टर ट्रॉली रेत जब्त की है।

0: मामले में विभाग ने 146,000 रुपए का अर्थदंड वसूल किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 जुलाई से लागू होने जा रही वीबीजी रामजी योजना ग्रामीण आजीविका रोजगार और आत्मनिर्भर गांवों की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल साबित होगी। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में आगामी शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से शुरू होगा। इस वर्ष अलनीनो के प्रभाव से कम वर्षा की आशंका के बीच कृषि विभाग ने किसानों को मौसम के अनुरूप फसल लेने की सलाह दी और महिला और बाल विकास विभाग अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को साड़ी खरीदने के लिए निर्धारित राशि सीधे उनके बैंक खाते में अंतरित करेगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है।

मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्स, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। आप हमें न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं। शाम के 7 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम बस्तर के स्वर।

0: राम राम लाल हजारी, राम राम
1: राम राम पंड की, राम राम अमर लिसने।
0: हो काय
1: तो पंड की,
0: हाँ
1: मैं काय बोलते रहे
0: हाँ?
1: कि दखामी दोनों तो भेटघाट होलू ने
0: हो।
1: तो अदाय हम चो रेडियो सुन तो दादा दीदी मन संग बोले भेटघाट हो
0: अले।
1: तो बस्तर के स्वर कार्यक्रम सुन तो सब पाए सियन सजन मन, दादा दीदी मन, भाई बहन मन और संग जौरिया संगवारी मन के मैं लाल हजारी,
0: मैं पंड की,
1: हम दोनों करो से
0: राम राम
1: और पंड की
0: मिला
1: मन के तो भूल कुक नहीं होए ने।
0: हाँ, तू भूलक सीस मानते
1: नहीं भूल के
0: हाँ।
1: तो जम्मा नानी नानी पीला मन के हम दोनों चुपाटले
0: खूबे खूबे माया। तो दख लाल हजारी,
1: हाँ
0: तो दादा दीदी मन बोले काम बूता सराउन बसला सो
1: बसला सो था।
0: हाँ, तो द काम बूता नहीं कर लो ने तो कई काम नहीं हो
1: नहीं हो यार
0: नहीं। और काम बल्लो ने मैं बोले से कि कोनी जसन कई काम क्या मैं जानू बल्ले नहीं, उनके सिखा तो काम बड़े भारी काम
1: बड़े भारी काम है
0: नहीं।
1: हाँ कर
0: हाँ।
1: तो जैसन के आदिवासी कला और जो सांस्कृतिक विरासत है ये आदिवासी मन चो जीवना परंपरा और रीति रिवाज और जो प्राकृतिक बल्लो ने हो ऐसे रान रूख नदी नाला और जो पशु जनावर ये चले
0: जुड़ी से हो। जैसन कोनी चीज भी काम के बोले कोनी जान ले का आया है उनके सिखा तो खूबे बड़े काम है। जैसन कोनी काम क्या मैं जानू तो उनके पीला मन के नहीं भूल का तरह उनके पीला मन के सांग ले का आया ये तो पीढ़ी के काम पड़े
1: काम
0: देने
1: पड़े दिया है। तो जो आदिवासी मन आप लोग सांस्कृतिक के नाच गाना
0: हो
1: और जो लोकगीत चित्रकला हस्तशिल्प बल्लो ने होते जो
0: हाथ
1: ले
0: हाथ ले
1: बना तीज मन के और तिहार बहार मनन भाती ये पीढ़ी ले दूसरी पीढ़ी ने आगे
0: आगे बढ़ सो था। तो हुन मन के आगे बढ़ा तो

0: गदगोट बात मन
1: हो
0: तो हम चलो के आसे जाला मन अले जाला के सुनो
1: अले
2: घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम
3: लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 cc तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
4: जीएसटी काउंसिल तोरु वाणिज्यिक कारोबार तक का टैक्स तुन और वन सरल बना की तोड़ बस ट्रक और एम्बुलेंस गाड़ी की नगा इंजे ओंडो लेकिन 18% टैक्स किसी तोड़ मुन्ने अद 28% मत्ता एचएस कोड क्लासिफिकेशन किन परवा की वलेवा गाड़ी ना सामान तपोरो इंजे ओंडोई 18% टैक्स की सितोड़ इत बुताते यू सामान पाड़नोर और सामान तच इनोड़ा तिप्पाल कम आता और सामान तत्ता ओयन बूता सरल आयना उम्मीद मिंदे इलेक्ट्रिक गाड़ी ना पोर्रो मुन्नीटा लेकिन 1% टैक्स मंता नेलता माटा इद मिंदे की इलेक्ट्रिक गाड़ी नगा बाताय बदलाव आयो कोंडे इलेक्ट्रिक गाड़ी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल और इलेक्ट्रिक मूंड चक्का ना गाड़ी 1% जीएसटी मोला तेने दोर किता अदेन के और सोबेर कम टैक्स ता गाड़ी बने मास मंता
5: जीएसटी परिषद कमर्शियल बिजनेस के और सरल बनाली से बस ट्रक एम्बुलेंस ऊपरे एवर एक समान 18% कर लागे दे आगे ये 28% रहे एचएस कोड क्लासिफिकेशन चो गिरधा कर लो बिना ऑटो पार्ट्स ऊपरे एवर एक समान 18% कर होली से ये काम ले कल पुर्जा बना तो कंपनी अरु घेन तो लोग अरु सप्लायर्स चो चिपा गुचे दे एचे संगे कल पुर्जा चो अमरातो काम भले सरल होए दे बिजली ले चलतो बीती गाड़ी ऊपरे 5% कर लागे दे ए मन्ने काही बदलाव नहीं होली से बिजली ले चलतो सपाई गाड़ी 2 चक्का बीती गाड़ी अरु 3 चक्का बीती गाड़ी ऊपरे 5% कर चो लाभ मिलते रहे दे असन ले ये मन सपाय कम जीएसटी दर बीती गाड़ी मंचो विकल्प बनू रह दे
0: हाँ तो पंड की
1: एबे
0: तो दादा दीदी मन के हमें नंगत गियान दियान भी थी गोट बात मन तो सुना
1: दे
0: तो अदा हम चलो गए ऐसे गोटोक भेंट वार्ता
1: हाँ।
0: ये भेंट वार्ता भीतरे भेंट हो सोत एमनात सनीता अमर काम
1: हाँ।
0: और एमनात लोक गायिका और एमन संगे भेंट कर सोत एमनात बलबीर सिंह कच्छ
1: हाँ।
0: तो वाले ये भेंट वार्ता के हम दादा दीदी की सुनो
1: हमें बस सुनो
6: सपुर कुदुर बाली सपुर कुदुर बाली सपुर

0: रामरतन मुक्त बलि भोगा गेली रे, हाते डाले मुंडे लाली, रामरतन मुक्त बलि भोगा गेली रे।
1: रेडियो सुन तो भाई बहन मन देखा अपन मन जानला सोती कि आज मैं फिर गोटक बल्ले गाव तो गायिका कलाकार बहन संग गोट बात करें से तो सब ले आगे तो चुनाव सांग गांव चुनाव सांग
0: मैं चुनाव काम है। मैं ग्राम बड़े सिलाटी चो है।
1: अच्छा बड़े सिलाटी बल्ले ने कौन कोंडा गांव जिला
0: है? कोंडा गांव जिला में पड़े से।
1: अच्छा तो सुनीता मरकाम ये सांग जसन की ये जोन गांव तो बीती जोन कला है बोलो भी बल्ले ने तू किदलो रही सारू ये सब की सीख ली साले
0: मगे गाँव तो जो रुचि तो बचपन ले रहे करीबन कक्षा छठवी ले हमेशा गाँव से चे
1: आसन
0: हाँ
1: अच्छा
0: गाँव तो जो हमेशा मो मतलब स्कूल और कॉलेज में हमेशा मौका मिल ली
1: हाँ हाँ
0: गाँव तो जो
1: अच्छा बोले ने पीला बेरा ले पड़तो बेरा
0: हाँ
1: ले
0: हाँ
1: बोले ने आगे ले मन रहे रुचि रहे बोले
0: हाँ
1: बने हाँ हाँ तो गांव ने कोनीता ने कहीं शादी विवाह वगैरह ने गेले बोले गाँव ती रही होती
0: हाँ शादी ब्याह में लेकिन उतरो नहीं गाँव से।
1: अच्छा
0: हाँ
1: अच्छा
0: असने गांव में गांव गांव में जो गांव सदूसन पर गांव से का
1: हाँ हाँ हसन हाँ गाँव चो जोन बोले पारंपरिक जोन गीत मनाए ये गीत मन बोले गौआस बोलो भाई
0: अजय जान तो सन मन के
1: जान तो सन मन
0: हाँ
1: के हाँ हाँ तो सुनीता मरका में सांग जैसन की बोले ने तुचो जोन पढ़ाई लिखाई है बोलो भाई

0: कितलो तक पढ़लीसीस, काय काय सब्जेक्ट धरून पढ़लीस, कहाँ तक पढ़लीसीस?
1: मच्छो पढ़ाई बस्तर विश्वविद्यालय ले, एमए हिंदी लिटरेचर में
0: अच्छा
1: होली से,
0: हाँ
1: और अभी नहीं क्रेस्ट कॉलेज ले डीएलएड वाले होली से,
0: हाँ
1: अभी अब खैरागढ़ विश्वविद्यालय में संगीत जो पढ़ाई करें से।
0: अच्छा संगीत ने बोले ने तो संगीत संगीत तो खूब है से है कि नहीं तू चौपाय?
1: हिंदुस्तानी संगीत।
0: अच्छा हिंदुस्तानी संगीत ने, हाँ हाँ बोले ने कितलो बरख होली उता खैरागढ़ ने हिंदुस्तानी संगीत चू?
1: अभी तो दुए साल होली से।
0: अच्छा 2 साल होली से, हाँ कित साल चो मतलब कर
1: चार
0: तो
1: साल चो है।
0: 4 साल चो। अच्छा तो ये हिंदुस्तानी संगीत ने जैसे कि 2 साल होली बल्ली से बल्ली ने मोर जैसे कि फर्स्ट साल ने पहल हाँ साल ने काय चीज के पढ़ा हुआ संगीत ने?
1: पहले साल में,
0: हाँ
1: पहले तो फर्स्ट सेमेस्टर में आम के अलंकार पढ़ा ला,
0: अच्छा
1: अलंकार चो बारे में नॉलेज दिला।
0: हाँ
1: उतरोले सेकंड सेमेस्टर ले राग स्टार्ट होली।
0: राग हाँ
1: थाट वगैरह वगैरह।
0: अच्छा तो दक राग बल्ले से बल्ले साले मोर ने दक संगीत जोन सीख तो बीतिया है बल्ले ने आरो और हो बल्ले मोर करुआ तो आल उनके आल गाउन बातें सुनाऊं दक?
1: अलंकार।
0: हाँ

0: तो अदक सुनीता
1: ये बिलावल थाट जो अलंकार है।
0: अच्छा बिलावल थाट जो अलंकार है। हाँ तो जशन की तुम्हें जशन की क्लास जाए सास तो बोले ने रियाज वगैरह प्रैक्टिस वगैरह बोले ने कौन वाद्य यंत्र ने करुआ सारू कितलो टाइम दिन ने देव सास प्रैक्टिस कर तो काजे।
1: हाँ तो वाद्य यंत्र हम जो मेन तानपुरा रहे से
0: तानपुरा
1: हाँ तानपुरा ले करूँ से रियाज।
0: हाँ हाँ
1: और टाइम रियाज कर तो जो टाइम आप लोग जिदल दाएँ बोल करूँ बालों ने उदल दाया में
0: अच्छा
1: करूँ से।
0: आसन
1: हाँ
0: हाँ हाँ बोले क्लास कितलो टाइम लगे से दिन में।
1: अच्छा क्लास हम जो गायन जो क्लास बोलो में 4 बजे लगते रहे ले।
0: अच्छा
1: हाँ
0: 4 बजे ले। हाँ हाँ तो एच संग और बोले विषय मन रहे से होते।
1: हाँ हिंदी लिटरेचर
0: अच्छा
1: उतर बल दर रहे
0: हाँ हाँ
1: क्योंकि ये बाट चोबल मचु रही तहाँ उन बाट चोबल रहो बोले उन भाते ना बोले हिंदी लिटरेचर जो विषय के चुन ले
0: हाँ
1: और साथ में हिंदी बल पढ़ लूँ।
0: हाँ अच्छा
1: हाँ
0: तो दक इतलो अच्छा तुर्ती राग बल्ले सुना लिस जसन की अलंकार सुना लिस तो कोनी असन राग के अल के निक सुना दक कोनी बोले अच्छा जन जान लो भी थी।

0: छागढ़ जैसन किया था, अब एम ए लिटरेचर हिंदी निकल लीस, साहित्य हिंदी निकल लीस, फिर खैरागढ़ जाऊन पड़ तोर बल्ले कसन मानी ली, कसन ने गेली सूता।
1: हाँ, कसन में बल्लो ने अब मके संगीत सीख तो जो बिकट ललक रहे बचपन ले, और मके लेते स्कूल वगैरह में गुरुजी मन पूछवात पूछत नहीं कि तु का बनुक चाह से बोलन, तब फिर मैं गायिका बनुक चाह से बोलवा। तब उन भी दिन रहे जब 12वीं पास हो ले तब उतरो ले संगीत के बुलक लो यासन बनो रहे, मतलब गाओ तो गाते रहे लेकिन अब मक उतरो विश्वास नहीं रहे कि मक्के बे संगीत तो क्षेत्र में फिर जो कोई दे बोलन बाते। लेकिन उतरो ले जगदलपुर ही ले क्राइस्ट कॉलेज में, तब इतना अच्छा गाना गाओ तो चो मौका दिला।
0: अच्छा,
1: गुरु जी मन मंच मेर ली, तब प्रार्थना सभा में बोले बिकट भजन वगैरह गौकलाए मिरली, उन्हीं सब उतार सुनुन बाते नाम जो गुरु जी मन मैडम मन सब लोग आम मतलब बल्ला के तो अगर संगीत में समय दिलेस जाले और अच्छा करुक सकुआस बोलुन बाते। तब इधा आले मक फिर अजिक संगीत जो साइड सोच तो जो मौका मिरली और मैं खैरागढ़ जातो जो बारे में सोच
0: अच्छा।
1: ले।
0: तो जैसन कि खैरागढ़ बल्ले उता संगीत बल्ले शिक्षा देवाद बल्ते मार्गदर्शन हिसाब ने कौन सांगला कौन दखाला?
1: कौन ही नहीं सांगत मके पता नहीं मैं कसन में कहाँ सुनू रहे हुई, लेकिन अचानक मैं मको नहीं सांगला खैरागढ़ में संगीत सीखा सता सनाय सनाय बोलन बातिन, लेकिन के भाई पढ़ून पढ़ना बोल रहे हुई अचानक टाइप जो उतर जातो जो बारे में मचो घर जो मतलब मज बहन जो पूरे बोलने की मैं उतर जौन बातें पढ़ुआ बोलन बातें, क्योंकि मज बहन बोलते रहे दा डी एल एड कर ली सी बी एड कर बोलन बातें, लेकिन मैं नहीं मैं संगीत से कुक लाए खैरागढ़ जाऊँ बोल तक। फिर
0: अच्छा,
1: अब उन मना बल नहीं कर ली जो बस जल जाऊँ जाऊँ तक जानू बल ली।
0: अच्छा,
1: हाँ
0: बल्ले ने तू होता एकला गेली इसमें?
1: हाँ एकला गेले।
0: अच्छा,
1: हाँ
0: तो बल्ले ने होता जाऊँ कहाँ मिल लीस का संग भेंट गाँट हो लीस काय पूछ लीस?
1: सब ले लेते तो मैं खैरागढ़ के दखुन बल नहीं रहे, और जा तो छो लेते मकर असन लगते रहे कि मैं उतर जाऊन बातिन कहाँ एक जन भटकू आए क्यों खोजू आए असन टाइप चो लगते रहे। लेकिन मैं जब खैरागढ़ गेले तो जस्ट बस ले उतर तो एक खैरागढ़ भी दिन बोर्ड ठांग लो धक्का दिली, तब उतर मैं डायरेक्ट गेले 2 बजे चो आसपास अमर ले, और 2:30 बजे चो आसपास मचो इंटरव्यू होली यानी कि वोकल टेस्ट दर्शत उता
0: अच्छा।
1: सब ले लेते। उतरो ले फिर लिस्ट में नाम निकरा सत काचो काचो चयन होली बोलून बातें, तब उसने सेलेक्ट हो तो कि फिर मैं जौन बातें एडमिशन हो लें।
0: अच्छा
1: हाँ
0: अच्छा तो ये भी होता जैसन कि लेकी मन का जे पढ़तो का जे रतो का जे खातो का जे काय सुविधा आसे?
1: लेकिन मन जो रतो का जे हॉस्टल सुविधा आसे,
0: अच्छा,
1: और खाना वाना सब होता है मेस फीस पे करून बातें
0: अच्छा,
1: वैसे।
0: मतलब रोक
1: हाँ
0: सकूँ?
1: रोक सकूँ से।
0: अच्छा
1: और कोने बाहर रह तो लोग मन किराए रूम में बल रह सत।
0: आसन,
1: हाँ
0: अच्छा। हाँ, तो दक सुनीता थी इतलो अच्छा, बोले तुझो मेहनत तुझो संघर्ष तुझो मन ने बोले नुता तक अमरलिसिस, फिर आमी गोड बात तो आगे करवा, तो आम चो बस्तर चो फिर कहीं असन हल्बी गीत के तुझो जान लो भी थी के हल्खनी कसन गाउन बात सुना दे।
1: बस्तर चो
0: हाँ।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारा दैनिक कार्यक्रम बस्तर के स्वर। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 7:22 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है ग्रामीणों का कार्यक्रम आमचो गांव।

0: जुहार लाल हजारी, जुहार।
1: जुहार पंडकी अमरलीस।
0: हाओ
1: हाँ तो पंडकी
0: हाँ
1: मैं काय बोलते रहे कि दखामी दोनों तो भेटघाट हो लू ने
0: हाओ
1: तो अदय हम जो रेडियो सुनते दादा दीदी मन संग बोले भेटघाट हाँ
0: अले तो आमचो गांव कार्यक्रम सुन तो सफा है गांवकारी दादा दीदी सियान सजन मन के मैं पंडकी
1: और मैं लाल हजारी
0: हम दोनों करू से जुहार। तो दख लाल हजारी
1: हाँ पंडकी
0: सफाई बाटे मंडई बाजार मन सरली
1: सरली
0: और बरसा उतरला माँ बले बनाए से ने
1: बनाए से का हाँ।
0: मातर दख बरसा तो उतरली मातर रही बरसा ने फिर तियार बाहर मन बले खूबे ने
1: खूबे रहे से हाँ का हाँ। तो जैसन के हम सफाई जानू जैसन के मेला मंडई और तिहार बाहर होली ये हम जो समाज ने गोटो खूबे जरूरी हिस्सा
0: हो
1: और

0: संगे लोग मन के एक दूसरे ले जोड़ून संगाए
1: जोड़ून संगाए से जैसे मेला मंडई बल्ले काया गांव गांव चो दादा दीदी मन चो काया जीवनार गोटोक नगद बारती चो बल है हुन समय आए
0: हैं
1: जैसन कई दादा दीदी बनाए सोत हुन मंडई बाजार ने न्यून भाती भीख सोत उनके लोग मन घेन ले काया उनके लोग के सामान नगद सामान भी रहसे और दादा दीदी चो फिर कमाई
0: बनाए ने तो जोड़ून तो संगाए थे ची संगे संगे आपस ने भाईचारा और एकता संगे संगे मिलून मिसुन मिलून
1: हुन सफाई काम के कोनी एकला नहीं करुक सके
0: नहीं करुक सके आए सत्य तो सत्य गोट मन के बल सीस जोन मेला मंडई तिहार बार होली ए चोले जोन व्यापारी मनात कारीगर और कलाकार भाई मनात हाँ, ए मन आप लो सज के बिकुन भाती अच्छा लाभ धरुक सको कसन बल्लो ने मंडई मेला ने तो खूबे लोग जासो तो असन बेरा का आए की व्यापारी भाई बहन मन काजे व्यापार करतो काजे खूबे अच्छा समय आए और खूबे नंगत बले रहे से असन बेरा लोग मन बले खूबे जुहरसत और मेला मंडे ने
1: जासत और काय आप लो बना लो सामान के छी मतलब हुनी लोग छी घेन ले काय और नगत है ने कि हुनी चांद जो सामान हुनी तो कलाकृति आए हुन भाई मन जो कि हुनी मन के मिले
0: मिले से
1: हां होता है जो लोग छी घेन
0: घेन होता है तो दादा दीदी मन मेला और तिहार ने कलाकार दादा दीदी मन के आप लोग कला और सज के प्रदर्शित करतो और बिकतो काजे नंगत समय तो रहे से ची संगे संगे मेला और त्योहार ने लोग जो जीवना ने हरी कुदिम
1: रहे से हो
0: और त्योहार ने लोग जो जीवना ने हरी कुदिम संगे संगे मिलुन मिस्तुर काजे बोले अच्छा मौका
1: अच्छा मौका रहे त्योहार बाहर नहीं होलो ने काय मनु के हरिक बल तो
0: नहीं लागे यार तो पंड की
1: ओए लाल हजारी
0: ये तो रहे नंगत ज्ञान ध्यान बीती गोट बाट मन ने तो अधय हम चला गया से जहला मन अले जहला मन के सुनो
1: अले
2: जीएसटी काउंसिल बुधवार नेटेन घोषणा की तकी सरकार सीमेंट तपोरो जीएसटी मोला 28% तुन कम कीस इंजे 18% की सित्ता टैक्स तगा कमी कित्ता आवासीय आड़ व्यवसायिक प्रोजेक्ट तगा लागत दबाव कम आयना उम्मीद मिंदे ई लेकिन संगमरमर इंदनाद और ट्रेवकिन ट्रेवटीन ब्लॉक इतके ओंडले कटा बंडाकल तगवेन टैक्स दर 12% से गटे मास 5% की सित्तोड़ ग्रेनाइट ब्लॉक तगवेन मुन्ने 12% मत्ता आदिंजे 5% जीएसटी लगे माता इदेन संगेन उसका चुन्नामता ईटा और बंडाकल तीन जोड़ाई की अनबूताते वेंट मोला 12% से कम मास 5% की सित्तोड़
3: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
4: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्सक्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
5: जीएसटी काउंसिल ने बीमा पर लगने वाले 18% टैक्स को घटाकर जीरो कर दिया है। ऐसे में जीवन बीमा लेने वालों को अब सिर्फ इंश्योरेंस का प्रीमियम ही भरना होगा और इस पर कोई भी अतिरिक्त टैक्स नहीं देना होगा। ये हेल्थ इंश्योरेंस लेने वालों के लिए बड़ा फायदा है क्योंकि LIC को पहले से ही इनकम टैक्स में छूट मिली हुई है। वहीं अब GST भी हटने से बीमा लेना फायदे का सौदा होगा।
3: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
4: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्सक्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
0: हाँ तो दादी दी मन ये तो रहे नियंगत ज्ञान ध्यान बीती गोड बात मन तो अदय हम चुला गया से ये नाटक के लिखला सोत इमनाथ श्रीमती यामिनी पांडे और इथाने भाग धरलो लोग मनात शशांक कुमार ठाकुर
1: विद्याधर पांडे विजय लक्ष्मी दानी लक्ष्मी मंडल और सरस्वती गायकवाड़
0: और एक ही हम चुला गया अमरा सोत इमनाथ बलबीर सिंह कच्च।
1: अले तो ये नाटक के दादा दीदी मन के सुनाओ और हमें बोले सुनो।
6: सोमारी ए सोमारी कहाँ गेलीस रे कसन घरी काय

0: निहात कायनुक कहाँ गेला सपाय, पाए धोइन देता। पाए की तो धोले आले दाई भीतर ओलून देखेन देता।
1: उगारा बेटा उगारा उगारा उगारा उगारा उगारा बेटा एब्बे तुझे बाबा ये दे इला जाले तुके कहाँ बल दखाओ नहीं हूँ दे उगारा ये दे तू अमरला ये अमरला सो
0: मैं तो अमरले मांतर ये काय होली गुरुक शांति के आजी स्कूल बले नहीं गेली ने
2: आले उड़ाऊं दे इस निरी आया काय के
0: आले कुछ कुछ न दख आले हाथ के दखाओ ओहो ये तो एक दाएं तपून गेली से
1: कपार के बले चीन दखा हो एक के हार लक लक कुन गेली से उन्हीं ने तो मैं बेड़ा बाटे ये उक नहीं सकली
2: परले होली हो हम चित्र सुंदर बेटी कसन होली से सीत बोले लागे से बोले कसन करवाए दाए
0: थेप थेप थेप मैं जाए से बुटकी दीदी लगे अले इतल दाए ले जाओ रतीस की नहीं वो गाय होन भाति बसुन देली सीस
2: हे आया तेरी पानी दे इस निरी
1: पानी ये दे बेटा ये बे दे इसी पानी ये दे हाँ ये दे पियो उखड़ा लो पानी आए ठीक सीतर करून पियो आए अल पियो दखलास मैं हाक देव गेले पीला लगे कौन रहता तुम्ही ये बे इलास अले जहा और हाक दिन आना तो बुटकी दीदी के
0: मैं जाए से मैं जब कह दे अल जाए से मैं दीदी ए बुटकी दीदी अरे कहाँ आसीस
3: काय होली बाबू खुब्बे हर बार होली सीस
0: ए दीदी आम चुनुनी शांति के खुबे जरचे गाली से बिहाने मैं गेले बेड़ा घाई रात इतले खिंडिक खिंडिक देह तपुर है और बिहाने तो लेकी एक के हार बाय बिकाल होली मने आली दीदी तू तो पारा चुमितानी नास दंडिक महा जो लेकी के दखुन दख पाछे फिर कहाँ आए अस्पताल बलने वा
3: आले बिथे भाई बाबू मैं एब्बे दे तो काजी दवाई के धरे से एक एब्बे खुआन देवा ए बाबू नोनी के काय खिंडी का दक सीत बल लागे से
0: ओ दीदी सीत बल लागे से मने आले दीदी तू बस साइकिल ने झप के जाऊं दीदी
3: आले जो जो जो जो झट के जो मैं बस से आए शांति कसन लागे नोनी
2: खूब बेसी लागे से आता
3: आले एबे काजे नहीं ए दवाई के खाऊ रहा है और तुम ही नहीं दोनों बाले मनुष्य बिल्कुल चिंता नहीं करा नोनी के जर संगे संगे सीत बल लागे से ये नहीं मलेरिया जर बल हो सके एके नेउक लागे दे कहाँ बल ले जाना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ने खून थाने खून जांच करावा तेबे आम के पता चले दे कि ये जर मलेरिया जर आए कि नहीं समझ ला
1: समझ लो दीदी समझ लो कसने कर
3: आले शुक्र बाबू
0: कसन दीदी
3: केडी घर ले बहारिया तो नहीं कर तुई
0: कसन
3: ए नोनी के नेवा तो नेवा ए चो चिंता नहीं करा मानता रे बार तो दख तू चो दुआर बाटे कसन होली से
0: उनके फिर काय के दखें देता दीदी रोजे तो दखें से ची
3: काय के दखें दे तू चो दुआर के तो दख और काय के दख से ता
0: हो दुआर के दखें से काय अले रोजे दखें से दुआर के और फिर काय के दखें देता
3: ओ होरे भगवा माने दख तू चो दुआरे ये लगे खोदरा महा हुन लगे डोबरा महा हुन बाटे दख तू चो कोठा ले निकर तो चिखल पानी हुत्ता रूंडा होली से पानी निकर तो लग काजे कौन नहीं लगे बाट नहीं दखा दे और ए लग बल तो दख आखना इतरो के बड़ा ला सास और ए बाट बाटे असली भन भना आसे एक ए छुक छुका कौन करे दे
0: ये दीदी तू जाले असन बेरा ने बले तू असन छुक छुका संगत तो गोट के गोठे आसीस तू
3: दख सुखरू तू चो बेटी काय काज बीमार होली से जान सीस तू
0: काय काज होली से दीदी
3: हूँ नहीं तू चो रूंडालो पानी और छुक छुका नहालो ठान लागुन बीमार पड़ ली से
0: हसन
3: हाँ

0: हौ दक, ए साफ सफाई नी रलो कारण ने एथा गुंडी उपजे से। हुनी गुंडी आमचो देहे के चाबलो ने जानू मलेरिया जर होय से मने, समझ ली सुकरू?
1: अब्बा, ए छुकछुका ठान संगा तोर इत्रो मान, और ए छुकछुका ठान नी रलो ने आम के इत्रो नुकसान आए, और ए जर गुंडी चाबलो ने होय से।
0: ए सोमारी नोनी,
2: ओए दीदी,
0: तू नहीं नोनी के झप के तैयार कर।
2: ओहो,
0: नोनी के नेवा और सुकरु तू ही सुन।
1: अले दीदी,
0: गोटक गोट सांगे से।
1: अले अले,
0: हैं? हाँ, हुन गोटाई सुकरु, ये भनभना ठाने नहीं मच्छी बले सोत। हुनी मच्छी मन नहीं, हम चो भास सागने बस सोत। हुन चोले ये बीमारी हम चो देहने जाटे से। ये चोले नहीं, ओ की झाड़ा, डायरिया, असंग कई बीमारी मन बल होय सोत मने।
1: हाँ, ये बाबा रे, मैं ये गोट के नहीं जानते रहे दीदी।
0: ये दाय तो जान।
1: अब्बे जान ले, और हेओले नहीं, बड़ू में गुलाए दुआर और बाड़ी की नहीं, चुक चुका बना तो काम के करें दे।
0: हाँ, अले होली री, तैयार होलीस कसान।
2: हाँ हाँ, वे तो तैयार होलू दीदी, अले जो जो जो।
0: अले जा ता।
2: अले जो।
1: अले जो
0: जो जो, झटके जो,
2: झटके जो।
0: हो, झटके जो। नोनी, ए नोनी। ए शांति, अल डंडी टैप टैप टैप टैप टैप।
3: जुहार आता।
0: जुहार।
3: का होली आता?
0: काही नहीं होय जान नोनी। हाँ। स्कूल ले ऐसी।
3: हाँ।
0: बीमार रहीस नोनी, ये बे कसन लागे से?
3: अच्छा लागे से आता।
0: अच्छा होलीस ने?
3: नंगत होले का है? तेबे तो स्कूल जाऊ रहे हैं, घर जाए से दा।
0: दखे से जानू नोनी। ए नोनी, तुचो घर लगे, तुचो बाबा चुक चुका कर लो कसन।
3: हाँ आता, पानी ये बे कोनी ची लगनी थे बे, घर ले द्वार तक सब पाए बाटे चुक चुका बना लो से बाबा।

0: तुझे बाबा चुक चुका कर लो कसन।
1: हाँ आता पानी एबे कोनी ची लगनी थे बे, घर ले द्वार तक सब पाए बाटे चुक चुका बना लो से बाबा थे बे, घर ले द्वार तक सब पाए बाटे चुक चुका बना लो से बाबा।

0: बाबु सुक्रु, ए सुक्रु,
1: कहाँ गेला से गोटक दखा नहीं देत?
2: सुक्रु, ए सुक्रु,
3: हाँ हाँ, आसु आसु, घरे आसु, अलिया या या या, ए सोमारी,
0: हाय आय हो,
3: हाँ देवूट की दीदी अमरली, दखलीस,
0: आ दीदी,
3: आओ दीदी आओ आओ,
0: आओ ऐसे काय, तुम ची घर तो ऐसे,
3: ए कोतवाल दादा,
2: हाँ,
3: ए बाटे कहाँ बोलसिस ना तुई?
2: यही बाटे आम मीता ने दीदी संग बोलूं से ना
3: आले आओ आओ आओ आलो बसा बसा
2: हाँ हाँ
0: आले या बसा ये कताल दादा ये दे बाट बसा ये दे लग बसा ये लग बसा
2: आले ये दे ये दे हाँ बसे ने
3: हाँ आले दीदी आले सांग कसा ने तोर होली
0: हों तो सांग दे ची मान तर बूट की दीदी तू ही भल्ले काम कर लीज दीदी आम चो नोनी तू चो लागुन झप की उजर ली दीदी ये बे फिर काय सुंदर साइकिल चेगुन स्कूल बोले जाय सी
4: हो हो सोमारी हुनके तो भेटू रहे काय आर सांगुन रहे एन दे बोलून तुम चो घरे
0: सांगली जानू दीदी आले बसा मैं खिंडिक चाहा मंडाए दे आले बसा कतवाल दादा चाहा बल पीऊन जहा से
4: चाहा चाही रहो काय सोमारी एबे मैं गोटोक सोर चो गोट सांग तो काजी ले से
0: हाँ
4: हुनके सुनाता
3: आले दीदी सांग काय गोठाए जाले
4: हाँ जाले तेबे सुना हुन गोटाई सुक्रु फेर छुक छुका ठान चो गोट दक मैं तू के बल तो के तु तु चो घर के दुआर के बाड़ी खीड़ी के बले काय रसिया जतना लिस घर छुक छुका बना लिस छुक छुका हो तो के घर बले सुंदर होली दुआर बले सुंदर होली कसन सुंदर दखा दे से कि नहीं
3: नहीं हुन तो दखा दे से चिकाए
4: हाँ मानतर दखा बड़े बिहाने आमी आम चो टोंड का जे दातुन करूं से देह का जे नहाऊं से देह चो साफ सफाई का जे झाड़ा पिसाब बले जाऊं से आय कसन
0: हुन तो सत्य गोठाई दीदी
4: मानतर दखा आमी झाड़ा कोंडी के धरुन फाती रान रेटे नहाले बेड़ा रेटे नहाले कहाँ तरई रेटे बले जाऊं से
0: हो
4: ये गोट बले खिंडी अड़नाप गोठा
3: मानतर दीदी उन तो हमें पुरकती बेरा ले जाऊं से
2: नहीं ना आगज गोट तो अलगे रहे असे ना ना सुकरु देश बदल ली राज बदल ली चतुर हो तो राय जसन जसन जुग हाँ, बदले से कुछ नहीं चल तो राय बोलो ने असन आए की पुरकती बेरा आम तो सियान मन लेंगड़ा ही नहीं रला अनपढ़ रला होती ये बे समय संगे संगे आम धोती पिंदू झंगा मारू और पोड़कलू की पर सीख लू की नहीं
3: सत्य
2: हुसने आम के ये अड़रा चलन बाहर या बाटे झाड़ जातो के बले बदलुक लागे दे
3: नहीं नहीं नहीं सत्य
0: है उन तो आए ची दादा

0: कहाँ जाते रहते, यही काजे सफाई घरे झाड़ा खोली हो तोर खूब भी जरूरी आए ना।
1: जाले तुम्ही गोर तो सोरा ने सत्य बल लाज दादा
0: हो
1: है। अले दीदी मैं असन विचार केवे नहीं करूँ रहे दीदी।
2: गोटो गोट तुझो हुन दिन चो मोके सूरता।

0: कित्रो नंगत गोठ होए दे
1: और नहीं सफाई बाटे छुक छुका रलो ने को कोई बीमारी सीमारी बोले जाऊं टुक नहीं सके दे
2: बिल्कुल सोला ना सत्य गोड़ बोल लाज दादा तुम्ही
1: हो
2: मैं काल के ची नहीं जाऊं तुरते आप लोग घरे झाड़ा खोली बना तो काजे मिस्त्री मन के तैयार दे उबे नंगत कर लाज दीदी आम के सुतुर चुगोट के सांग लास
0: ये कतवाल दादा तुम ही भले का यही वाट का जे का गुलाय गांव के बुले सास
1: हाँ उन्होंने गांव चो भलाई चो गोट का जे सफाई के सांगों को बुले से तुम चो पारा चो मीता नीन बुट की दी दिया है गुनोक ये चो संगे इले से आले ते भी आमे जाऊं दे सुतुर चो गोट तो सर ली एदा आम के जाऊ पड़े दे जाऊं दीदी जाऊं एदा रामू घर बाट बल जाऊं
0: ये यदे चाह रांध ली दादा यदे बसा बसा खिंडी खिंडी चाह खाऊं जहां से आले जानू दुई पद नंगत गोट के गोठियालू सुआद गोट के गोठियालू बाड़ती चो सोर के गोठियालू होली जानू यही आम चो काजे चाहा
3: एदे बनली चाहा आया आ एदे एदे एदे चाहा खाऊं जहा नहीं नहीं नहीं बोल लो थाने नी जहा
0: आले बोल सा जाले
3: आले आले आले
0: आले आले
3: आले पीऊं दियास खिंडी कसन
0: आले नोनी बन आली सी जल मीठा चाहा खिंडी खाऊं दखूं दे
2: आले कोतवाल दादा चाहा चो संगे संगे नहीं मुझे कुछ ठसा के बोले सुना
1: आले थे भी सुना आले
3: सुना
2: आम के तुम्ही सांगला सुतुर्च गोट होली आम के तुम्ही सांगला सुतुर्च गोट होली एदा यामी बनाऊं दे घर ने झाड़ा खोली।

0: हाँ तो दादा दीदी मन, अभी हम ये काय सुंदर गीत के तो सुनते रहोने। तो ये गीत के गावला स्रोत इमनाथ नीलूराम और इमंचो संगवारी मन।
1: लाल हजारी
0: हाँ
1: समिया तो आसे
0: आसे
1: नहीं, और गीत सुन लेने फिर और गोटो गीत सुनू बलते रहे।
0: हाँ काय तो वाले सुनू
1: अले

0: हाँ तो लाला जारी
1: हाँ पण की
0: गीत के सुन डोगात रेलीस तू तो
1: हो काय हरीक
0: अरे
1: लागते रे नी
0: हाँ तो गीत कुरिया म्हणजे नाव चितालीस की नाही नो
1: चिता लेखा है तो ये गीत के गावला सोत इमनात त्रिनाथ सिंह छत्री अरे मंचो संगवारी मन
0: हो तो दख लाल हजारी
1: हाँ
0: तो दादा दीदी मन के तो नगद गोट भात मन के सांगलू
1: सांगलू का
0: ने मंडे
1: हाँ
0: तिहार जो वानी रसूम मन के
1: सफाई के
0: तो उन
1: सांगलू
0: सफाई ने ये गीत बोले ये हुआ है ने
1: तिवाई का हाँ
0: तिहार बाहर नहीं होले फिर गीत नाच नहीं होले फिर नहीं होए
1: नहीं हो का
0: आए कि नहीं
1: हाँ का
0: तो हुनी सफाई नगद गोट मन संगे तो और गीत सुन वास्ता
1: और नहीं सुनो तो हम चो जातो समय बोले हो ऐसे का
0: हो तो जातो समय होले का या गीत और नहीं सुनो गीत होली ज्ञान ध्यान चो गोट बात बोले होली
1: होली का
0: ने तो अभी तिहार बाहर बोले ऐसे तो अभी अमी विदा बोले धरू ने
1: धरू का हाँ
0: तो
1: तो जातो पूरे आमचो गांव कार्यक्रम सुन तो सब पाए सियान सजन मन दादा दीदी मन भाई बहन मन और संग जौरिया संगवारी मन के मैं लाल हजारी
0: मैं पंकी
1: हमी दोनों करो से
0: जुहार।

ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम आम चौगांव सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं। लीजिए सुनिए कुडई फूल में सहदेव कश्यप और साथियों का गाया हल्बी लोकगीत।

0: दूध घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स ग्रिट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: श्रोताओं, कुड़ई फूल में आप सुन रहे हैं हल्बी लोकगीत। गायक स्वर है सहदेव कश्यप और साथियों का।

0: श्रोताओं, गुड़ाई फूल में आप सुन रहे थे सहदेव कश्यप और साथियों का गाया हल्बी गीत। यह आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। रात्रि के 8:30 हुए हैं।
1: घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड

0: cement, the perfect concrete choice.
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम पिलामन का जगोट, प्रस्तुति है गोपाल पयाम की।

पिला मंच गोठ कार्यक्रम सुनतो सप्पाय नानी बड़े पिला मन के मोचो वाटले खुबे खुबे माया। पिला मन जीवनाने आगे बढ़तो काजे तुमके असल लोग नाले महापुरुष मंचो जीवना के जानुक पड़े दे जोन आप लो जीवना के आगे बढ़ाऊन सफल होन रला। मानतर सफाए लोग जोन आप लो जीवना ने सफल होला सबू के खुब्बे संघर्ष लड़ाई त्याग करू पड़ून रहे और ए भी बले कोनी बले क्षेत्र ने सफल हो तो काजे मेहनत मसागत बलों ने संघर्ष करूक पड़े से। असनिची रला सावित्री बाई फुले ये आप लो देश चो पहल शिक्षिका रला हुन मंचो ले पहल कोनी बले मेहरार बहन जी बनून नी रला कसन की हुन समयाचो समाज ने बायले मन के पड़तो अधिकार नी रली घर ले बाहर निकर तोर बले मना रली मनुक मंची घर ले बाहर चो जुगे काम के करते रला। सावित्री बाई चो जन्म महाराष्ट्र चो सतारा जिला चो गोटो गांव नवा गांव ने होन रली सन रहे 3 जनवरी 1831 हुन दलित परिवार ने जन्मन रला हुदल दाएं भारत ने अंग्रेज मंच शासन रली और समाज ने बाहले मन संगे खूब्बे भेदभाव होते रहे घर ले निकरुक बले नी देते रहो तो पड़ुक लिखु कसन देता। मानतर एई मंजी सावित्री बाई पढ़ून देश चो पहल शिक्षिका बनली। सावित्री बाई चो बिया 9 साल चो उम्र ने ज्योतिबा राव फुले संगे होली ज्योतिबा राव चो उम्र हुदल दाएं 13 साल रहे। बिया हो तो बेरा सावित्री बाई भले अनपढ़ रही मानतर सावित्री बाई चो पढ़तो मन के लिए खुब्बे हरी होला और आप लो बायले के पढ़ा तो विचार करला। बिया बेरा ज्योतिबा फुले हुन मन भले 3री पढ़ते रहोत मानतर खुबे सामाजिक कमजोरी के पार पाउन दोनों पढ़ाई करला। सावित्री बाई अहमदनगर और पुणे ने टीचर टेरलिंग करून शिक्षिका बनला। पाछे दोनों पति पत्नी मिलून पुणे ने सन 1848 के लेकी मंचो पहल स्कूल खोलला। ये भारत चो पहल स्कूल तो रली जोन थाने लेकी मन के पढ़ाई मूर होली। दोनों मिलून देश ने 18 ठन स्कूल खोलला। सावित्री बाई ये स्कूल चो प्रधान अध्यापिका बनली और स्कूल ने सबू जाति चो लेकी मन पढ़तो काजे बोलला। एके दखुन दलित कमजोर वर्ग चो लोग मन पहिल हार स्कूल ने आपलो बेटी मन के पढ़ाओ मुरियाला। लेकी मन के पढ़ाए से बोलून पुणे शहर चो बायले मन खूब्बे विरोध करुक मुरियाला नुकसान अमरा तो काम के करुक मुरियाला। जेबे सावित्री बाई स्कूल पैदल जाए तो बाटे बायले मन पखना ने मारत और गोबर ऊपरे पखाओत बोलत ये लेकी मन के पढ़ाए से धर्म के नशाए से। सावित्री बाई दुई जोड़ी कपड़ा स्कूल नेते रहत और गोबर होलो कपड़ा के निकराउन नंगत कपड़ा पाछे फिनते रहत। लेकी मन स्कूल एवत और स्कूल के नी छाड़त असन विचार करून हुन मन छात्रवृत्ति बले देउक मुरियाला। पाछे सावित्री बाई बलने विधवा बायले मन काजे आश्रम बले मूर करला। संगे संगे बेसहारा बायले लेकी बाल विधवा और परिवार ले कई कारण ने खेदलो मेहरार लिकी मन के बले आश्रम ने संगाउक मुरियाला। ये मन के सावित्री बाई खुदे पढ़ोक बले मुरियाला। आपलो मनुख ज्योतिबा फुले संगे मिसुन सत्य शोधक समाज संगठन एमन बनाला जोन बिना पुजारी और दहेज ले बिया बले करून देते रला समाज ने नवा बाट दखाओक मुरियाला। सावित्री बाई आपलो समाज संगचो संघर्ष और सच्चाई के पूरे आंतो काजे कविता लेख बले लिखते रहोत हुन मंचो 4 ठन कविता संग्रह बले आसे। सावित्री बाई लोग मंचो सेवा ने केवई पाटकुती नीरला। गोटक समय पुणे ने प्लेग बीमारी फैल ली प्लेग मरीज मन के यमन दिन रात सेवा जतन करते रला और यही सेवा जतन करते करते सावित्री बाई के बले प्लेग बीमारी होली। एचो ने सन 1897 ने ये मंचो मृत्यु होली। तो असन रहोत सावित्री बाई फुले जोन समाज का जे आपलो तन मन धन ले काम करला और बायले लेकी मन के पूरे एतो बाट के दखाला। आखिर ने जानू सावित्री बाई फुले चो विचार मन के जोन जीवना चो नुआ बाट के दखाए से। हुन मन बोलला शिक्षा स्वर्ग चो बाट आए शिक्षा ले खुद के और खुद चो ताकत के जानू खोए से। हुन मन सांगला कि आपलो स्वाभिमान के जगह तो काजे जुगेले जुगे पढ़ाई करा और पाठशाला चो मोल के जाना
जौन की सोना चांदी से बराबर है। अज्ञानता के जाना धरा और पेटून लड़ून आपलो जीवनाले खेदा। बेटी के बिया कर तो पहल नंगत पढ़ावा जेचो ने खुद जानुक सके दे काय सही है और काय गलत। बायले लेखी चुचाए घर चो काम काजे नहीं बनला से हुन मन मनुक पिलाले बले नंगत काम कर सकोत। और उन मन से विचार रहे जितलो तुम्ही ज्ञान के पहासे उत्तरो मन ले डर मेटे दे। तो पिला मन ये तो रली सावित्रीबाई फुले चो जीवना चो गोठ मांतर एबे मैं तुम चे पोरे आनंद से गोटोक कायरसिया गीत।

तो रही तुमचे काजे गोटे गीत मानतार एवर मचो जातु बे राहुली आले मके विदा दी आसबे तो जातो पूरे पिला मंच गोठ कार्यक्रम सुनतो सप्पाय नानी बड़े पिला मन के मोचो बाटले खुबे खुबे माया।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: पिलामन का जगोट। अभी आप ये कार्यक्रम सुन रहे थे, प्रस्तुति थी गोपाल पोयाम की। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर के साथ व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून से सोल में मुलाकात की। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को मजबूत करने का आह्वान किया। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम गिरने से 3 लोगों की मौत, बचाव अभियान जारी। अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा से अचानक बाढ़ आई, असम में चेतावनी जारी की गई। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कनाडा आज रात स्विट्जरलैंड से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ नई दिल्ली में बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों की खोज की। उन्होंने राजदूत ग्रीर के नेतृत्व और दोनों पक्षों के रचनात्मक तथा प्रगतिशील तरीके से वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की भी सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमारजूकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया

0: विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
1: It is really our responsibility.
2: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
1: रिलेशनशिप इन अ मोर डिफिकल्ट वर्ल्ड।
0: ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि अगली सूचना तक भारतीय नागरिक जब तक आवश्यक ना हो ईरान की यात्रा न करें। एक रिपोर्ट।
3: जो भारतीय नागरिक वर्तमान में ईरान में रह रहे हैं या किसी आवश्यक कारण से वहां यात्रा करने जा रहे हैं, उन्हें विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से कहा है कि वे अपने आसपास की स्थिति पर लगातार नजर रखें और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। दूतावास ने ईरान में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों और वहां पहुंचने वाले लोगों से जल्द अपना विवरण भारतीय दूतावास में पंजीकृत कराने की अपील की है। भारतीय नागरिकों को दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया मंचों पर जारी होने वाले अपडेट तथा सलाह पर नियमित रूप से नजर रखने की भी सलाह दी गई है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: इस बीच ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की है। ये वाणिज्यिक जलमार्ग को बहाल करने और खाड़ी में फंसे हजारों नाविकों के संकट को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ओमान सरकार ने कहा है कि ये पहल संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के समन्वय से की गई है। इससे क्षेत्रीय संघर्ष से जुड़ी महीनों के व्यवधान के बाद जलमार्ग से जहाजों की सुरक्षित आवाजाही को सुगम बनाया जा सकेगा। संगठन के अनुसार क्षेत्र में 11,000 से अधिक नाविक फंसे हुए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में वीआईपी कल्चर इन इंडिया पावर प्रिविलेज एंड डिस्टेंस फ्रॉम डेमोक्रेसी नामक पुस्तक का विमोचन किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये पुस्तक सत्ता संस्थानों और लोगों के बीच मौजूद दूरी को जन केंद्रित शासन के माध्यम से इस दूरी को कम करने की आवश्यकता पर बल देती है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये पुस्तक दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत की पहचान का उल्लेख करती है।
4: That Bharat is the world's largest democracy and is also called the mother of democracy. Our constitution envisions a society based on justice, equality, liberty and fraternity.
0: उपराष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उदाहरण देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने नीट परीक्षा देने वाले छात्रों को यातायात असुविधा से बचाने के लिए हवाई अड्डे से अपनी उड़ान लगभग 45 मिनट तक विलंबित की थी। रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह ने आज पंजाब के जालंधर में दो महत्वपूर्ण रोड ओवरब्रिज आरओबी परियोजनाओं की आधारशिला रखी। उन्होंने बताया कि जालंधर शहर जालंधर कैंट खंड पर गुरु नानकपुरा आरओबी का निर्माण 48 करोड़ 95 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा, जबकि दूसरा बस स्टैंड गढ़ा रोड आरओबी 63 करोड़ 98 लाख रुपए की लागत से बनेगा। दोनों परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता रेलवे देगी। गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा आयोजित इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालय, राज्य सरकारें और मादक पदार्थों से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा करेंगे। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुखों की 2026 की बैठक आज बेंगलुरु में संपन्न हुई। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह समापन सत्र में शामिल हुए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि दो दिन की बैठक में आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन निगरानी सहित कई विषयों पर चर्चा हुई।
5: We had 26 delegates from
6: इस बैठक में 10 देशों के 26 प्रतिनिधियों के साथ साथ इसरो, इन स्पेस और अंतरिक्ष विभाग के लोग भी शामिल हुए। इसमें ब्रिक्स देशों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए रिमोट सेंसिंग उपग्रह समूहों के इस्तेमाल पर काफी चर्चा हुई, जिसमें आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन और दूसरे पहलू शामिल थे। हमने मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन प्रबंधन तथा अंतरिक्ष अभियानों के सतत संचालन पर भी विचार विमर्श किया।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने 14वें पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर

0: सभी पासपोर्ट अधिकारियों की उनकी समर्पित सेवा और नागरिकों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए सराहना की। श्री सिंह ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत की पासपोर्ट सेवाओं में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि वर्ष 2025 में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों, पासपोर्ट सेवा केंद्रों और विदेशों में भारतीय दूतावासों के माध्यम से भारतीय नागरिकों को लगभग 1.5 करोड़ पासपोर्ट और संबंधित सेवाएं प्रदान की गई हैं। देशभर में पासपोर्ट सेवा केंद्रों और डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है। वर्तमान में देश में ऐसे 545 केंद्र कार्यरत हैं। पिछले वर्ष 10 नए डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र खोले गए थे और इस वर्ष भी 10 नए केंद्र खोले जाने की योजना है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी योजना ग्रामीण के मसौदा समन्वय ढांचे पर आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालय बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल ने की। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया है कि ये बैठक अगले महीने की पहली तारीख से लागू होने वाले विकसित भारत जी राम जी योजना की तैयारियों के अंतर्गत आयोजित की गई। स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन ने राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान के सहयोग से गंगा नदी के तट पर शहरी नदी प्रबंधन योजनाओं का विस्तार किया है। ये प्रबंधन योजनाएं नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत हैं। अब तक 13 शहरों के लिए शहरी नदी प्रबंधन योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। इस योजना के प्रथम चरण में 27 शहरों और दूसरे चरण में 33 शहरों के लिए योजनाएं तैयार की जा रही हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना के बाद राहत और बचाव अभियान जारी है। हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत की खबर है। एक रिपोर्ट।
1: बचाव काम युद्धकालीन तत्परता से जारी है। अब तक 18 श्रमिकों को मलबे की ढेर से जिंदा निकाला गया है। करीब 15 और घायल लोग वहां फंसे रहने का संभावना है। घायलों की इलाज SSKM अस्पताल में हो रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है उससे भी ज्यादा लोग फंसे हो सकते हैं। सेना, NDRF, सिविल डिफेंस, फायर ब्रिगेड और कोलकाता पुलिस मिलकर बचाव अभियान चला रहे हैं। दुर्घटना के कारण पर उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक निर्माण के नक्शे में त्रुटि थी, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है ये अभी स्पष्ट नहीं है। कल विधानसभा में इसी विषय पर बयान दिया जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य।
0: अरुणाचल प्रदेश के की पन्योर जिले के याजाली स्थित पोसा में मूसलाधार बारिश और अचानक आई बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है। ताजा खबरों के अनुसार 4 लोग लापता हैं, 17 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 3 की हालत गंभीर है। प्रशासन नुकसान का आकलन कर रहा है। भूस्खलन के कारण प्रभावित क्षेत्र याजाली और होजपोटिन दोनों तरफ से अब भी संपर्क से बाहर हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि वे स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने लोगों से सभी सुरक्षा निर्देशों का पालन करने को कहा है। इस बीच अरुणाचल प्रदेश में तेज वर्षा के बाद असम में निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा है। SDRF, NDRF और अन्य आपातकालीन बचाव दलों को तैयार रखा गया है। मौसम विभाग ने कल देश के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। पूर्वोत्तर क्षेत्र, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा में तेज वर्षा हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल तक तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की स्थिति बनी रह सकती है। बिहार में भी अगले 2 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। दिल्ली में कल बारिश की संभावना है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सह अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में जम्मू कश्मीर पर भारत का रुख दोहराया।
2: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। ये हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है ऐसी बातें कही गईं। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
0: भारतीय नौसेना के जहाज उदयगिरी और

प्रवृत्ति दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत वियतनाम के हो चिन मिन शहर से दौरा पूरा करने के बाद रवाना हो गए हैं। इस दौरे पर पूर्वी बेड़े के फ्लैग ऑफिसर रियर एडमिरल आलोक आनंद ने हो चिन मिन शहर की पीपल्स कमेटी और वियतनाम पीपल्स नेवी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समुद्री सहयोग, आपसी समन्वय और क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा पर चर्चा की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में INS कवरत्ती पर एक संयुक्त

नेवी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समुद्री सहयोग, आपसी समन्वय और क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा पर चर्चा की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में INS कवरत्ति पर एक संयुक्त यात्रा पर चर्चा की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में INS कवरत्ति पर एक संयुक्त

में देर रात स्विट्जरलैंड का मुकाबला कनाडा से होगा। इसी ग्रुप में कतर और बोस्निया एंड हर्जोगोविना आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 12:30 बजे से खेले जाएंगे। यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने स्पेन की पाउला लोपेस और लूसिया रॉड्रिक्स को हराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर के साथ व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून से सोल में मुलाकात की। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को मजबूत करने का आह्वान किया। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम गिरने से 5 लोगों की मौत, बचाव अभियान जारी। अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा से अचानक बाढ़ आई, असम में चेतावनी जारी की गई। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कनाडा आज रात स्विट्जरलैंड से खेलेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

मीडियम व्यू पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात्रि के 9:15 हुए हैं। पेश है पुरानी फिल्मों से। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के गाए फिल्म आप आए बाहर आए की आई फिल्म से, आनंद बख्शी के बोल और शंकर जयकिशन का संगीत।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म पड़ोसन से। आवाज़ है लता मंगेशकर की। राजेंद्र किशन के लिखे इस गीत को संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

द ग्रेट गैम्बलर। आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत आशा भोसले और किशोर कुमार के स्वर में, आनंद बख्शी की शब्द रचना और आर डी बर्मन का संगीत।

0: अभी आप पुरानी फिल्मों से सुन रहे थे आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है।
1: भूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
0: आइए आप सुनते हैं वाट शासकीय योजना की जानकारी पर आधारित कार्यक्रम जैविक खेती मिशन। प्रस्तुति है दीपिका ठाकुर की।
3: कार्यक्रम सुनतोर सप्पाए गांवकारी दादा दीदी सियान सजन के जुहार। आमी रेडियो ने सरकार बाटले योजना मन सांगते रहुन से। आज बले आमी गोटुक उवार धरुन इलुन से। छत्तीसगढ़ प्रदेश ने जैविक खेती मिशन चो क्रियान्वयन कार्य उवाट। छत्तीसगढ़ शासन कृषि विभाग बाटले जैविक खेती नंगत ढंग ले करतो काजे सरकार चो सरसराले दिशा निर्देश आए। जैविक खेती काजे विकास खंड चो चयन, हर जिला ले एक नाई तो दुई विकास खंड मंचो चयन करतोर होए से। समूह चो चयन, गोटो क्लस्टर ने 50 हेक्टेयर क्षेत्रफल संगातोर आए, ताकि समूह जैविक प्रमाणीकरण काजे दिलो सहायता चो अलावा किसान मन के खर्चा करू नहीं पड़ो। जैविक खेती काजे असन गांव पारा चो चुनाव करतोर आए, जहां खूबे संख्या ने पशु जनावर और जैविक खाद बनातो काजे संसाधन मिरो। रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक दवाइयों खच्चो उपयोग कम मात्रा ने हो। समूह चो नक्शा खसरा चो संधारण करतोर होए से। परिवर्तन काल, आमचो परंपरागत खेती ले जैविक खेती ने बदलतो काजे 3 साल समय लागे से। ए समय के परिवर्तन काल बलुआर बफर जोन, उसन तो सामान्य बेड़ा ले जैविक खेती कम ले कम 3 मीटर लापी रतो राय। बेड़ा ले पानी चो बहाव चो दिशा जैविक खेती बाट नी रतो राय। किसान मन चो समूह बनाऊन क्लस्टर चो बाउंड्री चो बाहर 3 मीटर चो नाली बनाऊन बफर जोन तैयार करुक लाय सकूँ। जैविक किसान चो चुनाव और चयन, जैविक खेती काजे लघु सीमांत और महिला किसान, अनुसूचित जाति जनजाति किसान मन के प्राथमिकता मिरो। जैविक खेती काजे चुनलो क्षेत्र और किसान समूह मंचो अनुमोदन त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था ले करातोर सुनिश्चित करतोर होए से। किसान समूह बनाऊन हुंचो पंजीयन करातोर होए से। बेसलाइन सर्वे, चयन करलो क्षेत्र और किसान मंचो बेसलाइन सर्वे और दस्तावेजीकरण निर्धारण प्रपत्र ने पूरा करतोर होए से। आधारभूत जानकारी, चयन करलो विकास खंड ने तैयार करलो क्लस्टर ने ए तो किसान मंचो सप्पाय नाव गांव पता ठिकाना सप्पाय जानकारी तैयार करून दस्तावेज बनातोर आए। मैदानी अमलाचो चयन, प्रशिक्षण और शैक्षणिक भ्रमण, जिला स्तर और विकास खंड स्तर जैविक सेल काजे योजना चो मार्गदर्शन हिसाब ले नंगत लोग मंचो चयन करून और स्थानीय स्तर ने स्किल अपग्रेडेशन बल्लो ने सीखतो काजे तकनीकी प्रशिक्षण सत्र चो आयोजन करतो राय और चयन करलो लोग के जैविक खेती मिशन चो काम के प्राथमिकता संगे दिलो समय में पूरा करतो काजे निर्देशित करतो राय। जैविक खेती मिशन चो क्रियान्वयन काजे 5 दिन चो तकनीकी प्रशिक्षण राज्य स्तर ने आयोजित करुआत, जहां सबु चो ए तो जरूरी है। नी इलो लोग के हुनमन चो अवैतनिक अवकाश मानतोर होए से। मैदानी लोग काजे राज्य ले बाहिर 10 दिन चो शैक्षणिक भ्रमण बुलातो काजे योजना आसे। किसान मंचो प्रशिक्षण, जैविक खेती मिशन भीतरे चयन होलो किसान मन के जिला स्तर ने 2 दिन और राज्य स्तर ने 3 दिन चो तकनीकी प्रशिक्षण दिवात, जहां किसान मन के जैविक खेती चो सप्पाए गोट बात सांगुआत। किसान मन काजे शैक्षणिक भ्रमण, जैविक खेती काजे चयन होलो किसान और जैविक खेती मिशन चो लोग मन संगे राज्य ले बाहर

प्रमाणित जैविक खेती करतोर परदेश जगह जो शैक्षणिक भ्रमण करातोर होए से बल्लो ने किसान मन के जैविक खेती अपनातो काजे प्रेरित करतो रहे और हुन मंचो तकनीकी ज्ञान बले बाड़ो। ये काम काजे एनजीओ मंचो सहायता धरुक लाय सको सिखातो काजे बुलातो बेरा दखतोर सीखतो बेरा जैविक खेती तकनीकी सिखातो बेरा जो फोटो वीडियो तैयार करून सब पाए किसान मन के देतोर आए। शैक्षणिक भ्रमण काजे सबू समूह दल ने लोग मंचो संख्या समान रहो सब पाए किसान मन के सीखतो काजे समान मौका मिरो। माटी जांच जैविक फसल प्रबंधन काजे चयन समूह चो हर बेड़ा माटी चो वैज्ञानिक विधि ले बीज बुनतो पहिल माटी नमूना धरून माटी चो जांच करातो जरूरी है और जांच चो पाचे जरूरी पोषक तत्व चो बलबपू काजे प्रबंधन करतो जरूरी है। जैविक खेती तकनीकी फसल प्रदर्शन चो आयोजन प्रदेश ने जैविक खेती के बढ़ावा देतो काजे जैविक खेती चो तकनीकी फसल प्रबंधन काजे धान और दार फसल मन काजे मापदंड निर्धारित आसे जेठ और वर्षा सीत बेरा चो फसल ने फसल प्रदर्शन आगर ले आगर 0.4 हेक्टेयर गोटो किसान आयोजित करतोर आए जहाँ कोनिबल प्रकार चो रासायनिक दवाई ओखत चो बिना संपूर्ण जैविक प्रबंधन ले आगर उपज धरतो उवाट के सांगुआत जैविक फसल प्रबंधन धरतो काजे उवाट सुना। खेती चो तैयारी किसान चो बेड़ा जे चो 0.4 हेक्टेयर ले आगर नहीं आए उनके बीज बुनतो काजे और बेड़ा तैयार करतो काजे 1500 रुपए मिरुआ। बीज किसान मन जैविक खेती प्रदर्शन काजे जैविक उवाट ले उपज बीज प्रमाणित बीज और आपलो चो बीज के उपयोग करुक लाय सको जीएम बीज चो उपयोग नी करतो रहे। बीज चो प्रकार जैविक फसल प्रबंधन काजे सांगलो अनाज दार फसल तिलहन फसल चो बीज उपचार जैविक फसल प्रदर्शन काजे सांगलो अनाज दार फसल तिलहन फसल चो बीज उपचार करतो काजे स्यूडोमोनास माइकोराइजा ट्राइकोडर्मा वीर्डी आदि चो उपयोग करतो रहे। हरी खाद जैविक धान फसल प्रदर्शन काजे बल्लो ने डारा पाना खाद चो उपयोग कर ले किसान मन के अनुदान बल्लो ने पैसा मिरुआ है। जैविक उर्वरक किसान मन द्वारा जैविक फसल प्रदर्शन ने राइजोबियम एजेटोबैक्टर एजोस्पाइरिलम पीएसबी पोटाश घोलक जीवाणु केएमबी जिंक घोलक जीवाणु जेएमबी और चूना जिपस्म बेनेटेनाइट उपयोग करतो रहे। संगे संगे कृषक मन के पंचगव्य बीजामृत और जीवामृत बनातो काजे 200 लीटर चो पीवीसी ड्रम घेनतो काजे आर्थिक सहायता मिरुआ। पीवीसी ड्रम काजे आर्थिक सहायता योजना समयाने एक हार मिरुआ। लाटा बूटा खरपतवार नियंत्रण खरपतवार नियंत्रण काजे किसान मन के अम्बिडा वीडर और दूसर मिंजानी घसानी मशीन और 2-3 साल में खुद ले मिंजानी करतोर होए से और जो आर्थिक सहायता मिरुआ। हाथ ले मिंजानी कर ले योजना समय बेरा एक हार पैसा मिरे दे। जैविक फसल प्रदर्शन ने कोनी बल प्रकार चो रासायनिक खाद उपयोग नी करतो रहे। जैविक कीट प्रबंधन फसल प्रदर्शन ने कीड़ी ले बचाव काजे जैविक कीटनाशक और NPV ट्राइकोकार्ड बेसिलस स्पीसीज लाइट टैप स्टिकी टैप और रसायन नी रलो समान उपयोग कर ले अनुदान मिरुआ। फसल चो चयन और जैविक बीज उत्पादन जैविक खेती काजे असन फसल और किसम मन चो चयन करतो काजे किसान मन के सलाह देतो राय जोन खातो काजे नंगत रहो और जे फसल चो जैविक बाजार ने खुबे मांग रहो जसन बास चाउर जवा फूल विष्णु भोग दूबराज जीरा फूल सरबती गेहूं चना मूंग उड़ीद और तिलहन फसल। जैविक किसान मन जैविक उत्पादन काजे चुनलो फसल मन चो बीज चो मांग के धरून मांग हिसाब ले फसल चो जैविक बीज उत्पादन सरकारी कृषि जगाने और बीज निगम क्षेत्र ने करुक लाय सको। जैविक उर्वरक प्रबंधन किसान मन के बेड़ा ने जैविक खाद उत्पादन नापेड कंपोस्ट टंकी और डारा पाना कुआउन सड़ालो बनालो खाद वर्मी कंपोस्ट टंकी बनातो काजे और जैविक खाद चो

उत्पादनकर्तो काजे आर्थिक सहायता मिरुआए। जैविक कीड़ी व्याधि औषधिचो निर्माण। जैविक खेतीचो उद्देश्य खेती ने कम ले कम पैसा लगाऊन टिकाऊ उपज धरतो राय, माटी जो उपजन बजातो राय और किसान मन के खेती बाड़ी ने आमदनी करुक और आत्मनिर्भर बनतो काजे सिखातो राय। ऑन फार्म जैविक प्रबंधन फार्मिंग सिस्टम अप्रोच के बढ़ावा देतो संगे जैविक खाद और जैविक कीटनाशक दवाई ओखत किसान खुद बनाउन उपयोग करुक लाय सकोत। असन उवाट किसान मन जानोत और सीखोत। अगर सिखातो काजे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ले सहायता धरुक लाय सकोत। कोनी बल स्थिति ने बाजार ले मिर्तो जिनिस के दवाई ओखत काजे नी घेनतो राय। बाजार व्यवस्था। किसान चो जैविक उत्पादन के बिक्री भांडरी काजे किसान चो गोटुक समूह बनातो राय, जे जिला और प्रदेश भीतर और प्रदेश जो बाहरे बाजार हो तो संभावना के खोजन भाती जैविक उत्पादन जो बिक्री भांजरी करुक लाय सकोत। जैविक किसान मंडई। जिला स्तर जैविक किसान मंडई चो मूर करुन साल भीतरे ही करतो रहे। किसान मंडई चो जरूरी तैयारी जसन साहित्य जैविक तकनीकी उपरे वीडियो सीडी दखातोर पोस्टर पॉम्पलेट चिपकातोर बुता जरूर करतो रहे। और संगे संगे कृषि विज्ञान केंद्र क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र इंदिरा गांधी कृषि

0: 4,000 रुपया चो आर्थिक सहायता उपलब्ध करावा। प्रचार प्रसार, जैविक खेती मिशन चो सप्पाय बाट प्रचार प्रसार काजे प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चो माध्यम ले प्रचार सुनिश्चित करतो रहे। एक्सटेंशन रिफार्म योजना नहीं तो कई दूसर योजना संगे गोट बात करून जैविक गांव ने जैविक खेती चो व्यवस्था ने फार्म स्कूल चो आयोजन करू लाय सको। जैविक प्रमाणीकरण काजे भारत सरकार चो राष्ट्रीय जैविक खेती कार्यक्रम और PGS पद्धति चो सपा स्तर चो जानकारी किसान मन के जरूर देतो रहे। जैविक खेती संबंधी सपाय काम बुता चो कैलेंडर तैयार करून संचनालय के उपलब्ध करातोर आए। जैविक खेती काजे चुनलो किसान के 2 दिन चो किसान प्रशिक्षण प्रावधान आसे। राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना चो प्रावधान अनुसार जैविक खेती काजे चुनलो 20-20 किसान समूह के 2 दिन चो प्रशिक्षण आयोजन करतो रहे। प्रशिक्षण चो आयोजन शासकीय आदर्श जैविक कृषि विज्ञान केंद्र चो प्रक्षेत्र, क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र चो प्रक्षेत्र और जैविक कृषक समूह चो जैविक प्रक्षेत्र ने करातो रहे। प्रशिक्षण चो खर्चा प्रावधान में सांगेन से 20 किसान मन के 2 दिवसीय प्रशिक्षण लॉजिंग और बोर्डिंग 150 रुपया हर किसान के देतो रहे। जेचो काजे खर्चा प्रावधान 6,000 तक आसे। किसान साहित्य स्टेशनरी और परिवहन करतोर जे में खर्चा चो प्रावधान 2,000 तक आसे। जैविक आदान केचुआ वर्मी कल्चर आदि चो विवरण करतो काजे जेचो खर्चा प्रावधान 3,000 तक आसे। किसान वैज्ञानिक रिसोर्स पर्सन चो भत्ता 250 रुपया गोटोक वैज्ञानिक के देतोर जे में खर्चा चो प्रावधान 2,000 तक आसे। ये सब्बू चो टोटल होए से जे सब्बू चो टोटल खर्चा आए 13,000 रुपये। दादा दीदी मन, आज आमी जैविक खेती चो नंगत वाट के जान लू। तुम्ही बल असन वाट के धरा और नगद कमानी करा। जुहार।
1: सुना सुना दादा जी।
2: उवाट में अभी आप सुन रहे थे जैविक खेती मिशन। प्रस्तुति थी दीपिका ठाकुर की। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं हल्बी लोकगीत।
1: सुना सुना दादा दीदी मन अले कथा मी चलिला। बाजुकी राजा तो सुस्ति करो तो के मोई मागो साई मन जो पूरो थाने इला। बाजुकी राजा जो सुस्ति करो तो के सामी मन जो पूरो ने इला। मजो पूरे इला मोई मागो साई डोखरा रूप धरुन करी। कपड़ा अंगने निरली भाई मनीला बो खल पिंदुन करी। मुंडे जटा बांधु नाते डांगो धोरु तालो छाता बड़ू रला। धीरे धीरे महिमा गोसाई इला भाई मालवी हारपुरे गेला। मालवी हारपुरे महिमा गोसाई जाऊ न तो पबसला।

gane yamuna basende aburdo taro un kailasa gumpane

일본하는

जटावा हर गेलो बौद बोला सिंगा बाटले जटावा हर गेलो जटावा हर जाऊन बाती बोले से लोक मन के जटावा हर गाने जाऊन बोले से लोक मन के सागे से मैं लोक मन भिक्षा दे दे तुमके सागे से।

0: के पूछ लो अले ना थाला बोलू नो भीम भाई के पूछ लो काय करतीस बाबू बोलू ते के पहुंचा लो।
1: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे लोकगीत आकाशवाणी का, ये जगदलपुर केंद्र है। रात्रि के 10 बजे हैं। परिचर्चा में लीजिए सुनिए ग्राम विकास संगठन की पारंपरिक व्यवस्था। श्री बलदेव मौर्य से भेंट करेंगे बलबीर सिंह कच्छ।
2: सपाय के खूबे खूबे सेवा जोहार। गांधी चो जोन विचार रहे तो हनुमन गांव चो विकास काजे, गांव चो उन्नति वार्ती काजे, गांव चो जोन परंपरा है, गांव चो रीति नीति या त्यौहार बाहर है, हुंची संगे हनुमन चो मन रहे कि हनुमन ग्राम सभा ने जसन व्यवस्था से उसन काय की गांव चो उन्नति बाढ़ती हो, तेवे काय की देश चो उन्नति बाढ़ती हो लाइ सके। तो असने ची आम चो जोन परंपरा पुरका पाटिले कई कसन ग्राम विकास संगठन चो जोन पारंपरिक व्यवस्था मनासे, हुन व्यवस्था के बल काय की एवे समझुक सकूँ जानुक सकूँ कि उन्हीं व्यवस्था अनुसार का है कि हम चो देश ने बले जोन विभाग मंचो बंटवारा होली से यही सब गुड बात में आज गुड बात करें से हम चो सर्व आदिवासी समाज चो जिला संरक्षक श्री बलदेव मौर्य दादा संगे। तो बलदेव मौर्य दादा, तो सबले पहले तो मैं तुमके सेवा जुहार करें से।
3: सबके सेवा जुहार आपके बले, सभी के सुन तो भाई बहन मन के बले आज ही 2 अक्टूबर गांधी बाबा चो जन्मदिन आए, उन हिसाब ने हामी मने तन गोठिया तो का चाहिए इकट्ठा होलू से। हाँ। सबके सेवा जोहार।
2: सेवा जोहार। तो आमे मूर्ख रूपे जसन की मैं एबे बल बल ले कि जोन गांधी जो सपना रली बले ने जब तक का है कि ग्राम ना जो जोन व्यवस्था से हुन अनुसार आमी नहीं चलू बलन का है कि देश चुनती बाढ़ती होक लाए नहीं सके, क्योंकि उन्नती बाढ़ती चो मूर जोन स्थान आए बोलू गाँव आए और गांव ने कहा है कि कई कसन पारंपरिक व्यवस्था आसे हुन बिना लड़ाई झगड़ाई चो हुन व्यवस्था ने गांव चो उन्नति बाढ़ती चो लोग गांव चो लोग अस्थिर ने रहत। तो मैं यही दसन की गांव ने पटेल बले आसे, पुजारी बले आसे, संवारी बले आसे, आठ पारिया बले आसे, कोटवार बले आसे, असन लागे से कि अमन चो काम के दखुन यही कारण ने आम चो सरकार बले ऊपरे व्यवस्था कर ली। तो अपन तो गांव तो गांव चो रीति नीति रुसुम सब के जाना सास, तो मैं बलत्र ले कि यही गोट के तुम कि अच्छा विस्तार ले हम चो रेडियो सुन तो भाई बिन मन के सांगुन दिल ने जानता समझता।
3: मैं और सेवा जोहार बोले से आजी 2 अक्टूबर चो दिने आजी जैसन हम के पूछ सोते

0: मन हम जो संभाग ने हने बस्तर संभाग ने जसन हम के मालूम आसे हम जो गांव गांव ने ग्राम गणराज्य व्यवस्था आसे ग्राम गणराज्य व्यवस्था बोलो निकाय बीती आए जे गांव चो कानून हुनी गांव ने चलू है।
1: अच्छा,
0: दूसर गांव ने नीचे
1: चले
0: है कि नहीं?
1: हाँ।
0: हालांकि कसन की नेहा त्योहार नाल कहीं बोल त्योहार बनाओ से गोट की दिन होती
1: होती
0: हाँ, है गोट की दिन होती। ये चो गोटक नहा पे एक पारंपरिक एक और तरीका है। हम चो लोग मन के प्राकृतिक

0: दूसर गांव ने नहीं चले
1: है
0: कि नहीं। हालांकि कसन की नेहा त्योहार नाल कहीं बल त्योहार बनाओ से गोट की दिन होती
1: होती
0: गोट की दिन होती। ये चो गोटक नहा पे पारंपरिक एक और तरीका है। हम चो लोग मन के प्राकृतिक

0: हम जो तीज त्योहार बने
1: बने
0: से हम ही कोनी कोनी लगभग सुन लू पढ़े लिखे लोग मन ये कसन लोग मनात ना ये मन गोट के संग त्योहार नहीं बनावत हालांकि हुन मन के मालूम नहीं है मालूम नहीं है तो मैं दू कई लोग के मैं समझा ले बेरा रूम के सांग ले नवाए हो प्राकृतिक हिसाब ने असन असन हो से गुने उसन का हम चो हुन बाटले मऊ पढ़ते पढ़ते पढ़ते पढ़ते पढ़ते खत्म होते ए बार शुरू हुआ है उसन हिसाब ने हम चो प्राकृतिक में चले से और हुनी बोले सोच की हम चो ग्राम गणराज्य व्यवस्था जसन की ग्राम गणराज्य व्यवस्था में हर गांव ने एबे कोनी बोले चीज के सिखतो काचे ना मशीनी हो ना पढ़ाई लिखाई हो हुंचो गोटोक सिद्धांत आसे हुंचो गोटोक परिभाषा आसे है कि नहीं हुनी हिसाब ने बे मैं मन पूछला ते उसन नी सांग लो निमन के पता बोले नी चले हम चो भाई बंद के बोले पता नहीं चले आज ही हम चो देश ने आजाद होली हुन मन के आपले मन ने फटाफट कुछ कर ला नहीं हो कहीं के बोले आधार बना ला है जैसन की कुकुर के दखुन बाती लोहरा मन चिमटा बना ला मने है कि नहीं उसी हिसाब से हम जो ग्राम गणार व्यवस्था को दखुन बाती हमारे भारतीय संविधान ने हुंचो नियम कानून बना ला है नहीं नियम कानून मतलब ये था जो जसन की बोलुआत इतिहास ने बोले आसे आदिवासी मन एता चो मूल निवासी
1: हाँ।
0: तो ये मन चो मतलब आजादी कई हजार साल ने बोले हम चो व्यवस्था रली हुन व्यवस्था के धरुन बाती हुन परिभाषा के धरुन बाती एक आगे आगे किनके सुधारुक मुरियाला है नहीं एक ऐसन भी तक कसन करवा हो जसन की मैं गोटोक सांगे से ये भी तुमन मन बल हुन के समझा मैं जसन सांगे से जी की ये ना ये कसन गोठिया ऐसे पढ़ लो लोग लोग बोल बोले घंटी उल्टा उल्टा समझ दे कसन बोले हुन चीज के भी सुन ला सोत नहीं हुन कारण ने मैं तुमके मन के सांगे से मच्छो हिसाब ने हम चो रूढ़ी व्यवस्था में कंप्लीट देवी देवता चु प्रयास है सारा चीज जीवन मरण कमानी धमानी शादी बिहाव सब चीज उन्हीं हम चो रूढ़ी प्रथा पारंपरिक से एक साथ मिली डोरा से अब पारंपरिक रूढ़ी प्रथा हम चो मतलब देवधामी सबले बड़े डोकरा देव गांव ने हर नाना जाति चो प्रकार चो लोग मन आसोत हर हम चो हिसाब हर जात चो लोग आसोत डोकरा देव लगे सब जाऊन बाती पाए पड़ुआ डोकरा देव सबके आशीर्वाद देवाए है कि नहीं हुन को की भेदभाव नहीं करे हुनी हिसाब ने हुनी परिभाषा में हम चो हिंदुस्तान चो डोकरा देव के दकुन बाती राष्ट्रपति बना लासो राष्ट्र बलि कोने राजनीति बिता मन के द्वेष या पर नहीं करे उनका सबके समान दकुआ डोकरा देव असन मतलब डोकरा देव के दखुन बाती राष्ट्रपति बना ला समझ में ऐसे का है और हुंचो बाद में पुजारी आए पुजारी देव के बले सांगे से काय प्रसाद मांग लीस ना नहीं असन असन फिर हम चो लोग मन के सांगे से है कि नहीं सेवाजन
1: सेवाजन
0: सेवाजन के भगवान और देव लक्ष्य और आदमी लक्ष्य मजिगत आज बीता पुजारी हो पुजारी के दखुन काती काय बना ला सो प्रधानमंत्री बना ला सो है नहीं प्रधानमंत्री बना ला अब हुंचो बाद में माता देव के दुकुन बाती होम मिनिस्टर बना ला सो है गृह मंत्री अब हुंचो बाद में ये हम चो व्यवस्था आसे असनी डोकरा देव माता देव अब पुजारी हुंचो बाद में सिराहा के दुकुन काय बना ला रक्षा मंत्री बना ला हम चो लोग मन कहीं दुख सुख करो ने कहीं भी दिखा चलो काचे लग जाऊं
1: सिरहा
0: लगे जाऊं हुनी हम चो रक्षा करू है हुनी जसन देव बसु आ रहू तो हुनी हिसाब ने सिरहा के दकुन रक्षा मंत्री बना ला सो है नहीं अब हुनचो बाद में गोटो कासे हुनचो पाठ को थी गुनिया है नहीं गुनिया बोल लो ने आले हो मचो असन असन होली दकुन तो काय बीती लागे हुन चाउर के देखो यार बाचू आए ये ना हुन सांगे दे देव धरली से काई असनिया ये सादा बीती कि जड़ी बूटी दिलो में कह दे हुन सांगू आए है कि नहीं हुन खोज लो नाई बाबू एक देव नी धरे हो किंडी जड़ी बूटी दे पड़े दे गुनिया के दकुन बाती विदेश मंत्री बना ला सो
1: विदेश मंत्री
0: गांव देश देश में जाए से जाए नहीं से, पता लगा उकलाए उसने हिसाब से गुनिया के दकुन बाती विदेश मंत्री बना ला सो है आब रली भंडारी है नहीं
1: भंडारी
0: हम चुतानी कहीं भले काम धाम करतो रहे सामाजिक काम दुख काम इतने लोग के व्यवस्था कर तो काचे हुन भंडारी च काम है भंडारी बने से उनके बोल सोता जी वित्त मंत्री है नहीं नाले खाद्य मंत्री है नहीं खाद्य मंत्री नाले वित्त मंत्री तो हम चो लोग मन उनके भंडारी बोल सो आ भंडारी च बाद में बोटोक नायिका से है नहीं
1: नायिका
0: नायिक चो व्यवस्था का है भाई

0: कहीं वाले कुनी उल्टा पुल्टा कर ला समाज के इकट्ठा कर तुका कोई गलत काम करे से
1: हाँ।
0: और उनके पता चल ली नहीं कैसन कर लो में असन हुआ है नहीं ना नाइक क्या अनुपुर हुआ है पाइक क्या अनुपुर हुआ है
1: हाँ।
0: नाइक बोल लो ने जज होली
1: जज होली
0: नाइक के दुखन काय बना ला सो
1: जज
0: जज बना ला सो और हूं जो पाइक के दुखन बैठी काय बना ला सो वकील बना ला सो नाइक और पाइक दोनों आ नाइक बड़े होलो पाइक नानी नानी भी था वकील होलो तो और गोटो का आस्ता आठ पहाड़िया बोलन बीता स्वास्थ्य हुन गुड़ी पीढ़ी के कोनी थाना गुड़ी के साफ सफाई करुआ चम स्वच्छ रखुआ है उनके स्वास्थ्य उनके देखुन स्वास्थ्य मंत्री बना ला सो है नी अब ये भी तो कोटवार बोल सो था कि हम लोग मन गांडा बोलत है नी गांडा के देखुन बाती सूचना प्रसारण मंत्री बना ला सो ये का जो व्यवस्था है हम जो आदिवासी मन जो व्यवस्था है हजारों साल ले तो ये कम्प्लीटली मतलब रूढ़ी प्रथा व्यवस्था के नाम बदलो उन बाती कि हाँ। नाम मन के मोडिफिकेशन करुन बाती सुधार उन बाती उनके ये व्यवस्था करुन बाती हाँ। ये हमारा रूढ़ी प्रथा है देवी हाँ। देवता से जुड़ भी थी हाँ। ये के पूरा प्रशासनिक व्यवस्था बना उन बाती पूरा हाँ। हम जो देश में
1: चले
0: से हाँ। ये चीज है
1: पटेल
0: हाँ पटेल पटेल और डोकरा देव गुटकी आए
1: अच्छा
0: मतलब हुनिया है डोकरा देव बोलूनिया पटेल लेकिन हुनता ने माझी जी बोल उनके मांझी बोलुआ है कि नहीं
1: हाँ।
0: तो इतलो हम चो ग्राम गणराज्य जो व्यवस्था है
1: हाँ।
0: और हुन चो बाद में आसो लोग बाग के हाँ। उनके सेवा जन बोलुआ इतलो होला व्यवस्था कर तो बाकी सुन तो बितावन
1: सेवा जन हाँ।
0: तो ये हम चो बस्तर संभाग में
1: हाँ।
0: ये व्यवस्था है आ व्यवस्था हमन मन हमके बल नहीं मालूम रही जब जब गहन हम पता चल लिए सारे चीज के सब समझ मिल गए सही बहुत अच्छा व्यवस्था है तो ये तो होली और यही व्यवस्था के बोले भाई कहाँ दूसरे काम में जरूरत नहीं है जातोर इतनी लोग ने सारा नानी से बड़े से सारा काम मन व्यवस्था करुन बाती चलो जसन की देखा गोटो गोटा और सांगिन में एक मनुख के साइंस बनतो काचे वैज्ञानिक बनतो काचे नाल कहीं बोलते चार चीज चो उनके ज्ञान होतो रात
1: हाँ।
0: लेकिन हम चे लगे चे लोग मन के लेकिन तीने चीज से ज्ञान ने संसार चलते रहे
1: हाँ।
0: अब सिंसा कसन ने कसन भी ज्ञान आए ना
1: हाँ।
0: पीला जन्म लो
1: हाँ।
0: है कि नहीं
1: हाँ।
0: पीला जन्म होली एक महीना होली ना दुई महीना बोली होली हम गोरस खुआ तो बेरा गागे से है कि नहीं गागे से गागू गागू गागू गागू माए परेशान होली कसन करूँ आए बे है कि नहीं आया भी थी कसन कर ली फिर उनके लोरी सुना कुमुरिया ली लोरी माने का आया
1: कहानी
0: स्टोरी मुन गुनान बाती करूं बाती सुना ली पीला हूं के सुनुन बाती गोरस बोले खा लो और सो लो
1: बोले
0: हाँ। मतलब पहले ज्ञान दे तो भी थी आया है कहानी ने कान बाटले पहले ज्ञान दिली
1: हाँ।
0: आगे सबले पहले आया जो ने माय नहीं कान बाटले लोरी सुन बाती
1: ज्ञान दिली
0: फर्स्ट ज्ञान फिर दूसरा ज्ञान उसने फिर चार पांच महीना होली गोद में चार से पीला है कि नहीं
1: हाँ।
0: फिर बोले उसने गागे से लोरी सुना उन दके से नी माने से कहीं बोले उन्नी सांगे से
1: हाँ।
0: फिर कसन होली कहीं बोल तो माए आए उनके हाँ। मना तो रहा है तो कि नहीं उन चुका हाँ। पीला के अच्छा डॉक्टर खुआता रहा उनके मना तो
1: हाँ।
0: तो हुदले रहे घर ऊपर गोटो कावरा काव काव काव काव करते रहे हन बोल ली माए भी थी हों देर बाबू कावरा तक तो हाँ दे दे गागू छंडवट पीला नहीं काव रख दो कुमुरिया है दूसरा ज्ञान माय दिली आइक ने पहला कान बाटले गोटक दूसरा आइक बाटले
1: उन तो आए पीला गाग तो नहीं मान ले दग बाबू काई के बोलता
0: काई बोलता मतलब दूसरा ज्ञान आइक ने दिली ये डूठान ज्ञान माय जो आए अब पीला खिंड चलुक सीख लो है नहीं चलुक सीख लो चलते चलते चलते चलते खिंडिक बाप बाट बल पर आए सो लेकी हो चाहे लेका हो
1: लेका हो
0: तो मतलब हुंच बाद में हुन काम डगर आए से मतलब है कि नहीं कहाँ जाए से मच बाप काम करू मने ये होली काम का काम धाम पहला होली हिस्ट्री
1: इतिहास
0: दूसरा फोटो नाले ड्राइंग है कि नहीं अंग्रेजी में ड्राइंग और हिंदी में फोटो और हुंच बाद में प्रैक्टिकल नाले काम हम जो लोग मन ये तीन ही ज्ञान ने कई हजारों साल तक जिंदा हुन बाती चलते रहे पीढ़ी दर है कि नहीं ये जब ले लिखा पड़ी थ्योरी इली से नहीं सब मन मन के भुलकुन दिला सो सारा काम खत्म होली से है

0: ठीक है सरकार भले से पढ़ाई लिखाई करता है लेकिन पढ़ाई रखन करुण बात ही मैं जो सांगे से उन भी थी समझ तो रहा से तेब हुन चो मतलब आसे आज दुनिया में कितने बल बड़े आदमी बनो ये चार ज्ञान हो तो बहुत जरूरी आते मात्र पढ़ा लिखा ज्ञान नहीं होलन मतलब ये तीन ज्ञान होले से जिंदगी चलुक सके असन नोहा के नीचे ले बोलते थी लेकिन ये अलग ले पढ़ाई लिखाई ज्ञान आसे कौन के कसन कर तो रहा है कसन कहानी के पढ़ तो रहा है काय चीज आए ये सब सारे चीज आए तो ये चीज नहीं ये हम जो एक मचो ख्याल ने ये जितलो बोले भाई मन तुमन सुना सासना ये अच्छा है कि सुना मैं जुन सांगे से क्यों नहीं रोज ये सांगते बीती गोट नो आए
1: नो आए आए
0: आए कि नो आए कसन बल्लो में नहीं और गोटक गोटक के कहा बताए पत्थर के घसुन बाती देखा आदमी के मिलून देखा तेबे पता चले दे है कि नहीं मतलब मैं जुन सांगे से असन गोट बात मन के कोनी लग जाऊं सुना तेबे तो पता चले दे कि ये गोट असन आए ना ये गोट असन आए है ना ये कहीं दिन बोल दे पत्थर को घिस के देखो आदमी को मिलके देखो है कि नहीं तो ये सारे जो चीजें हैं जिंदगी जीने के लिए बहुत अच्छा जरूरी चीज है ये सब मन के बले सुन तो रहा है आप लोग मन मन में उनके ध्यान में लग तो रहा है ये ना यसन असन गोठियास उतना ये सही है कि नो है कि नो है अब जसन की अब तुम्हारे मन के तुम्हें बल ले में गोटो का और एक अच्छा चीज में अच्छा चीज बोले हो सके नाले नहीं बोले हो सके लेकिन आए सत्य ये बे हमन प्रकृति के सेवा करते लोग मना है नहीं प्रकृति का नहीं हमें जन्म धरलुस काय काजे
1: सेवा कर तो काजे
0: सेवा कर तो काजे ये बे मैं तुमन मन बल सांगे से काय बोली ना सेवा मुक्त हो लेना रिटायरमेंट हो ले सेवा मुक्त हो ले
1: सेवा मुक्त हो ले
0: है कि नहीं सेवा हमें मन जोन बले आदमी दुनिया में पैदा होलो से सेवा करे सेवा कर तो काजे माए बाप चो पीला पिचका चो बायले पीला चो जमीन चो देवधामी चो समाज चो ये सब सेवा है
1: सेवा है
0: सेवा है उन्हीं का चे हम चो लोग मने के सेवा जो हार बोलून बाती बोलते बीती एक बात है कि नहीं सेवा करो जैसन की गुड़ी कहाँ गेलो ना सेवा घरे गेलो
1: सेवा घरे
0: है कि नहीं गुड़ी ने जामु से उन का बोलो सी जुहार महाप्रु देवधामी का हम जुहार महाप्रु तो ये सारी चीजें है गोटो का और एक चीज है मैं कोनी कोनी मैं खूब मैं सोचू है कसन की हम जो पुरखा पार्टी चो लोग मन लिखा पढ़ी तो नहीं रहे लिख तो बीती तो नहीं रहे
1: नहीं रहे हाँ।
0: लेकिन मैं कोनी कोनी बेरा उनके सोचू है बहुत की हम जो लोग मन के कसन ज्ञान होली संसार में सबले अगर पानिया से हम जो लोग मन कसन ज्ञान होली हूं चल खिंड जमीना
1: से
0: हम जो लोग मन के कसन मालूम होली कि जंगल असना से ये चो मतलब ये आए है कि नहीं अब ये मन देखा बड़े बीती के जेलनी माता बनाऊ दिला पानी दुनिया ने सबसे ज्यादा पानी आसे उनके जेलनी माता बनाऊ दिला हुंच बाद में आसे पृथ्वी उनके मावली माता बनान बोला बना ला हमचे पुरखा पार्टी के लोग मन हुंच बाद में हवा परदेशीन माता जंगल झाड़ी के है नहीं माने परदेशीन माता बोल तो बीती नहीं हवा तो बाहरी ले हुआ नहीं परदेश ले एक कदम बाहरी मतलब परदेशीन माता है हुनी हिसाब ने हम चो जलनी माता आसे जलनी माता संगे कहना है कनिया मनासो जितलो जलने माता मनासो देवधामी आसो तुम जलनी माता संग चो आप जसन माटी संगे आसो हुन मावली माता संगे
1: मावली माता संग आसो
0: है नी काली कंकालीन मावली ये मन दुर्गा ही बोल सोत नहीं शक्ति ये मन मावली संगे और परदेशी माता बोलना ने जितलो बोले रुक रही चो नाम ने आसे नाम सेमरीन बास्ताबुदीन आमदाई रुक्सिला ये आए परदेशीन माता आई नहीं तो कुनी कुनी हुनी मैं ये कसन ये बात है कि एक हुनी खिंडी कुनी गुनिया बीता नाले देव बीता जानुक पड़े मैं तो दाव देव बीता नो हाँ मैं अपने मन में के सोचुन मैं सोच ले से सारी चीज करे से और मैं कोनी कोनी सियान लग मन के बोले पूछू आए कि सही है कि नो है बोलू सही ची आए बोल सो अब जैसन की कुकड़ी गार गाना ने बोले सुन ला सा अंडा का फंडा बामोली झंडा ऐसा बोलते ना वही ये अंडा ही हम चे बहुत सब कुछ मायने रखे जैसन की पढ़ लो लिख लो लोग मन पृथ्वी अंडा का रहा से बोलूआ नहीं पढ़ लो बीता तो ऐसे ना है नहीं मन मुंचो नाम ने ना कहीं हम हमारे रूढ़ी प्रथा हिसाब में सामाजिक व्यवस्था में कुछ भी दुख सुख का काम किया जाता है डांड माटी के नाम से डांड माटी के नाम से अंडा

0: स्थापित किया जाता है। डांड माटी बोलने से डोकरा देव माता देव के नाम से उसको, हमारे जो भी काम कर रहे हैं वो शुभ हो।
1: हाँ
0: है कि नहीं? तो उसके बाद क्या है, एक तो ये हो गया। हमारे रूढ़ी प्रथा पारंपरिक में एक और व्यवस्था है मान सोल का। मान माना इज्जत,
1: इज्जत
0: है नहीं?
1: हाँ।
0: मान करना माने इज्जत करना,
1: करना।
0: अब अंडा तो फूट गया, पृथ्वी फूट गया ना, छिन भी नहीं हो गया, पानी के अंदर में छिन भी नहीं
1: हो गया,
0: और कई हजारों के तादाद में महाद्वीप बन गए, है नहीं?
1: हाँ।
0: वो महाद्वीप जो है हमारा मानसोलका का प्रतीक है, छोटे
1: छोटे
0: कर,
1: हाँ।
0: वो मानसोलका का प्रतीक है,
1: प्रतीक, हाँ।
0: इसीलिए हमारे यहाँ जब भी उसको मान को सोल का डालने के बाद ही अंडा को उसके ऊपर में रख के हमारे देवी देवता को सुमरण करते
1: हैं। हाँ।
0: ये है।
1: हाँ।
0: तो मैं कई बार बोलता हूँ, हम लोग तो यहाँ पर है ना,
1: हाँ।
0: फिर भी हम पूरा दुनिया को हम लोग इज्जत दे रहे, सम्मान दे रहे हमारे देवी देवता में,
1: देवों से
0: है। ऐसा कोई भी नहीं कि हर गांव में हर घर में या दुख सुख में होता तो देते हैं,
1: हाँ।
0: है ना? अब उस हिसाब से आप अंदाज लगाइए कि पढ़े लिखे लोगों से हमारे लोग कितना उनको इज्जत दे रहे हैं। मेरे ख्याल से कहीं दूसरा नहीं था, तो नाम देने से अमेरिका बोलने से उतना ही में है, उतना ही हो गया ना,
1: हाँ, हो गया।
0: हमारे यहाँ बाकायदा उनके नाम का भी पड़ता होगा मान सोल का उसमें,
1: हाँ।
0: तो पूरी दुनिया को हमारे अनपढ़ आदिवासी लोग भी अभी तक मान रहे हैं, है नहीं?
1: हाँ जा, हाँ।
0: तो ये सारे जो चीजें हैं, मैं मेरा यही कहना है, आज अपने हमको हम जो लोग मन के बात तो रहा है, भले पढ़ाई लिखाई कर तो रहा है, ज्ञान अर्जित कर तो रहा है, लेकिन दिखावटी बातें नहीं जाते
1: नहीं जाते रहा है।
0: ये दिखावटी गेलो ने हम के खिंडी नुकसान हो दे, और हम जो रूढ़ी पर पुरखा पार्टी नहीं चले, और जल्दी समाप्त हो दे, और हम जो भाषा बोली के बोले नहीं भूलोक तो रहा
1: है,
0: ये बोले जरूरी आसे ए ना ये कसन एक गोठिया में होना, कसन गोंडी गोठिया में होना, हाँ। कसन हल्पी गोठिया में होना नहीं, ये कि गोठिया जान ले इसकी चीज भीतरे खूबे बड़े बड़े चीज में नास है उनकी में अभी सांग ले का है,
1: हाँ।
0: मान सोल का भी
1: मान सोल का,
0: हाँ। ग्रंथ ने बोले कहीं नहीं आई है सोल का चनाम,
1: हाँ।
0: और यहाँ हम चो लोग मन उनके हम चलो दीपाम करुण बात उनके काम कर सो, है कि नहीं? तो ये है, और का नगत ना हो बोल लो ने जैसन की

0: केशोर का चुनाव
1: हाँ।
0: और यहाँ जो लोग मन उनके हम लोग दीपा करुणवाती उनके काम कर सो है कि नहीं
1: हाँ।
0: तो ये है और काय नगत ना जो बोल लो ने
2: जसन की जैसे नित्य कर्म है अपना नित्य कर्म भूलना नहीं चाहिए, समय से उठना चाहिए, समय से दत्तन पत्र करना, काम धंधा में लगना चाहिए, इससे शरीर जो है स्वच्छ रह दे और बीमार बल पड़ुक
1: नहीं हो।
0: हाँ और खातो ने बोले उतले ही खातो रहा गई के भी अरे ना आज पक्का जोर बात बन ली से है
1: खाऊं दे
0: खाऊं दे खातो मेरा तो खाऊं दी लो पर रात ही मेरा बार बजे बात ये पेट दुखाए थे ना उन बीती होली गड़बड़ है कि नहीं। जितलो ढोलंगी धरे से उतले ही संगाऊं तेबे ते उन धान वाले अच्छा रहे दे है नहीं। यसन असन ये एग्जाम्पल मनाए कर तो काचे बहुत सारे चीजें आए ये बे जसन की मैं सांगले हम चुरुड़ी पर था चुगोट के तका ये कि हिंदू धर्म में शादी ने सात वचन बोले बोलवा है नहीं
1: सात
0: हम चलो के सीधा आसे सात बहनी तेलंगिन
1: तेलंगिन
0: है नहीं
1: हाँ।
0: है कि नहीं
1: हाँ।
0: अब हुन सात वचन हुनी रिश्ता नाता है हुनी दादा भाई आया बाबा काका मामा मामी सब है।
1: सब
0: है कि नहीं के भाई तुमन मन बोले सोचा ना ये कहाँ ले असन गोट मन निकल ली ना ये काय काय काय कसन है ये भी तुमन मन के मैं सांगे से हम चलो गे बारह डांड बोलवाऊ नहीं
1: बारह डांड हाँ
0: हाँ बारह डांड बोलते भी थी बहुत बड़ी चीज है आज उन ग्रंथ में जरूर आसे के बारह ज्योतिर्लिंग बना दिला सो उनके काय निकला सो
1: बारह
0: ज्योतिर्लिंग उन्हीं हम चो बारह डांड आ अब तुमन मन लगे बोल रहा नहीं ज्योतिर्लिंग भी थी काय भी किया है ना पड़ुक लिखो जानता बोले ये मतलब ये है अमन के पोलूस भी ने हम मन मन के पता होली से है कि नहीं। तो ये ऐसा ना है अच्छा गोटक आजकल जो नशा पानी में हम जो गांधी बाबा ये नशा पानी में एकदम विरोध कर जसन की दवा और दारू बोलवात नहीं दवा और दवा आसन काम करो हूँ दारू उसन कर लो ठीक हो दे मर तो ऐसन बीती हूँ नी करा
1: कर
0: ये कसन बोले हम जो देवधामी संगे जुड़
1: लो बीती है
0: एक गोटक में कहानी सांग से हम जो देश ने 200 साल वर्ष में अंग्रेज मन राज कर ला है कि नहीं
1: हाँ।
0: तो कुछ कुछ अंग्रेज मन वापस गेला गोटो कांग्रेज को बीचा कांग्रेज मन हुनता ने मतलब उन मन जो देश ने पूछ ला ए हो तू फलना जगह जाऊ रही हुनता नु कई बोले कोई अच्छा बीती असली बीती सांग
1: सांग
0: है कि नहीं
1: हाँ।
0: काई बीती असली बीती सांग आए हो मैं उनके बोले विचार हो नी हुन बोले से ये हो ठीक है सांगे दे हुनता ने नहीं इधर हम खेती बाड़ी मन कर सो एक ठन पान ने उन चिपड़ी तान चिपड़ी ने पान ने असन धर सो तार असनी रिकान दे सो हुन फर्टिलाइजर ने फर्टिलाइजर समझे से मंद के जसन की हम ही मन बुनाई उनाई कर तो बेरा खिंडी तर
1: तरपनी देऊ से
0: हुन काय समझ लो हुन के फर्टिलाइजर खाद समझ लो
1: खाद खाद
0: एक चिपड़ी खाद में असन बीती बनो है कि नहीं भैया रली ची अभी बल आसे ची कोनी कोनी लगे है कि नहीं करसो ची भी तो ये असन असन हम चो लोग जो कुछ व्यवस्था है उन व्यवस्था मन के जानू पड़े दे है नहीं ये बे हम चो लोग मन नहीं पाता भोली बल भूल को सोत ये बे मैं एक मैं सांगे से उदाहरण आसाम बाटे आटा आसाम बाटे बेटा बेटी मन बाप के देवता बोलुआ है कि नहीं हम चो लगे आया आरु बाबा आजकल आया बाबा बोलू छांड सो ये गलत है नी छांड तो रहा है आया के आया बोलतो रहा है माए के माए बोलतो रहा है बाबा के बाबा ही बोलतो रहा है बुआ नहीं हो सके हुन बुआ बोल सोत कोनी कोनी ये गलत बात है कसन बोल लो ना नी हम मन मन हम चो बोली भाषा ने ढोकरा देव के बाबा ही बोलुआ है कि नहीं और माता देव को आया है कि नहीं तो ये सब मन आसे नहीं ये मन के कोनी असन असन बोल सो बोलम को सिखावा ये तेबे ना ले भूलक तक कालिक रे ना तुम जो असन ने काय बोलू हास पीला झेला मन के पूछ लो काय सांग दे नहीं मम्मी और डैडी बोलुआ असन नहीं हो तो ये एक सब चीज के असली चीज मन के बात बर्ताव चीज मन के भूलकू नहीं उनके बराबर याद करूं तेबे हमन मन जो होई दे। आजकल नहीं एक चीज और होली से

0: मशीनी युग ने जसन की अबे खेती बाड़ी करते और बड़ा परेशानी होली से कोनी कोनी बार हमारे देखो है पुराने पद्धति मैंने हिसाब से चल सदगुनी हनुमन खेती बाड़ी कर मुरियाला सो कसन पुराने के ने आगे जुगे ने मिलन मिशन करो है कि नहीं मिंजाई घसाई कटाई धुलाई ये सारे चीज आज काल वाले उसने ये ना तीन लोग चार लोग मिलन बाती कर सोत रोपा लगा सोत धान काट सोत मिंजा सोत कसन बजे लोग मिलो सोत नहीं हम चलो कृषि प्रधान में आधारित है ये भी जसन की आजाद होली ये तो लोग 75 साल होली कि नहीं ये भी पढ़तो लिखे बल कमा सो उनकी नौकरी पैसा बल कमा से हम इमन होनी निर्भर में रुआ खेती बाड़ी में
1: खेती बाड़ी
0: उनके कर लो ना तो जी नहीं होए है कि नहीं तो ये भी कोनी कोनी बेरा मके दुकन बाती बड़ा खुशबल लागू है कम से कम पिछले जमाना चो चीज ऐसे भी फिर आगे बीच में छाड़ा छाड़ी हो रहा आपलान आपलान करो ये भी कम से कम नहीं हो मोचो का आगे करूँ फिर तू चुप करो पसंद करूँ अपन समझौता करूँ बाती कर सो ये थोड़े से अच्छा लागे
1: अच्छा,
0: से हाँ और ये सारी चीज के ये व्यवस्था के हर गाँव ने बना तो रहा से तेबे हम जो ग्राम गणराज्य व्यवस्था कहलाए दे असली नाले नी कहलाए आओ आसे जानू असन नी जसन बोले आसे जी इस गांव में मतलब भाई खेती बाड़ी चाहते हम चो गांव से बैठक करा हुंता ने फिर हुंता ने बोले नहीं हो जब तक हम चो गांव से खत्म नहीं हो तब तक दूसरे गांव में नहीं जाओ है कि नहीं कितली दिलो बोले तभी तो ग्राम गणराज्य व्यवस्था हो दे गाँव से छाणू बात दूसर ताने कहा ग्राम गणराज्य व्यवस्था हो दे तो ये सब चीज मना से
1: तो बलदेव मौर्य दादा दखा आम चो जन पारंपरिक जन ग्राम विकास चो जन संगठन है ये भी आमी जैसन कि तुम सांगलास की वैज्ञानिक दृष्टि बोले आमी विश्लेषण कर लूँ बोलेन का है कि हुन और अच्छा बोले नाम से जीवना का जो बुरुन बाती एवकला सके कसन बोले का है कि आमी पढ़ा लिखा था हूँ से कई डिग्री मन धरूँ से मंत्र आमी उनकी किनिक वैज्ञानिक सोच हिसाब ने एपचो असन तुलनात्मक करो नी सोच तो कारण ने कहा है कि उन जो नाम चो व्यवस्था है हालांकि उन व्यवस्था उसनी ची चले से सरकार ने बोले उसनी ची मानो लेकिन क्या है कि आमी समझूक लाए नहीं सकूँ तो आमी असनी आमी गोट बात कर लू जाए कहा है कि कई का से आमचो ग्राम ने ग्राम व्यवस्था लोग मन समझ दे जान दे मानतर आमचो गोटोक समया हो से फिर उसने के भी ग्राम संगठन चो जन विकास परंपरा विति गोटा है गोटिया माँ आलाजी का तुम खूबे खूबे सेवा जोहार
0: सेवा जोहार।
2: घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स ग्रिट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
4: परिचर्चा में अभी आप सुन रहे थे ग्राम विकास संगठन की पारंपरिक व्यवस्था श्री बलदेव मौर्य से भेंट कर रहे थे बलबीर सिंह कच्छ। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात्रि के 10:30 हुए हैं। आइए श्रोताओं अब आपको सुनवाते हैं पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा। कार्यक्रम का पहला गीत लीजिए सुनिए फिल्म दुर्गेश नंदनी से। लता मंगेशकर की आवाज़, गीत लिखा है राजेंद्र किशन ने।

की शहनाई का ये गीत। भरत व्यास के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया था वसंत देसाई ने। अब सुनिए फिल्म वक्त का ये गीत आशा भोसले और महेंद्र कपूर के स्वर में। साहिर का लिखा गीत और रवि का संगीत।

मुकेश और लता की आवाज़ में आइए सुनते हैं फिल्म फिर कब मिलोगी का ये गीत, मजरूह के बोल और आर डी बर्मन का संगीत।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म दो रास्ते का गीत, लता मंगेशकर की आवाज़ में आनंद बख्शी के बोल थे और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। झुक गया आसमान, आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर की ही आवाज़ में। आनंद बख्शी की शब्द रचना और संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

कार्यक्रम का अंतिम गीत लीजिए सुनिए फिल्म अभिमान से। गीतकार मजरूह, संगीतकार आर डी बर्मन और गायक स्वर है किशोर कुमार का।

0: रोज मैं अपने ही प्यार को समझाऊं।
1: आप सुन रहे थे पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को हैं। अब समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और लंबित मुद्दों के शीघ्र समाधान पर बल दिया। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। श्री मोदी ने टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और जागरूकता अभियानों में एनसीसी कैडेटों तथा माय भारत स्वयं सेवकों की भागीदारी बढ़ाने का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने साइबर अपराध और डिजिटल धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी एजेंसियों, बैंकों और डिजिटल प्लेटफॉर्मों के बीच बेहतर समन्वय तथा जन जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि दूत जैमिसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ नई दिल्ली में बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों की खोज की। उन्होंने राजदूत ग्रीर के नेतृत्व और दोनों पक्षों के रचनात्मक और प्रगतिशील तरीके से वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की भी सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमार जुकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ. जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
1: It is really our responsibility.
2: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूँगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
1: रिलेशनशिप इन अ मोर डिफिकल्ट वर्ल्ड।
0: नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि 22 जून को दिल्ली से अमृतसर जा रही एयर इंडिया की एक उड़ान को रनवे निरीक्षण के दौरान के कारण अमृतसर हवाई अड्डे पर कुछ समय तक प्रतीक्षा करने के निर्देश दिए गए थे। मंत्रालय के अनुसार इस दौरान विमान रडार के मार्गदर्शन के तहत कुछ समय के लिए पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। ये प्रक्रिया पाकिस्तान के हवाई यातायात नियंत्रण अधिकारियों के समन्वय से की गई। बाद में विमान को दिल्ली वापस भेजा गया, जहां वे सुरक्षित रूप से उतरा। मंत्रालय ने बताया कि घटना की सूचना न देने के मामले में संबंधित एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और विमान चालक दल के खिलाफ अंतरिम कार्रवाई की गई है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना के बाद राहत और बचाव अभियान जारी है। हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत की खबर है। घायलों का इलाज सरकारी SSKM मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में चल रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि कोलकाता नगर निगम घटना की रिपोर्ट तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि हादसे की विस्तृत जानकारी कल विधानसभा में दी जाएगी। गुजरात के भुज क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में आज AI आधारित स्वचालित ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन किया गया। नई व्यवस्था के अंतर्गत ड्राइविंग टेस्ट से पहले वाहन का पंजीकरण, प्रशिक्षण वीडियो देखना, फोटो स्कैनिंग और RFID सेंसर लगाना अनिवार्य किया गया है। अधिकारियों के अनुसार इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और पूरी प्रक्रिया अधिक निष्पक्ष बनेगी। ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि अगली सूचना तक भारतीय नागरिक जब तक आवश्यक ना हो ईरान की यात्रा ना करें। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से कहा है कि वे अपने आसपास की स्थिति पर लगातार नजर रखें और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

बजकर 10 मिनट होने वाले हैं। हमारी आज की ये सभा अब यहीं संपन्न होती है। कल के कार्यक्रमों के साथ प्रातः आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।

कल के कार्यक्रमों के साथ प्रातः आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद। जय हिंद।